क्या वो जमीन में चले फिरे न थे कि उन लोगों का अंजाम देखते जो उनसे पहले गुजर चुके हैं। अल्लाह ने उनका सब कुछ उन पर उलट दिया और ऐसे ही नताइज इन काफिरों के लिए मुकद्दर हैं। ये इसलिए कि ईमान लाने वालों का हामी और नासिर अल्लाह है और काफिरों का हामी और नासिर कोई नहीं। ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों को अल्लाह उन जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं और कुफ्र करने वाले बस दुनिया की चंद रोजा जिंदगी के मजे लूट रहे हैं, जानवरों की तरह खा पी रहे हैं और उनका आखिरी ठिकाना जहन्नुम है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितनी ही बस्तियां ऐसी गुजर चुकी हैं जो तुम्हारी उस बस्ती से बहुत ज्यादा जोर आवर थी जिसने तुम्हें निकाल दिया है। उन्हें हमने इस तरह हलाक कर दिया कि कोई उनका बचाने वाला न था। भला कहीं ऐसा हो सकता है कि जो अपने रब की तरफ से एक साफ और सरीह हिदायत पर हो वो उन लोगों की तरह हो जाए जिनके लिए उनका बुरा अमल खुशनुमा बना दिया गया है और वो अपनी ख्वाहिशात के पैरों बन गए हैं। परहेजगार लोगों के लिए जिस जन्नत का वादा किया गया है उसकी शान तो ये है कि उसमें नहरें बह रही होंगी निथरे हुए पानी की, नहरें बह रही होंगी ऐसे दूध की जिसके मजे में जरा फर्क ना आया होगा, नहरें बह रही होंगी ऐसी शराब की जो पीने वालों के लिए लजीज होगी, नहरें बह रही होंगी साफ और शफाफ शहद की, उसमें उनके लिए हर तरह के फल होंगे और उनके रब की तरफ से बख्शिश। क्या वो शख्स जिसके हिस्से में ये जन्नत आने वाली है उन लोगों की तरह हो सकता है जो जहन्नुम में हमेशा रहेंगे और जिन्हें ऐसा गर्म पानी पिलाया जाएगा जो उनकी आंतें तक

इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कान लगाकर तुम्हारी बात सुनते हैं और फिर जब तुम्हारे पास से निकलते हैं तो उन लोगों से जिन्हें इल्म की नेमत बख्शी गई है पूछते हैं कि अभी अभी इन्होंने क्या कहा था। ये वो लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने ठप्पा लगा दिया है और ये अपनी ख्वाहिशात के पैरों बने हुए हैं। रहे वो लोग जिन्होंने हिदायत पाई है, अल्लाह उनको और ज्यादा हिदायत देता है और उन्हें उनके हिस्से का तक्वा अता फरमाता है। अब क्या ये लोग बस कयामत ही के मुंतजर हैं कि वो अचानक इन पर आ जाए? उसकी अलामत तो आ चुकी है। जब वो खुद आ जाएगी तो उनके लिए नसीहत कबूल करने का कौन सा मौका बाकी रह जाएगा? बस ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खूब जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत का मुस्तहक नहीं है और माफी मांगो अपने कसूर के लिए भी और मोमिन मर्दों और औरतों के लिए भी। अल्लाह तुम्हारी सरगर्मियों को भी जानता है और तुम्हारे ठिकाने से भी वाकिफ है। जो लोग ईमान लाए हैं वो कह रहे थे कि कोई सूरत क्यों नहीं नाजिल की जाती जिसमें जंग का हुक्म दिया जाए, मगर जब एक पुख्ता सूरत नाजिल कर दी गई जिसमें जंग का जिक्र था तो तुमने देखा कि जिनके दिलों में बीमारी थी वो तुम्हारी तरफ इस तरह देख रहे हैं जैसे किसी पर मौत छा गई हो। अफसोस उनके हाल पर, उनकी जबान पर है इताअत का इकरार और अच्छी अच्छी बातें, मगर जब कतई हुक्म दे दिया गया उस वक्त वो अल्लाह से अपने अहद में सच्चे निकलते तो उन्हीं के लिए अच्छा था। अब क्या तुम लोगों से इसके सिवा कुछ और तवक्को की जा सकती है कि अगर तुम उल्टे मुंह फिर गए तो जमीन में फिर फसाद बरपा करोगे और आपस में एक दूसरे के गले काटोगे? ये लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की और उनको अंधा और बहरा बना दिया। क्या इन लोगों ने कुरान पर गौर नहीं किया या दिलों पर उनके कुफल चढ़े हुए हैं? हकीकत यह है कि जो लोग हिदायत वाजे हो जाने के बाद उससे फिर गए उनके लिए शैतान ने इस रविश को सहल बना दिया है और झूठी तवक्कोआत का सिलसिला उनके लिए दराज कर रखा है। इसीलिए इन्होंने अल्लाह के नाजिल करदा दीन को नापसंद करने वालों से कह दिया कि बाज मामलात में हम तुम्हारी मानेंगे। अल्लाह उनकी ये खुफिया बातें खूब जानता है। फिर उस वक्त क्या हाल होगा जब फरिश्ते इनकी रूहें कब्ज करेंगे और इनके मुंह और पीठों पर मारते हुए इन्हें ले जाएंगे? ये इसीलिए तो होगा कि इन्होंने उस तरीके की पैरवी की जो अल्लाह को नाराज करने वाला है और उसकी रजा का रास्ता इख्तियार करना पसंद ना आया, इसी बिना पर उसने इनके सब आमाल जाया कर दिए।

0: क्या वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है ये समझे बैठे हैं कि अल्लाह उनके दिलों के खोट जाहिर नहीं करेगा। हम चाहें तो उन्हें तुमको आंखों से दिखा दें और उनके चेहरों से तुम उनको पहचान लो, मगर उनके अंदाजे कलाम से तो तुम उनको जान ही लोगे। अल्लाह तुम सब के आमाल से खूब वाकिफ है। हम जरूर तुम लोगों को आजमाइश में डालेंगे ताकि तुम्हारे हालात की जांच करें और देख लें कि तुम में मुजाहिद और साबित कदम कौन है। जिन लोगों ने कुफ्र किया और अल्लाह की राह से रोका और रसूल से झगड़ा किया जबकि उन पर राह रास्त वाज़े हो चुकी थी, दर हकीकत वो अल्लाह का कोई नुकसान भी नहीं कर सकते, बल्कि अल्लाह ही उनका सब किया कराया गारत कर देगा। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और अपने आमाल को बर्बाद न करो। कुफ्र करने वालों और राह खुदा से रोकने वालों और मरते दम तक कुफ्र पर जमे रहने वालों को तो अल्लाह हरगिज माफ न करेगा। बस तुम बोदे न बनो और सुलह की दरख्वास्त न करो, तुम ही गालिब रहने वाले हो। अल्लाह तुम्हारे साथ है और तुम्हारे आमाल को वो हरगिज जाया न करेगा। ये दुनिया की जिंदगी तो एक खेल और तमाशा है। अगर तुम ईमान रखो और तकवा की रविश पर चलते रहो तो अल्लाह तुम्हारे अज्र तुमको देगा और वो तुम्हारे माल तुमसे न मांगेगा। अगर कहीं वो तुम्हारे माल तुमसे मांग ले और सब के सब तुमसे तलब कर ले तो तुम बुखल करोगे और वो तुम्हारे खोट उभार लाएगा। देखो तुम लोगों को दावत दी जा रही है कि अल्लाह की राह में माल खर्च करो, इस पर तुम में से कुछ लोग हैं जो बुखल कर रहे हैं, हालांकि जो बुखल करता है वो दर हकीकत अपने आप ही से बुखल कर रहा है। अल्लाह तो गनी है, तुम ही उसके मोहताज हो। अगर तुम मुंह मोड़ोगे तो अल्लाह तुम्हारी जगह किसी और कौम को ले आएगा और वो तुम जैसे ना होंगे। सदकल्लाहुल अज़ीम।
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामीन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में फजर की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाह

जारी किया गया कि उसे अमरीकी हुकाम के सुपुर्द किया जाए और उसी फैसले के मुताबिक हवालगी का अमल मुकम्मल किया गया। वज़ारत-ए-दाखिला ने इस अमल पर भी जोर दिया कि ये कार्रवाई

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिने किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। सामिन किराम, आज हम अक्सर कहते हैं कि मैंने इतने पारे पढ़ लिए, मैंने इतनी मरतबा कुरान ख़त्म किया, ये यकीनन बायस अजर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात नमाज में सिर्फ एक ही आयत दोहराते रहे यहाँ तक कि सुबह हो गई। वो आयत थी, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अगर तू उन्हें अजाब दे तो ये तेरे

0: बंदे हैं और अगर तू उन्हें माफ फरमा दे तो बेशक तू ही गालिब हिकमत वाला है। सोचिए सामने किराम, पूरा कुरान आप सल्लम को पढ़ना आता था, याद था, लेकिन एक आयत ने आपके दिल पर ऐसा असर किया कि पूरी रात उसी को दोहराते रहे। यही तदब्बुर है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे, कुरान को शेर की तरह तेजी से न पढ़ो और न खजूर के दानों की तरह जल्दी जल्दी बखेर दो, बल्कि उसके अजायब पर ठहरो, उसके जरिए दिलों को हरकत दो और तुम में से किसी की फिक्र सिर्फ सूरत खत्म करना न हो। कितनी खूबसूरत नसीहत है सामने किराम। हमारी तवज्जो इस बात पर होनी चाहिए कि अल्लाह ताला मुझसे क्या फरमा रहे हैं। सामिन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुन्ना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफ जमान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मअस्सलामा।
1: दोस्तों, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल सड़क के हादसों को बढ़ा देता है। ये सिर्फ आपकी अपनी जान को ही नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगियों को भी खतरे में डाल सकता है। इसलिए दरख्वास्त है कि हमेशा एहतियात बरतें, ड्राइव करते वक्त अपना पूरा ध्यान सड़क पर रखें और मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आपकी एक छोटी सी लापरवाही किसी के लिए जिंदगी और मौत का सबब बन सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि जिम्मेदार ड्राइवर बने अपनी और दूसरों की सेफ्टी को पहली तरजीह दें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। आज हम ऐसे मसले की बात करेंगे जो कि हमारी प्लेटों में जो हम खा रहे होते हैं खामोशी से ज़्यादा हो रहा होता है, यानी वो खाने जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड हैं, जो कि फैक्ट्री में तैयार होते हैं, जिनमें रंग, खुशबू, फ्लेवर्स और केमिकल शामिल होते हैं। ये हमारे खाने हमारे जिस्म को कई सालों में शदीद नुकसान पहुँचाते हैं, मगर हम में से ज़्यादा अफराद जो हैं वो इन्हें रोज़ाना खाते हैं। ये जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हैं ये असल खुराक से बहुत मुख्तलिफ होते हैं, जैसे कि इसमें मशीनी प्रोसेसिंग होती है, इनमें मसनू अज्जा शामिल किए जाते हैं और इनका मकसद ये है कि उन खानों को ज़्यादा मज़ेदार, देर पा और जल्द तैयार होने वाली खुराक बनाया जा सके। इसमें फास्ट फूड है या जो फ्लेवर्ड मशरूबात हैं, एनर्जी ड्रिंक्स इसमें आती हैं, इसी तरह जो चिप्स है या निम्को है वो हो सकता है, प्रोसेस्ड मीट है वो हमें देखना है कि क्या हम इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसी तरह ये जो प्रोसेस्ड फूड है वो हमारा वज़न ज़्यादा करते चले जाते हैं, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ख़राब कर सकते हैं, दिल के मसाइल हमारे सामने आ सकते हैं, शुगर और इंसुलिन का तो बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है और कैंसर भी इसमें बहुत ज़्यादा इम्कान आते हैं, क्योंकि इसमें मसनूई रंग इस्तेमाल किया जाता है, खुशबू ज़्यादा डाली जाती है, प्रिजर्वेटिव्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। और लिसंस, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें देखना है। जैसे ही आप कोई पैकेट ख़रीदते हैं तो इंग्रेडिएंट्स पर ज़रूर देखिए, स्टेबलाइजर्स हैं, इमल्सिफायर्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर है, फूड कलर्स हैं और इस तरह हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप है, इस तरह की चीज़ें जो हैं आप ज़रूर देखिए। तो इससे बच हम ऐसे सकते हैं कि घर का सादा खाना सबसे बेहतरीन है, बाज़ार के जो बिस्किट हैं वो आप कम कर दीजिए, उसकी जगह खजूर और जो नट्स हैं और इस तरह आप उसमें अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स के बजाय आप पानी इस्तेमाल कीजिए, लीमू पानी इस्तेमाल कीजिए, सिनेमन टी या फिर जिंजर टी आप शामिल कर सकते हैं अपनी ग़िज़ा में। और बच्चों के लंच बॉक्सेस में ख़ास तौर पर ध्यान रखिए जो प्रोसेस्ड फूड हैं वो ना जाएं, जैसे चिप्स हैं, चॉकलेट्स हैं और जूस जो हैं वो अगर देना चाहें तो कभी कभार दिए जा सकते हैं। इसी तरह से जो हमारी खुराक है वो 70-80% जो है हमें कुदरती खुराक हमें लेनी है, जैसे कि दालें, सब्जियां, अंडे, फल और इसी तरह से हमें अपनी खुराक में इन्हें शामिल करना है। बीमारियां एक दिन में नहीं होती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे जिस्म को अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कमज़ोर करते चले जाते हैं, और अगर आज हम उनका इस्तेमाल 30-40% कम कर दें तो फिर बहुत सारे मसाइल, जैसे कि मोटापा है, शुगर है, डायबिटीज़ है, जैसे दिल के मसाइल हैं, हमारा मेंटल हेल्थ है, वो भी हम उस तमाम जो मसाइल हैं उनसे दूर रह सकते हैं। हेल्थ फॉर ऑल,
1: Qatar National Health Strategy, Health for All, FM 107, Dil Se Desi.
3: Number one hits music station.
4: Anytime, anywhere.
5: Yes, anytime, anywhere.
4: Kabhi bhi aur kahin bhi, aap sun sakte hain FM 107.
3: FM 107.
4: Log into our website, urduradio.qa, or download the app QMC now.

0: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। और जैसे आप लोगों को पता है कि ये प्रोग्राम जो है इस पे हम कतरी स्पोर्ट्स स्टार्स, एथलीट्स और लेजेंड्स के बारे में हम बताते हैं, आप लोगों को शेयर करते हैं नॉलेज अबाउट दी कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स और स्टार्स। आज हम बात करें अब्दुल अजीज अल कुवारी के बारे में। अब्दुल अजीज अल कुवारी कतर के मशहूर मोटर रैली ड्राइवर्स में से एक हैं, जिन्होंने अपनी टैलेंट और मुसलसल बेहतरीन परफॉर्मेंसेस के जरिए मोटर स्पोर्ट की दुनिया में खास मकाम हासिल किया है। हम तो नासर अल अतिया के बारे में सुनते आ रहे हैं, लेकिन नासर अल अतिया तो एक सुपरस्टार, सुपर लेजेंड के स्टेटस में है। उनके साथ साथ ऐसे कई ड्राइवर्स हैं, रैलिस्ट हैं, जिनके बारे में हमें थोड़ा बहुत पता है, आप लोगों को बताना मैं फर्ज समझता हूँ। तो अब्दुल अजीज अल कुवारी, उनका नाम FIA मिडल ईस्ट रैली चैंपियनशिप के सबसे कामयाब और मुकाबलेबाज ड्राइवर्स में शुमार होता है। रैली रेसिंग एक इंतहाई मुश्किल खेल है, जहां रफ्तार के साथ साथ स्ट्रेटजी, हिम्मत और गाड़ी पर मुकम्मल कंट्रोल की जरूरत होती है। और अब्दुल अजीज अल कुवारी ने इन तमाम सलाहियतों का शानदार मुजाहरा किया है। अब्दुल अजीज ने सालों तक मिडल ईस्ट रैली चैंपियनशिप में कतर की नुमाइंदगी की और कई मरतबा पोडियम फिनिशेस हासिल करके मुल्क का नाम रोशन किया। उन्होंने रीजनल सतह पर ही नहीं बल्कि बैनुल अक्वामी क्रॉस कंट्री रैली इवेंट्स में भी अपनी काबिलियत साबित की। चैलेंजर कैटेगरी में उनकी कामयाब परफॉर्मेंसेस ने उन्हें दुनिया के बेहतरीन ऑफ रोड ड्राइवर्स की सफ में ला खड़ा किया। कतर में मोटर स्पोर्ट्स के फरोख में अगर किसी की बात होती है तो अब्दुल अजीज अल कुवारी की बात होती है, और उनका अहम किरदार आज भी हम याद करते हैं। उनकी कामयाबियां नए ड्राइवर्स के लिए हिम्मत और रहनुमाई का जरिया बनी है। रेगिस्तानों, पथरीले रास्तों और सख्त मौसमी हालात में रेस करते हुए उन्होंने दिखाया कि कतरी एथलीट्स मोटर स्पोर्ट के सबसे मुश्किल मुकाबलों में भी दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों का मुकाबला कर सकते हैं। आज अब्दुल अजीज अल कुवारी कतर के मोटर स्पोर्ट के एक नुमाया एम्बेसडर के तौर पर जाने जाते हैं। उनकी मेहनत, जज्बा और कामयाबियां उन्हें कतरी खेलों की दुनिया का एक रोशन सितारा बनाती है। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम एक ऐसे मसले पर बात करेंगे जिसका दुनिया भर में सामना लाखों अफराद करते हैं, और वो है बेचैनी या एंजाइटी। कोई एग्जाम हो, इंटरव्यू हो, या अहम काम से पहले घबराहट महसूस होना एक आम सी बात है, लेकिन अगर फिक्र और परेशानी हर वक्त रहने लगे और रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासिर होने लगे तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अब सवाल ये है कि ये बेचैनी है क्या? ये दरअसल हमारे जिस्म में एक कुदरती रद्द अमल है जो हमें खतरे या दबाव का सामना करने के लिए तैयार करता है। लेकिन जब ये एहसास बार बार बिला वजह या बहुत ज़्यादा होने लगे तो ये एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर सकता है, और इसमें कुछ अलामत हैं जैसे कि हर वक्त फिक्रमंद रहना और परेशान रहना, दिल की धड़कन जो है वो तेज़ हो जाती है इसमें, हाथ पांव कांपना शुरू हो जाएं या बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आना शुरू हो जाए, सांस लेने में दुश्वारी महसूस हो, नींद पूरी ना होना, और ये कि आपकी जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाए या तवज्जो जो है मरकूज ना कर पाएं, जल्द गुस्सा आ जाए और जिसमें आपको खिंचाव महसूस हो या दर्द महसूस हो, या हर वक्त किसी बुरी खबर या हादसे का खौफ जो है वो आपके जहन पर सवार रहे। बाज़ वक़्त अचानक घबराहट का जो अटैक है वो भी हो सकता है, जिसमें सीना भारी महसूस होता है, दिल तेज़ी से धड़कता है और ऐसे महसूस होता है जैसे बहुत कुछ होने वाला है। इस तरह एंजाइटी और जो दबाव है वो तो महसूस होता ही है, मगर ये बात कि जब बेचैनी कई हफ्तों तक बरकरार रहे, काम, आपकी एजुकेशन या घरेलू ज़िंदगी मुतासिर होने लगे, खौफ की वजह से आप लोगों या जगहों से बचने लगे, बार बार घबराहट के शदीद अटैक जो हैं वो हों, तो फिर किसी माहिर नफ्सियात से या डॉक्टर से आप ज़रूर कंसल्ट कीजिए। याद रखिए, बेचैनी कमजोरी नहीं बल्कि एक काबिले इलाज तबी मसला है। बर वक्त इलाज जिंदगी को बेहतर बना सकता है।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।
3: One step to 2030.
2: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
3: One Step to 2030.
2: और आज भी मैं अपने कल वाले टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। आज भी हम बात करेंगे ऑफ कोर्स मेटावर्स की और इकोनॉमी की। तो कल मैंने आपसे बताया था कि हाँ, किस तरह से जो है मेटावर्स पे जॉब्स हैं, डिजिटल इकोनॉमी का किस तरह का कॉन्सेप्ट है, मेटावर्स अपने आप में है क्या, वर्चुअल दुनिया का जो कॉन्सेप्ट है किस तरह से इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है। कल हमने इस पर हल्के फुल्के अंदाज में बात की थी। आज बात करेंगे बिजनेस और ट्रेड की। जी हाँ, मेटावर्स एक बिजनेस हब बन चुका है। कंपनीज वहाँ अपने स्टोर्स ओपन कर रही है, ब्रांड्स अपने वर्चुअल शोरूम्स बनाएंगे जो और ज्यादा बढ़ेंगे। वहीं लोग डिजिटल एसेट्स यानी NFTs जो है सेल करेंगे। सर्विसेज जैसे कंसल्टेंसी है, डिजाइन है, एंटरटेनमेंट है, ये सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। ट्रांजैक्शंस जो है वो फास्ट और डिजिटल होंगे और ग्लोबल लेवल पर ट्रेड पॉसिबल होगा। वहीं अगर इसके मैं कुछ फायदे गिनवाऊं तो देखिए, दुनिया की किसी भी हिस्से से लोग बैठ कर काम कर सकते, यानी उनके पास एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी होगी। वहीं पर अगर देखा जाए तो फिजिकल स्पेस की अब जरूरत ही नहीं हो, लोग जो है लो कॉस्ट पर बिजनेस करेंगे, ये भी एक बड़ा फायदा है। फिर बात की जाए एक और अगर फायदे की, तो एक क्रिएटिव फ्रीडम आपको मिल रही है। यू नो, लोग अपनी क्रिएटिविटी यूज करके नए आइडियाज बना सकते हैं। वहीं पर लोग घर बैठे काम भी कर रहे हैं, लर्निंग भी कर रहे हैं, चीजें आसानी से जो है ना एक्सेसिबल है। वहीं इनके रिस्क भी है। सबसे बड़ा रिस्क जो हमें और आपको समझ में आता है वो है सिक्योरिटी इश्यूज, हैकर्स और फ्रॉड का रिस्क। ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। फिर एक और रिस्क की बात की जाए वो है आइडेंटिटी थेफ्ट। लोग फेक आइडेंटिटी यूज करते हैं, वो करेंगे भी। वहीं एक और चीज जो हमें और आपको बेचैन कर देती है वो है एडिक्शन। लोग रियल दुनिया से दूर होकर इस वर्चुअल वर्ल्ड में इतने ज्यादा ना घुस जाए कि रियल दुनिया का जो उनका अपना एग्जिस्टेंस है, जो उनकी आइडेंटिटी है, वो कहीं ना कहीं डिमिनिश हो जाए। फिर एक चीज आती है समझ में, इनइक्वालिटी। हर कोई आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। जिसके पास भरपूर पैसा होगा वो तो एडवांस्ड तरीके से पैसे बनाएगा, आगे बढ़ेगा, लेकिन जिसके पास नहीं होगा वो क्या करेगा। देखिए, इसका सोशल इम्पैक्ट भी होगा। मेटावर्स लोगों के सोशल इंटरेक्शंस को चेंज कर देगा। आजकल के बच्चे भी ना ज्यादा टाइम वर्चुअल दुनिया में ही गुजारना पसंद करते हैं, वही उनको लगता है कि हमारी रियल दुनिया है। आने वाले वक्त में ये चीज और ज्यादा बढ़ेगी। लोग दूर रहकर भी कनेक्टेड तो होंगे, लेकिन रियल रिलेशनशिप वीक हो जाएंगे। फ्यूचर में मेटावर्स एक फुल्ली फंक्शनल इकोनॉमी बन सकता है, जहां लोग काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, अपनी डिजिटल लाइफ बनाएंगे। हो सकता है कि लोग अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा वर्चुअल दुनिया में गुजारें, लेकिन नतीजा क्या है पता नहीं। मेटावर्स इकोनॉमी एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो दुनिया का काम करने का तरीका बदल सकता है और बदल रहा है, लेकिन इसके साथ रिस्क भी हैं, जहां मैनेज करना, जिन्हें समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर सही तरीके से यूज किया गया इसे तो मेटावर्स एक नया डिजिटल सिविलाइजेशन भी बन सकता है, और अगर सही तरीके से इसे यूज ना किया जाए तो शायद ये आपके और हमारे लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। फिलहाल सही इस्तेमाल, गुड बैलेंस, ये हमेशा हम सब के लिए बेस्ट टेक अवेज है। अब इन्हें अप्लाई करना और इन पर काम करना और खुद को इस एडिक्शन से दूर रखना, अभी हमारी और आपकी समझ से ये बात दूर है ऐसा लगता है। चलिए, फिलहाल मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इस टॉपिक से इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ कल वापस हाजिर होंगे इसी सेगमेंट में, जिसका नाम है One Step to 2030. तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुनते रहिए, और जो रियल वर्ल्ड है फिलहाल जिसमें हम हैं, रियल कनेक्शंस को भरपूर तरीके से एंजॉय कीजिए, और देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
3: One Step to 2030.
4: नूर अला नूरिया। يهدي الله لنوره من يشاء. روشنی بر روشنی, اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے

0: यानी थकन महसूस हो तो पहले से एहतियात करें और समंदर में आप न जाएं, क्योंकि कमज़ोरी, बुखार, जो भी इस तरह की जो तकलीफ़ें हैं, ये अगर शदीद थकन अगर हो तो पानी में जो इंसान की जो सलाहियत होती है उसे कमज़ोर कर देती है, कम कर देती है। फिर मामूली सी दुश्वारी भी पेश आ जाए तो ये बड़े हादसे का सबब बन सकती है। तो अपनी सेहत को नज़रअंदाज न करें। और आखिर में उन्होंने बच्चों के हवाले से भी कहा कि बच्चे अगर जाएँ तो जैसे कि उन्होंने कहा कि सुतरत नजात लाइफ जैकेट, ये काफ़ी ज़रूरी है कि लाइफ जैकेट का इस्तेमाल बच्चों के लिए। उन्होंने कहा कि आपको ये लग सकता है कि भाई मौसमी सूरत हाल जो है ना वो बिल्कुल सही है, यानी कोई मसला ही नहीं है, लेकिन जैसा कि हमने शुरू में भी कहा, समंदर का मिजाज उसका कोई ठिकाना नहीं है, अचानक कुछ से कुछ हो सकता है। तो इस वजह से बच्चों को ज़रूर लाइफ जैकेट पहनाइए, चाहे पानी कम गहरा ही क्यों ना हो, यानी ये आपकी तरफ से एहतियात है। जैसे कि हमने कहा कि एहतियाती इकदाम ये ज़रूरी है, और एक लम्हे की बेहतियाती ये बड़े से बड़े हादसे का बायस बन सकती है। तो लाइफ जैकेट, इसको हर वक्त आप बच्चों के लिए ज़रूर यानी इसका इंतज़ाम करें, इसकी पाबंदी करें। और जैसा कि उन्होंने कहा कि जो वाटर स्पोर्ट्स के जो ऐसे स्कूटर्स हैं दर्राजात अल-माईया के हवाले से, जो उन्होंने कहा है कि आप उनके लिए जो डिज़ाइनेटेड एरियाज़ हैं उनसे आप दूर रहें, तो ये आपको कैसे पता लगेगा? जब आप ये पता कर लेंगे शुरू में जाकर कि भाई यहाँ तैराकी के लिए कौन से मुंतखब एरिया हैं, मखसूस एरिया कौन से हैं, तो जब आप इसका पता हासिल कर लेंगे तो फिर आपको यानी इसमें कोई दुश्वारी नहीं होगी। आप वो स्कूटर्स के लिए जो ख़ास उनके एरियाज उसमें आप कभी भी नहीं जाएंगे। तो ये बात ज़रूरी है कि आप पहले पता कर लें कि आपकी स्विमिंग के लिए मखसूस करदा एरिया कौन सा है। यानी मज़ीद उन्होंने तंबी के लिए ये भी बताया कि भाई हमें मुतनब्बे किया है कि आप ये स्कूटर्स के जो एरिया हैं इनके लिए अलग जोन मुकर्रर किए जाते हैं, उस जोन में आप कभी भी न जाएं, क्योंकि अगर आप चले जाते हैं तो किसी भी हादसा का सामना कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। तो ख़ुद भी महफूज रहें, दूसरों को भी महफूज रखें। तो हर शख्स को ये ज़रूरी है कि अपनी सरगर्मी के लिए या जो भी है वहाँ जो हमें फैसिलिटी मिल रही है उसके लिए जो मखसूस जगह है, मुख्तस जो एरिया है, उसका हम इस्तेमाल करें, सही इस्तेमाल करें। और नज़्म व ज़ब्त ये सब की हिफाजत के लिए ज़रूरी है। और मज़ीद उन्होंने ये कहा कि जो हिदायत हैं साहिल सिक्योरिटी अहलकारों के हवाले से और लाइफ गार्ड्स की जो हिदायत हैं इन पर मुकम्मल अमल करें। यानी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलेंगे, वहाँ जो बोर्ड्स हैं, यहाँ जो वहाँ के जो लोग कुछ बता रहे हैं आपको इस एरिया में नहीं जाना, ये नहीं करना, वो करना, तो इन सब की जो है ना आपने ख़ास लिहाज रखना है। तो ये थी बात, अहम नसीहतें जो यानी समंदर का रुख करने वाले हैं, हमारे सामीन जो समंदर का रुख करना चाहते हैं इन दिनों में, तो आप ज़रूर इन नसीहतों को फॉलो कीजिएगा। समीन कराम, इस वक्त हम एक मरतबा फिर लौटते हैं हमारे मेहमान मेजर सालिम हमद सालिम अल-मर्री की तरफ, जिनका ताल्लुक हमने कहा है कि जनरल डायरेक्टर्स ऑफ कोस्ट्स एंड बॉर्डर सिक्योरिटी से है। माजरत, तो अब हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई शख्स इस तरह का हादसा का सामना करे, यानी हो सकता है कि वो इमरजेंसी कोई सूरत हाल हो समंदर के अंदर, तो उसको यानी उसके लिए क्या कुछ इकदाम वो इख्तियार कर सकता है या क्या करेगा वो, इस सिलसिले में क्या रहनुमाई है, हमारे मेहमान इस सिलसिले में वजाहत पेश करेंगे। सियादत राइद सालिम हमद सालिम अल-मर्री, ننتقل محور التالي وسؤالنا يعني بخصوص إذا حد تعرض لخطر داخل البحر ماذا يجب أن يفعل؟
1: تمام. أولا ينبغي المحافظة على الهدوء وعدم الذعر. يجب أن يكون الشخص هادئ.
0: جميل.
1: هذا شيء مهم جدا يعني. وعدم محاولة إنقاذ شخص غريق إلا إذا كان منقذ

0: इसकी हिफाजत की दुआ करता है सेफ रहें और खुश रहें
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
2: आपने सुना हमें ऑन एयर नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर दिल से देसी

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ, रहिए अपडेटेड सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
2: हाँ भाई आ गए, घूमने फिरने की बातें कर लें, थोड़ी सी बैठ जाइए आराम से बैठिए आप। करक वगैरह मंगा दें आपके लिए। वैसे बताऊं इस गर्मी में जो लोग कहते हैं कि इस इतनी गर्मी में चाय पीते हो, हाँ जी पीते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे, एंड वेलकम टू कतर 2026 गर्मी स्पेशल। बिकॉज गर्मी में बहुत कुछ है करने के लिए। जो लोग कहते हैं कि कतर में अरे गर्मी में तो ऐसा मामला ठप हो जाता है, मार्केट बैठ जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड यू, बस आपको वहां तक पहुंचने की दूरी है और वहां तक पहुंचाने का काम हमारा है। तो हम आपको बता देंगे कि कहां कहां क्या क्या है और हर किसी के टेस्ट के लिए हर एक चीज बनी हुई है मार्केट में। कतर 2026। सबसे पहले मैं अगेन मेंशन करना चाहूंगा, क्योंकि गर्मियां हैं, बार बार हर हफ्ते मैं इस बारे में बात करता हूँ, स्टेकेशन का प्लान कर लीजिए। मौसम बदलेगा फिर भाई साहब स्टेकेशन का मतलब को नहीं भाई, यही है टाइम बढ़िया वाला थमने तो बेरा है। जब गर्मी रहा करे ना भाई तो होटल बुक करने में अलग ही मौज आती है। तो अगर आप जो है कपल हैं, फैमिली है, सिंगल हैं, ग्रुप में जाना चाहते हैं, स्टेकेशन का बेस्ट टाइम है। एक दिन की छुट्टी भी मिले ना भाई, मिल बांट के रूम शूम बुक कर लो, मजे करो भाई। क्योंकि स्टेकेशन में एक तो होटल्स में ऑफर्स बहुत सारे हैं और कतर के जो होटल इंडस्ट्री है वो बहुत ही यूनिक, बहुत ही क्रिएटिव है। ऐसे वैसे होटल नहीं है, सीधा सिंपल सिंपल है। ये लो जी ब्राउन कलर की दीवारें, वाइट चादर, ना जी ना, बहुत क्रिएटिव होटल्स हैं। अब जाके देखिए, कभी आपको बैम्बू रूफ्स मिलेंगे, कभी कुछ मिलेगा, कभी कुछ मिलेगा, एंड इट्स जस्ट अमेजिंग। एंड इफ यू हैव अ फैमिली हियर, अगर आप गर्मियों की छुट्टी में कहीं नहीं जा पाए और आप बस इंतजार कर रहे हैं, अब तो बच्चे भी घर पे हैं, कुछ लोग बोलते हैं ऐसे उससे, अब तो बच्चे घर पे हैं कहाँ जाएं, जाने को नहीं, उनको लेके जाइए। दिस इज द राइट टाइम, राइट मोमेंट, किसी भी वीकेंड पे आप प्लान कीजिए, आसपास ही तो है, घर में कौन सी चीज दूर है। मैक्सिमम एक घंटा ड्राइव करनी पड़ेगी आपको बहुत दूर किसी रिजॉर्ट में, वरना तो सब कुछ आसपास ही है। सो प्लान दिस वन, स्टेकेशन इज ऑन द लिस्ट नंबर वन पे, क्योंकि मैं हमेशा हमेशा पुश करता रहूंगा इस चीज के लिए जब तक गर्मी है, उसके बाद मैं नहीं कहूंगा कि जाओ ठंड में कूद जाओ पूल में। बट आपके इर्द गिर्द कोई इवेंट है जो आप मुझे बताना चाहें, आप पूरे कतर को बताना चाहें, सो ये बात पेट में रख के कोई फायदा नहीं है, बता दीजिएगा। सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं। प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज गेट इन टच विद अस एंड बताइएगा अगर हमसे कुछ मिस हो जाए। वैसे मिस होगा नहीं, क्योंकि हम बहुत डिटेल में जाके, एंड मैं एज अ प्रोफेसर काफी डिटेल रिसर्च करके देता हूँ आपको, लेकिन अगर मुझसे कुछ चूक हो जाए तो आप तो है ना है? चलो शुरू करते हैं पहले इवेंट से जहां पर आपको जाना ही जाना चाहिए। तो जो पहला इवेंट है ये बहुत बहुत बड़ा इवेंट है और ये 31 जुलाई तक है। देखिए जब आप मुझे सुन रहे होंगे तो तारीख थोड़ी सी आगे हो गई होगी। ये इवेंट जो है 10 तारीख को एक बार हो चुका है, 17 को है, 24 को है और 31 जुलाई को, तो अभी भी है, मतलब हर फ्राइडे ये इवेंट है। एंड इसका जो हेडलाइन है मैं पढ़ देता हूँ, हेडलाइन लिखी है अंग्रेजी में, बिग इमेजिनेशंस डिजर्व अ मोमेंट टू शाइन। मतलब कि आपके बड़े बड़े ख्यालात, बड़े बड़े जो इनोवेशन इमेजिनेशन है स्पेशली बच्चों के, उनको मोमेंट मिलना चाहिए टू शाइन। सो आईकिया लेके आया है आईकिया लिटिल स्टार्स, हर फ्राइडे जुलाई में, जुलाई में जितने फ्राइडे बचे हैं हर जुलाई के फ्राइडे पे आएगा। यहाँ पे क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस और सेंटर स्टेज को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाएगी और ये बच्चों के लिए 10 पार्टिसिपेंट्स होंगे पर सेशन और 5 एडिशनल वॉक इन पार्टिसिपेंट्स रहेंगे। ग्रैंड फिनाले जो है वो रखा गया है 7 अगस्त को, तो उसमें अभी टाइम है। इसका एज ग्रुप सुन लीजिए, क्योंकि घर में

के बच्चे हैं तो दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो. सो 5 साल से 12 साल के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. इसमें कई सारी एक्साइटिंग एक्टिविटीज हैं, मेमोरेबल मोमेंट्स हैं. ये जो मकसद है ना, ये

IKEA Little Hearts. ये इन स्टोर होगा एक्टिविटी जोन IKEA में, कतर में आप जानते हैं, आप जा सकते हैं, DFC के साइड में ही है. 10 जुलाई से 31 जुलाई बेसिकली हर फ्राइडे को है, ये फोकस रखिएगा, हर फ्राइडे. और शाम के 6 बजे से 8 बजे के बीच में, शाम के 6 बजे से 8 बजे के बीच में. देखिए इवेंट बड़े खास होते हैं ये वाले बच्चों के लिए जो 5 साल से 12 साल के बीच में. मैं कोई नहीं होता बताने वाला, मगर फिर भी लेट मी जस्ट गिव माय ऑब्जर्वेशन. ये मत सोचिएगा ओ आ गए बड़ा ज्ञान देने, नहीं मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने ये नोटिस किया है, मेरे साथ भी हुआ है. जब बच्चे छोटे होते हैं और उनको एक सेंटर स्टेज दे दिया जाता है, तो पब्लिक जो स्पीकिंग स्किल्स हैं या अपने टैलेंट को आगे रखने की कोई अगर क्रिएटिविटी वाली स्किल है, तो उन्हें आगे आकर उसे शोकेस करने में दिक्कत नहीं आती. तो आप उनको एक ग्रोथ का रास्ता देते, चलना तो उन्हें ही, मगर उनको एक रास्ता दिखा देते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि जब एज ज्यादा हो जाएगी फिर आप उन्हें कहते रहिए बेटा जाओ पुश कर दो, और ना पुश करोगे आप, जाओ बेटा जाओ स्टेज पे जाओ, तब नहीं होने वाला है. ये पहले हो जाएगा तो हो जाएगा, उसके बाद कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो जाएगा, सो दैट व्हेन दे ग्रो अप एंड इफ दे हैव अ टैलेंट, तो उन्हें शोकेस करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी. सो डू दैट फॉर देम एंड देयर फ्यूचर. ये बात मैं इतनी बड़ी इसके साथ जोड़ रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ भी होता था यार, अगर हम ड्रामेटिक्स में कभी पार्टिसिपेट नहीं करते तो खुलते नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आता बोलने का. भले आप मुझे देख नहीं सकते, बट एटलीस्ट इतना तो कॉन्फिडेंस है कि मैं आपसे माइक पे बात कर सकता हूँ. तो ये भी वहीं से आया है. सो गिव देम अ चांस, अगर आपके घर में 5 से 12 साल के बच्चे हैं, IKEA लिटिल हार्ट्स लिटिल स्टार्स में जरूर जरूर ले जाए. ऑलराइट, Let's move on to another event. Qatar 2026. अगला जो इवेंट है ये है कतारा में. This is in cooperation with the embassy of Republic of India. So Indian embassy की तरफ से है. और special screening हो रही है. ये 14 जुलाई को हो चुका है. देखिए जब आप मुझे सुन रहे होंगे तो तारीख थोड़ी सी आगे हो गई होगी. स्पेशल स्क्रीनिंग है इंग्लिश विंग्लिश की. ये पिक्चर मैं कभी नहीं बोल सकता. कुछ मूवीज ऐसी होती है वो जितने भी साल पुरानी हो जाए, बट व्हेन यू कम बैक टू देम दे जस्ट क्रिएट नॉट जस्ट नॉस्टैल्जिया, लेकिन आपको लगता है ये पिक्चर भाई साहब दोबारा नहीं बन सकती, ये दोबारा नहीं बन पाएगी. इंग्लिश विंग्लिश उन्हीं में से एक है. एंड टू सी द आइकॉनिक श्रीदेवी ऑन स्क्रीन वंस अगेन, इससे बढ़िया बात क्या है. इंग्लिश विंग्लिश ऐसी मूवी है जिस कैटेगरी में मैं क्वीन को भी रखूंगा, जिस कैटेगरी में मैं स्वदेश को भी रखूंगा. ये वो मूवीज हैं जो इम्पैक्ट लाती हैं एंड आपको ना हंसी ना दें तो मुस्कुराहट देती हैं. इट इज सो हार्ट वार्मिंग कि आप अंदर से इंस्पायर होते हैं, आप उस फीलिंग को समझा नहीं पाते, बट यू फील नाइस इनसाइड यू एंड एक सेल्फ डिस्कवरी होती है, कॉन्फिडेंस आता है कई सारी चीजों को लेकर. एंड इंग्लिश विंग्लिश इज वन ऑफ दिस मूवीज जो बिल्कुल सही कॉर्ड पे स्ट्राइक करती है. सो इफ यू हैवंट सीन इट, ये चांस है आपके पास, इसको मत छोड़िएगा. सो एम्बेसी ऑफ इंडिया टू द स्टेट ऑफ कतर, उन्होंने ये स्क्रीनिंग रखी है एंड इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव. मैं तो अगर कोई इंडियन एम्बेसी का सुन रहा है, मेरी आपसे गुजारिश है प्लीज इन मूवीज के लिए स्क्रीनिंग रखिए. बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर मैं 11th क्लास में था और स्क्रीनिंग हमारे स्कूल में रखी गई थी चक दे इंडिया की, एंड वी वर सरप्राइज कि यार क्या इनिशिएटिव है एंड वी लव्ड इट. तो ये जो जो चीजें की जाती है ना, और स्पेशली एम्बेसीज की तरफ से, तो ये बहुत बड़ा कदम होता है. और ये जो इंडियन एम्बेसी ने कदम उठाया है, आई रियली रियली अप्रिशिएट दिस बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कम्युनिटी. इसमें जितने लोग जुड़े हैं, मूवीज दिखाई जाएं, वो मूवीज जो किसी प्रोपेगेंडा पे बेस्ड नहीं होती, वो मूवीज जो आपके दिल को एक जैसे कहते हैं ना कि ऐसा फील कराती है, ऐसे ठंड की बिल्कुल सुबह में जो सूरज निकलता है वैसी वार्मथ. आहा क्या बात कह दी मैंने, तो वो जो वार्मथ है वो इन मूवीज के अंदर है. एंड आई अर्ज आई रिक्वेस्ट, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है इंडियन एम्बेसी से कि ये चीज जारी रखिए एंड कीप शोइंग सच मूवीज. सो हाउ इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट, वाई इट इज इम्पोर्टेंट, वाई इट इज नॉट इम्पोर्टेंट एंड वाई इट शुडन बी अ पार्ट ऑफ द कल्चर एंटायरली. ठीक है बोलना जरूरी है, बोलनी पड़ती है, मजबूरी है, क्या करें, मार्केटिंग की भाषा अंग्रेजी ही है. वो एक एक बात है किसी ने कही थी, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें था कि हिंदी दोस्ती की भाषा है और उर्दू जो है वो मोहब्बत की भाषा है और इंग्लिश जो है वो मार्केटिंग की भाषा है. बट दैट डजंट मीन कि आप अंग्रेजी हर जगह यूज करें, बट इट्स ओके, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मूवीज हैंड्स डाउन. इंग्लिश विंग्लिश आप भी अपनी स्टोरी तो जरूर शेयर कीजिएगा और हमें टैग कर दीजिएगा. सो FM107 Qatar. ये बड़ा जरूरी है. Qatar 2026. अब उस इवेंट के बारे में बात करते हैं जो हो चुका है. ठीक है, ये हो चुका है. तो दोहा का सबसे बड़ा समर शॉपिंग एक्सपीरियंस हो चुका है, दोहा समर ट्रेड फेयर.
ये 30 जून से शुरू हुआ, 4 जुलाई को खत्म हुआ, फ्री एंट्री थी। इस एग्जीबिशन के जरिए कई वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, डील्स और फैमिली फ्रेंडली

एनवायरमेंट लोगों को मिला अंडर वन रूफ. हर रोज हुआ ये एंड अर्ली मॉर्निंग से बिल्कुल मिड नाइट तक लोग पहुंच रहे थे इसमें, भर भर के जा रहे थे. एंड ऐसे इवेंट कतर में आते रहेंगे. मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बीता हुआ इवेंट ताकि आपके जहन में रहे कि ऐसा इवेंट छोड़ना नहीं है. यहाँ पर ना आप बस सोचिए, आपको टी शर्ट लेनी है मान लो, एक बुस्टर्ट लेके आनी है मुझे, यहाँ पर वो भी मिलेगी आपको, प्रोडक्ट्स मिलेंगे एंड इतने बढ़िया रेट में थे भाई जिसकी हद नहीं. ये एग्जीबिशन एक किस्म का मेन स्पॉट बन गया था लोगों के लिए कि भाई कुछ नहीं है करने को, चलो डीसीसी चलते, दोहा समर ट्रेड फेयर चलते हैं. लोग भर भर के जा रहे थे तादाद में. तो ऐसे इवेंट्स होते रहेंगे. विजिट कतर की वेबसाइट को आप जरूर चेक करते रहा करें. ये इवेंट फिलहाल हो चुका है, 23 जून से 4 जुलाई तक था. एंड व्हाट एन इवेंट इट वाज, मार्वेलस मार्वेलस. सब कुछ था भाई, यहाँ पे गद्दे मिल रहे थे और वो क्या कहते हैं, एक बड़ी खूबसूरत चीज मैं ऐसे लेके आया था, बैटमैन की घड़ी भाई, बैटमैन की घड़ी, मजा आ गई. अब जरा आगे बढ़ते हैं उन इवेंट्स की तरफ जो होने वाले हैं. अब जो इवेंट है जो होने वाला है इसमें थोड़ा सा टाइम है, अभी 2 महीने हैं, 28 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं क्योंकि सेम जगह पर है, दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में होने वाला है ज्वेलरी एंड वॉचेस एग्जीबिशन 22nd एडिशन. समझ रहे हैं आप, ये कोई हल्का फुल्का इवेंट नहीं है. मैं कई सालों से देख रहा हूं इसको, मुझे ही यहाँ पे 10 साल होने वाले हैं, हो चुके हैं इनफैक्ट, तो तब से ये इवेंट में देखता आ रहा हूँ. इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट. हमने कितने बड़े बड़े सितारों को इसका चेहरा बनते हुए देखा है एंड इस बार भी मुझे उम्मीद है कोई ना कोई बड़ा चेहरा चुना जाएगा इसकी ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे. लेकिन इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, जो लोग नए हैं बता दूं, यू कैन एक्सपीरियंस मॉडर्न इमर्सिव एनवायरनमेंट जहां पर लग्जरी और एलिगेंस का मेल आपको नजर आता है. कई सारे कलेक्टर्स यहाँ पर पहुंचते हैं जो अपने कलेक्शन को शोकेस करते हैं. कई सारे रीजनल बायर्स यहाँ पर होते हैं और इंटरनेशनल विजिटर्स की तो यहाँ पे तांता लगा रहता है. तो अगर आप कभी भी इसका हिस्सा नहीं बने, दिस इज द राइट टाइम टू एक्चुअली विजिट एंड एक्सपीरियंस दिस, बिकॉज ये बहुत बहुत बड़ा और शानदार इवेंट होता है. आई स्टिल रिमेंबर कि यहाँ पर मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पूछा था. मैंने पूछा था कि ये बताइए लग्जरी आपके लिए क्या है. एंड जब मैंने ये सवाल पूछा सबकी नजर मेरी तरफ घूम गई, अरे ये क्या पूछ रहा है, बिकॉज जो सामने थे वो बहुत बड़े आदमी थे और बहुत ही मोहब्बत के साथ उन्होंने, ही वाज अ लोकल कतरी और उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया. मैंने जब पूछा उनसे कि लग्जरी आपके लिए क्या है, तो बोले लग्जरी मेरे लिए वो है जिसमें मुझे सुकून मिले, जिसमें मुझे आराम मिले, इट हैज नथिंग टू डू विद मनी. तो किसी ने बोला हाँ भाई जब पैसा होता तो ये जवाब देने में आसानी रहती, दैट इज ऑल्सो फैक्ट, मगर ये फैक्ट है भाई, बात तो सही, जिसमें सुकून रहे आराम रहे वही लग्जरी है. और दूसरे टाइप की लग्जरी देख रहे हैं तो इस इवेंट में पहुंच जाएगा दोहा वॉचेस एंड एग्जीबिशन, ज्वेलरी एंड वॉचेस एग्जीबिशन. और ये इस बार का 12th एडिशन है, सॉरी 12th एडिशन नहीं, क्या बोल रहा हूं मैं, 12th नहीं, इनफैक्ट 22nd है. लेट मी कंफर्म, यस इट इज द कौन सा एडिशन है, 22nd है भाई, अरे बाप रे. तो 22 एडिशन हो चुके हैं, इस बार कौन फेस बनेगा, ब्रांड एम्बेसडर बनेगा, ये मुझे देखना है. सो इस पे तो मेरी नजरें बनी हुई हैं. ओके, लेट्स मूव ऑन टू अनदर वन. आप सुन रहे हैं कतर 2026 सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी. अब देखिए स्टोरी टेलिंग आप मुझसे तो करवाते रहते हैं, है ना, मैं आपको कहानी सुनाते रहता हूं, लेकिन स्टोरी टेलिंग एक और जगह होती है. एक कहानी है जो सुनाई जाने वाली है और ये जो कहानी है बड़ी खास होने वाली है. ये कहानी एक लिटिल गर्ल की, एक छोटी सी बच्ची की, इसका नाम है लायला, जो एक विजिट पर जाती है अपनी दादी के नानी के घर जाती है और उनसे वो मिलने के रास्ते में मिलती है एक चालाक भेड़िए से जो धोखा देने की कोशिश करता है. द वुल्फ ट्राइज टू डिसीव हर कंप्लीटली. और स्टोरी जो है वो हाईलाइट करती है टेंशन बिटवीन इनोसेंस, यानी कि उसकी शराफत और डिसेप्शन धोखा, इन दोनों के बीच का जो टेंशन है वो आपको यहां पे देखने को मिलेगा. और ये बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है. ये कहानी एक टाइम टेलर टेल है एंड जनरली बच्चों को बहुत पसंद आती है ये कहानी. और कई दफा ये कहानी अलग अलग भाषाओं में सुनाई गई है, दिखाई गई है और अब तो बड़े भी इसे पसंद करते हैं. तो अगर आपने कभी भी ये कहानी नहीं सुनी है तो विजिट कीजिएगा थिएटर अपने बच्चों के साथ और एक लास्टिंग फैमिली मेमोरीज आप क्रिएट करेंगे, इस बात की पूरी पूरी गारंटी है. लायला एंड मी, ये कहानी एक इस फॉर्मेट में भी, लेकिन इस बार इसका नाम रखा गया है लायला एंड द वुल्फ. ये रिकमेंडेड है 4 से 11 साल के बच्चों के लिए. एज ग्रुप में बता दूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, 4 से 11 साल के बच्चों के लिए. और ये परफॉर्म की जाएगी इस बार अरेबिक में. सो अगर आपके बच्चे अरेबिक स्कूल्स में हैं एंड यू वांट टू मेक श्योर कि वो कुछ एक्सपीरियंस करें इन द लोकल लैंग्वेज, और इफ यू अंडरस्टैंड अरेबिक प्लीज गो. मैं तो कहूंगा

भी जाइए, बच्चों के साथ तो आप जाएंगे ही जाएंगे, बट इफ यू वांट टू विजिट आप जा सकते हैं. बच्चों के लिए खैर एज ग्रुप है 4 से 11 साल की, एंड इट विल बी परफॉर्म्ड इन अरबिक. एंड इन्होंने इस बार आफ्टरनून परफॉर्मेंसेस भी रखी हैं, तो उन पे भी नजर रखिएगा. ये 18 अगस्त से 22 अगस्त तक है, शाम को 4 बजे. ओके, ये दोहा प्लेयर्स कम्युनिटी थिएटर ग्रुप है जहां पर ही होने वाला है, 18 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में शाम को 4 बजे से. देखो, स्टोरी टेलिंग की खास बात जो मुझे भी महसूस होती है, जब भी मैं भी आपको कहानी सुनाता हूँ तो मेरे दिमाग में भी कहानी का इमेजिनेशन चलता रहता है. बहुत सारी कहानियां किस्से ऐसे होते हैं जो हम पहले सुना करते थे, अब तो बच्चों के पास विजुअली सारी कहानियां अवेलेबल है. बट देन टू बूस्ट देयर इमेजिनेशन, यू नो, एक चीज को 5 तरीके से दिखाने पर बहुत फायदा रहता है. मैं हमेशा कहता हूँ कि जब मैं कहानी सुना रहा होता हूँ, एंड इफ आई से कि कहानी के अंदर मैंने बोला कि एक आदमी एक बेंच पर बैठा हुआ था, तो आपके दिमाग में, आपके इमेजिनेशन में आना चाहिए कि वो बेंच कैसा होगा. क्या वो लकड़ी का बेंच है, या वो लोहे का बेंच है, या किसी और मटेरियल का बेंच है, या वो बेंच पत्थर का बना हुआ है. बिकॉज यू हैव गुड इमेजिनेशन स्किल्स, और आप सोचते भी होंगे कहानी को सुनते सुनते. तो बच्चों के साथ क्या होता है, बच्चे जब एक कहानी कहीं से सुन लेते हैं तो एक एस्टैब्लिश्ड इमेजिनेशन होता है, और उस इमेजिनेशन को अलग अलग रंग मिलते हैं जब वो अलग अलग तरीके से सुनते हैं, देखते हैं. और इस बार ये जो विजुअली दिखाया जाएगा लैला एंड द वुल्फ, आई एम प्रीटी श्योर देयर इमेजिनेशन विल रन वाइल्ड. नॉट ओनली दैट, एक मोटिवेशनल कहानी है और बहुत बहुत बढ़िया कहानी है, जो सही गलत, नॉट जस्ट वाइट एंड ब्लैक, बट जो ग्रे शेड होता है जिंदगी का उसे भी बहुत अच्छे से दिखाती है, जो आई थिंक बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी बहुत बहुत फर्क लाता है. सो आपके बच्चे अगर अरेबिक स्कूल्स में पढ़ते हैं तो प्लीज उन्हें जरूर ले जाएगा. मैं फिर से बता दूँ, 4 से 11 साल के बच्चों के लिए है, और बहुत बहुत जरूरी है. जरूरी इसलिए, बिकॉज आई मीन इट, देयर इज नो, इसलिए मैंने बता दिया. सो दोहा प्लेयर्स कम्युनिटी थिएटर ग्रुप, 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में, ठीक है. ओके, मूविंग ऑन. कतर 2026. अब अगला जो है, कतर कैलेंडर पे जब मार्क हुआ था तो मेरी एक्साइटमेंट बिल्कुल, इट वाज ऑफ द रूफ. मैं भाई साहब ऐसे चिल्लाया था जैसे ना, वाओ, फाइनली. सो टॉय, कतर टॉय फेस्टिवल, इसके लिए आप तैयार हो चुके थे, वो ऑलरेडी चल रहा है. और क्या चल रहा है भाई, ये रनिंग इवेंट है, इस पे अगर आपने, आपका ध्यान अभी तक नहीं गया तो दीजिए ध्यान. इसमें एक्साइटिंग एक्टिवेशंस हैं और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो अलग अलग लोकेशंस पर हैं. बट इफ यू हैवंट बीन अ पार्ट ऑफ कतर टॉय फेस्टिवल इससे पहले, आप बहुत बड़ी चीज मिस करेंगे अगर इस बार भी आपने छोड़ दिया. तो आलस नहीं करना भाई साहब, यहाँ पे पहुंचना है बच्चों को लेकर. बड़े भी जाएं. ये 1 जुलाई से 30 सितंबर तक है, बहुत टाइम है आपके पास. दैट डजंट मीन कि आप लास्ट में चले जाएंगे, अभी तक भीड़ होगी ये मत सोच के जाना, क्योंकि बहुत सारे हाइलाइट्स हैं इसमें. मिस्टर बीन है, समर फन विद टेडी एंड बीन, ये एक्टिवेशन की एक डिटेल में लिखा हुआ नाम है जिसको सुन के बड़ा एक्साइटेड हुआ था मैं. तो ये अल हजम मॉल में रखा गया है. फिर बारबी है, समर इज मोर कलरफुल विद बारबी, इसकी लोकेशन है सिटी सेंटर. ये वीकडेज में 2 बजे से 10 बजे तक है रात के, और वीकेंड्स पे दोपहर के 2 बजे से रात के 11 बजे तक. एंड इसके अलावा फिर मुआना है, और मुआना सेट सेल ऑन समर एडवेंचर विद मुआना, इसकी लोकेशन है दोहा फेस्टिवल सिटी. और इसके बाद है पिक्सार, योर फेवरेट पिक्सार वर्ल्ड्स इन वन समर, और ये है सेकंड फ्लोर पे, प्लेस वेंडोम में. वीकडेज में 12 बजे से 10 बजे, और वीकेंड्स पर 1 बजे से 12 बजे तक, मतलब रात के. सो बेसिकली क्या है, कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जो मार्क किए जाते हैं ऑन द कैलेंडर, बिकॉज उनका क्या कहते हैं, उनका जो रनिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा होता है. इसका अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा टाइम है अभी. सो अगर आप अभी नहीं जा पाए, अभी तो बहुत टाइम है आपके पास, तो आप अभी भी जा सकते हैं, एंड यू शुड डेफिनेटली विजिट. And I don't know कि आप वर्ल्ड कप फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे. If you are following the World Cup, ये जरूर बताइएगा कि आप कहां पर जाने वाले हैं भाई साहब. फाइनल कहां देखने का प्लान है, अरे हमें भी बता दो भाई साहब, क्या दिक्कत होगी. तो हम भी जानना चाहते हैं कि आपका क्या प्लान है, किधर जाना चाह रहे हैं आप. एंड वी वुड ऑल्सो लव टू ज्वाइन यू इफ वी कैन. बाकी कोई भी ऐसा इवेंट है, मैं फिर से कहूंगा, कोई ऐसा इवेंट है जो हमसे मिस हो जाए, आप बताना चाहें तो जरूर बता दीजिएगा. एंड अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर आप नजर बना सकते हैं, नजर अपनी गड़ा सकते हैं, और वो चीजें हैं जो जो समर फेस्ट

0: समर एक्टिविटीज है जो कतर का वाटर स्पोर्ट्स है. अगर आप अभी तक किसी भी वाटर स्पोर्ट्स का हिस्सा नहीं बने हैं तो आपको बनना चाहिए. मैं अगर आपने कुछ भी ट्राई नहीं किया ना अभी तक कतर आ गए और आपने कोई भी वाटर स्पोर्ट्स नहीं किया है सो यू आर मिसिंग ऑन अ बिग बिग थिंग. तो आपको इसका हिस्सा तो बनना ही बनना चाहिए बिकॉज यू विल मिस आउट ऑन लॉट ऑफ थिंग्स इफ यू हैवंट बीन अ पार्ट ऑफ एनीथिंग एट ऑल. तो पहुंचिए एंड हमें भी जरा इत्तला कीजिएगा कि कोई ऐसा वाटर स्पोर्ट्स हमसे रह गया हो हमें भी तो पता लगे. और अब जरा बात कर लेते हैं एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट की और एक बहुत बहुत बड़े इवेंट की.
1: कतर 2026
0: कतर में वैसे तो बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स ऑलरेडी कतर ने स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट में पूरे कर लिए हैं लेकिन वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस और हाई प्रोफाइल गेम जो है वो भी कतर में आ रहा है. इंटरनेशनल मेंस बास्केटबॉल कॉम्पिटिशन जो ग्लोबली जाना माना है फर्स्ट एवर फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप. वर्ल्ड कप समझ रहे हैं आप ये पहला जो वर्ल्ड कप हुआ था ये अर्जेंटीना में हुआ था 1950s में 1950 में हुआ था भाई सबसे पहला वाला. और जो फाइनल था होस्ट ने हरा दिया था भाई यूएसए के अगेंस्ट था. अब जो है आगे बढ़ गया है मामला अब बहुत बड़ा हो चुका है और 2027 का जो एडिशन है इसका वो कतर होस्ट करने जा रहा है. इसमें 32 नेशंस पार्टिसिपेट करें एंड इट इज सच अ ह्यूज ऑनर क्योंकि जब वर्ल्ड कप की बात हुई थी वी वर सो एक्साइटेड. हमने मतलब एज अ नॉर्थ इंडियन मैं अपनी बात करता हूं मैंने फुटबॉल में कभी इतना इंटरेस्ट दिखाया नहीं था मगर कतर ने जब वर्ल्ड कप कराया ना तो फिर ऐसी आदत लग गई है अभी फुटबॉल की न्यूज ही फॉलो करता हूँ इतनी इंटरेस्टिंग लगती है एंड नाउ आई काइंड ऑफ फेल इन फॉर इट. नहीं देखना भाई मैच तो देखना है और वैसा ही हाल अभी होने वाला है उन लोगों का जो कभी बास्केटबॉल में शायद इतने इंटरेस्टेड नहीं थे बिकॉज कतर कोई भी इवेंट जब करता है स्पोर्ट्स का तो वो उस लेवल पे ले जाके करता है कि फिर उसके बाद बाकी कंट्रीज फीकी पड़ जाती. मैं बता रहा हूँ आपको लिख के दे रहा हूँ एक बार ये कतर में हो गया ना बाकी कंट्रीज करा ही नहीं पाएंगे इनके जैसा. लिख के दे रहा हूँ सबके लिए ऐसा होगा रे कहाँ कॉम्पिटिशन उतर गए ये लोग. कतर का इस मामले में कोई कॉम्पिटिशन नहीं है और इसीलिए कतर को ग्लोबली इज्जत दी जाती है हर मामले में स्पेशली इन स्पोर्ट्स. सो 2027 का एडिशन कतर होस्ट करेगा एंड जो क्वालिफाइड टीम्स होंगी वो डायरेक्टली एलए 2028 ओलंपिक गेम्स का हिस्सा भी बनेंगी थ्रू फीबा ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट्स. मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फैंस वर्ल्ड वाइड आने वाले हैं. यस अगेन एक्साइटमेंट ऑफ रोड टू कतर शुरू हो चुका है भाई काउंटडाउन. अभी तो जुलाई है आधा साल जा चुका है अभी देखिए फटाफट जा जाएगा 2028 ये खड़ा आगे 2027 ये खड़ा मैं 28 ला रहा हूँ अभी 27 सो 80 नेशनल टीम्स ऑल फोर फीबा रीजन्स कम्पीट करने वाले हैं इन फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2027 क्वालिफायर्स 15 महीने के इस वक्फे में. और जो क्वालिफायर्स होंगे दे विल शोकेस ओवर 2000 प्लेयर्स अक्रॉस 420 नेशनल टीम एंड इंटेंस बास्केटबॉल एक्शन आपको देखने को मिलेगा. जो टोटल 80 नेशनल टीम्स होंगी फ्रॉम फोर फीबा रीजन्स ऑफ अफ्रीका जहां से 16 टीम निकलेंगी फिर अमेरिका 16 टीम फिर एशिया एंड ओशनिया तो 16 टीम्स एंड फिर यूरोप की 32 टीम्स ये सारी की सारी मिला के दे विल प्ले इन फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2027 क्वालिफायर्स. दो गेम्स पर विंडो एंड ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानना कि टिकट्स की भी विंडो जो ओपन होगी तो वो कतर में कैसे ओपन होती है आपको ऑलरेडी पता है वैसे तो पर फिर भी बता दूं जब कतर में ओपन होगी तो ये मत सोचिएगा आलस में कह रहे टिकट ले लेते हैं बाद में ले लेंगे. पहली फुर्सत में मैंने अभी से आगाह कर दिया आधे साल में अभी से जनवरी के लिए तो तैयार रहिएगा भाई साहब. रिजल्ट और इन्फॉर्मेशन बाकी चीजों की जल्दी आ जाएगी कहाँ पे मैच होने वाले हैं ये भी जल्दी पता लगेगा. जो क्वालिफाइंग विंडोज हैं हर रीजन की वो इस तरीके से हैं कि नवंबर की 24 से पहली विंडो है 2 दिसंबर तक फिर फरवरी में हो चुकी है ऑलरेडी मतलब 2025 चलती हुई आ रही है और अब जो आने वाली है वो नवंबर की 23 तारीख से है उससे पहले अगस्त से अगस्त में भी है 24 से 1 फिर 23 से 1 दिसंबर नवंबर और फिर फरवरी 22 से 2 मार्च तक. सो देयर आर टन्स ऑफ थिंग्स हैपनिंग मगर फीबा इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन कतर और इससे बड़ी फख्र की बात हो नहीं सकती है. सो वेरी वेरी प्राउड मोमेंट एंड आई एम रियली रियली हैप्पी टू अनाउंस दिस. वैसे तो आपको पता है ये खबर बहुत ही प्रेविलेंट इंपॉर्टेंट है पर ये प्रिवेल करेगी और भी ज्यादा लोगों तक और ही पहुंचेगी और बहुत बड़ी होती चली जाएगी एंड आपको पता भी नहीं लगेगा कब क्या हो गया. एंड लास्टली क्योंकि जब हम बात कर ही रहे हैं आने वाले बड़े बड़े इवेंट की तो एक और इवेंट है जो बहुत बड़ा है और जो आने ही वाला है. कौन सा इवेंट है

0: पता है ना, ये इवेंट है मोटो जीपी कतर एयरवेज ग्रां प्री ऑफ कतर 2026 और फॉर्मूला वन कतर एयरवेज ग्रां प्री 2026। एक तो आएगा मोटो जीपी, वो 6 से 8 नवंबर है, और फॉर्मूला वन 27 से 29 नवंबर के बीच में। सो इन पे भी नजर जरा बना के रखें, क्योंकि ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग हेयर ओनली। बाकी एक और इवेंट है, मेजर इवेंट, किसी ने मुझसे कुछ दिनों पहले पूछा था हमारे ऑफिस में ही, एनो पूछे थे कब है भाई, क्या हैंस जिमर कब आ रहे हैं, तुम कब से कह रहे हो हैंस जिमर परफॉर्म करने वाले हैं। अरे भाई मैं खुद देखने जाऊंगा हैंस जिमर को, ये 6 नवंबर को आ रहे हैं, फ्राइडे का दिन है ठीक है, और रात को 8 बजे परफॉर्म करेंगे। मुझे आपका नहीं पता, मैं हैंस जिमर का बहुत ही बड़ा फैन हूँ भाई, बहुत ही बड़ा फैन हूँ हैंस जिमर का, एंड वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिशियन इफ नॉट द बेस्ट। ही इज गोइंग टू परफॉर्म इन 974 स्टेडियम और ये परफॉर्म करेंगे 6 नवंबर को, दैट इज अ फ्राइडे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो गेट रेडी फॉर समथिंग वेरी वेरी समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, समथिंग रियली अमेजिंग। एंड बाकी अगेन सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 कतर, FM107 कतर। इन इवेंट्स के जरिए मकसद ये भी रहता है कि आप भी इन इवेंट्स का हिस्सा बने, और अगर कुछ ऐसा इवेंट है जो हमसे चूक जाए तो आप भी हमें बताएं, बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका होना, हमसे जुड़ना, इट इज इम्पोर्टेंट। एंड एक और चीज, ये रिसेंटली मैंने, इनफैक्ट मैंने अभी फोन खोला तो मेरे सामने ही आ गया, कतर कल्चर एंड हेरिटेज फेस्टिवल, इस पे भी नजर रखिएगा, बिकॉज दिस इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मंडे को है, अगस्त की 31 तारीख को सुबह के 10 बजे से, अभी दिन है, अच्छे खासे दिन है, मगर ये जो कतर कल्चरल और हेरिटेज फेस्टिवल होता है बड़ा ही वाइब्रेंट इवेंट होता है, बहुत ही रिच हिस्ट्री और ट्रेडिशन इसमें कतर के दिखाए जाते हैं, और कोई नया नया भाई कतर में आया ये आप मिस नहीं कर सकते, यू कैन नॉट मिस आउट ऑन दिस वन। इसके वेन्यू, इसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है, इंशाल्लाह जैसे जैसे मेरे पास आती चली जाएगी वैसे वैसे मैं आपको बताता चला जाऊंगा। एंड इसके साथ इंटरनेशनल फूड एंड डाइनिंग एक्सपीरियंस भी आपको जन्म मिलेगा। ये आने वाले इवेंट है जिनके बारे में सिर्फ इन्फॉर्मेशन है ऊपर से, तो ऊपरी ऊपरी इन्फॉर्मेशन मैं दे दे रहा हूँ आपको, बाकी जब जैसे जैसे होता चला जाएगा, जैसे कि कतर T100 ट्रायथलॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप है जो दिसंबर में होगी, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जब आ जाएगी तो आपको मिलेगी। ऐसे कई सारे इवेंट्स हैं, तो अगर आपके जहन में कोई इवेंट्स हैं और आप हम तक पहुंचाना चाहें तो बेझिझक मोस्ट वेलकम। सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 कतर, FM107 कतर, और आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि क्या होता है सुनते सुनते आपको लगता है कि ये बात तो सुन ली इसकी, अब जरा आवाज को चेहरा दे दिया जाए, तो उसके लिए आप सोशल मीडिया पे आ सकते हैं, दोहा वाला कबीर के नाम से मुझे ढूंढ सकते हैं, मैं वहां पे भी आपको मिल जाऊंगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आप अगर कतर में नए आए हैं तो ये सिर्फ शुरुआत है आपकी, ये तो कुछ इवेंट है जो गर्मियों में हो रहे हैं, आने वाले वक्त में बहुत सारे इवेंट है, सो प्लीज पुश योरसेल्फ। नए आए हैं आप तो पुश योरसेल्फ एंड गो टू मैक्सिमम इवेंट्स एंड एक्सपीरियंस, क्योंकि ये मौका जो कुछ इवेंट्स अभी हो रहे हैं ये वापस नहीं आएंगे, अगले गर्मी तक वेट करना पड़ेगा आपको, तो प्लीज प्लीज निकलें कहीं ना कहीं किसी इवेंट पर जाएं, एक्सपीरियंस द बेस्ट ऑफ कतर। ऑन दैट नोट दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ, अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं। मासलाम।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: दोस्तों, ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 55 के क्लॉज नंबर 3 के तहत गाड़ी चलाते वक्त 10 साल की उम्र से कम के बच्चों को आगे वाली पैसेंजर सीट पे बैठालने की इजाज़त नहीं है। बच्चों को आगे वाली सीट पे बैठालने से आप ड्राइविंग करते वक्त डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। बच्चों को गाड़ी की बैक सीट पे बिठाने से आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत में मदद मिलती है। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।
3: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड, सन एंड साउंड, आरजे सफा के साथ, सफा के साथ, संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी, दिल से देसी।
4: Anytime, anywhere.
5: Yes, anytime, anywhere.
4: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
6: FM 107.
4: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: Kabhi bhi aur kahi bhi, aap sun sakte hain. FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत. सुनिए हदीत टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107. एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी. स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम. हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट. दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए.
4: दोस्तों, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की हिफाजत को तरजीह दें. आजकल के वक्त में घर में कई ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती हैं. इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है ताकि हम किसी भी नाकाबिले बर्दाश्त हादसे से बच सकें. इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बच्चों से दूर रखें, ये उन्हें चोट लगने से बचाता है.

0: आप ऑब्जेक्ट्स को सिक्योरली स्टोर करें, छुरियां और काटने वाले औजार बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। छोटी छोटी चीजें उनकी पहुंच से दूर रखें, जैसे कि छोटे टॉयज पार्ट्स भी जो उनके मुंह में जा सकते हों। गैस और कुकिंग अप्लायंसेस के इस्तेमाल से भी बच्चों को दूर रखें, ये बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। छोटे बच्चों को स्विमिंग पूल और वाटर सोर्सेस के करीब अकेले ना जाने दें, इससे उन्हें पानी में डूबने का खतरा होता है। मत भूलिए कि हर दिन हमें अपने घर को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि वो बच्चों के लिए सेफ हो। ऐसे छोटे लेकिन जरूरी कदम हमारे बच्चों को महफूज रखने में मददगार साबित होते हैं। सेफ्टी सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि एक अमल है। FM 107 आपकी खुशहाल जिंदगी की ख्वाहिश करता है।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: आप सुन रहे हैं FM 107
4: दिल से देसी।
5: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। सामिने किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। सामिन किराम, आज का मौजू है कर्ज हसन देना, कर्ज की अदायगी में बेहतरीन अखलाक इख्तियार करना और लोगों के साथ एहसान का मामला करना। इस सिलसिले में एक हैरत अंगेज वाकया है कि एक दिन एक देहाती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना कर्ज वापस मांगा। कर्ज मांगना तो उसका हक था, लेकिन उसने मुतालबा करने का अंदाज बहुत सख्त इख्तियार किया। उसने सख्त लहजे में गुफ्तगु की और ऐसी बातें कहीं कि सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन को सख्त नागवार गुजरी। उन्हें महसूस हुआ कि ये शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब का ख्याल नहीं रख रहा। बाज़ सहाबा उसकी सरजनिश के लिए आगे बढ़े, लेकिन देखिए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे छोड़ दो, क्योंकि हक वाले को बात करने का हक होता है। और इस तरह सामने किराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात के लिए किसी को नाराज होने नहीं दिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया कि उस शख्स को वही उम्र का ऊंट वापस कर दो जो उसने कर्ज दिया था। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, हमारे पास उसी उम्र का ऊंट नहीं, उससे बेहतर ऊंट मौजूद है। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसी बेहतर ऊंट को दे दो, क्योंकि तुम में सबसे बेहतर वो है जो कर्ज अदा करने में सबसे बेहतर हो। रिवायत है सही बुखारी और सही मुस्लिम की। देखिए सामिन किराम, कानून ये था कि जितना लिया था उतना वापस किया जाए, लेकिन एहसान का तकाजा ये था कि अगर बगैर किसी शर्त के बेहतर चीज वापस की जा सकती हो तो ये बेहतरीन अखलाक है। सामने किराम, जिस तरह कर्ज देना नेकी है, उसी तरह कर्ज वापस करना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लोगों का माल इस नीयत

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। सईद अल सुलैती कतर के सबसे नुमाया मोटरसाइकिल रेसर्स में शुमार किए जाते हैं। मैंने पिछले कई एपिसोड्स में मोटर गाड़ियों के बारे में बताया, मोटर कार रेसिंग के बारे में बताया, ऑफ रोड रेसिंग के। और इस बार मैं जिसके बारे में मैं बात करूंगा या कर रहा हूं, वो सईद अल सुलैती है, जो कि मोटरसाइकिल रेसर्स में से वन ऑफ द स्टार्स हैं। उन्होंने अपनी रफ्तार, हिम्मत और मेहनत के जरिए बैन अक्वामी मोटर स्पोर्ट में कतर का नाम रोशन किया है। मोटरसाइकिल रेसिंग दुनिया के मुश्किल तरीन और ख़तरनाक खेलों में से एक है। ये आप लोगों को पता है, टू व्हीलर इज ऑलवेज डेंजरस, बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होता है, जहां ड्राइवर्स को बहुत तेज़ रफ्तार पर मुकम्मल कंट्रोल और गैर मामूली तवज्जो की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ सईद अल सुलैती ने इन तमाम टैलेंट का बेहतरीन मुजाहरा करते हुए एक कामयाब करियर तय किया। हिम्मत चाहिए होता है,

0: साइकिलिंग रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए एंड इट इज क्वाइट डेंजरस क्वाइट डेंजरस। सईद अल सुलैती ने कतर की नुमाइंदगी सुपर बाइक वर्ल्ड चैंपियनशिप में की जो मोटरसाइकिलिंग रेसिंग की दुनिया के सबसे बड़े और मुकाबले से भरपूर टूर्नामेंट में से एक माना जाता है। इस प्लेटफॉर्म पर मुख्तलिफ ममालिक के बेहतरीन राइडर्स शिरकत करते हैं और सईद ने उनके दरमियान अपनी काबिलियत साबित की। इसके अलावा उन्होंने FIM एंड्योरेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी हिस्सा लिया जहां लंबी मुद्दत की रेसेस ड्राइवर्स की जिस्मानी और जहनी सलाहियत का सख्त इम्तिहान लेती है। आज सईद अल सुलैती कतर के मोटरस्पोर्ट के एक रोशन सितारे के तौर पर जाने जाते हैं और उनकी कामयाबियां इस बात का सबूत हैं कि जज्बा मेहनत और अजम के जरिए कतरी एथलीट्स दुनिया के सबसे बड़े मंच पर अपनी पहचान बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: दोस्तों, मसाजिद और आसपास के घरों के करीब गलत पार्किंग ना सिर्फ ट्रैफिक को रोकने का सबब बनती है, बल्कि ये इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे एम्बुलेंस, फायर ट्रक्स और पुलिस कार्स के लिए भी बहुत बड़ी रुकावट है। जब इन व्हीकल्स को जल्दी से गुजरना होता है तो किसी भी हादसे का खतरा लाहक बढ़ जाता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी पार्किंग की आदतों में बेहतरी लाएं और दूसरों के लिए रास्ता खाली रखें। अगर हम थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपनी गाड़ी सही जगह पर पार्क करें तो हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने इलाके के हर शख्स के लिए फायदा मंद साबित हो सकते हैं। इस तरह

0: कहा, हम अपनी कम्युनिटी को सेफ, ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल बना सकते हैं। हमारी छोटी सी सोच और मेहनत से न सिर्फ ट्रैफिक का मसला हल होगा, बल्कि हमें अपनी रिलीजियस और सोशल ड्यूटीज को बेहतर तरीके से अदा करने में मदद मिलेगी। वजारत दाखिला का कहना है कि हम सब मिलकर इस मसले को हल करने में अपना हिस्सा डालें और एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा बने जहां सबके लिए रास्ता खुला हो और सेफ्टी पहली तरजीह हो। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: आप सुन रहे हैं FM 107।
2: दिल से देसी।
3: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
4: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। लिसनर्स, हम बात कर रहे हैं वॉक की। जैसे हमने बात की कि वॉक का जो आगाज है कैसे किया जाए, तो आज हम जानेंगे कि वॉक को रोज़मर्रा जिंदगी का मुस्तकिल हिस्सा कैसे बनाया जाए। इसमें मुस्तकिल मिजाजी जो है वो बहुत अहम है, और आज हम यही देखेंगे कि किस तरह से हम उस पर अमल कर सकते हैं। बहुत से अफराद चंद दिन वॉक करते हैं और फिर मसरूफियत या फिर लेजीनेस या सुस्ती की वजह से छोड़ देते हैं। कामयाबी का राज सिर्फ और सिर्फ वॉक करना या वॉक शुरू करना नहीं है, बल्कि उसे मुस्तकिल जारी रखना है। सबसे पहले एक हकीकत पसंदाना जो हदफ है वो मुकर्रर कर लीजिए। अगर आप नए हैं यानी अभी शुरू की है वॉक, तो रोज़ाना 20 या 30 मिनट चलने का दबाव ना डालिए। मिसाल के तौर पर पहले हफ्ते में आप 10 मिनट रोज़ाना आप वॉक कीजिए, दूसरे हफ्ते में 15 मिनट वॉक कीजिए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त को ज़्यादा करते चले जाइए। वॉक करने के लिए आरामदेह जूतों का इंतखाब बहुत ज़रूरी है। मुनासिब जूते आपके पैरों, घुटनों और कमर को सहारा देते हैं, और ऐसे कपड़े पहनिए जो जिस्म को आराम दें और वो मौसम के मुताबिक हों। वॉक करते वक्त अपनी जो बॉडी पोस्चर है उसका खास ख्याल रखना है। सर सीधा रखिए, कंधे थोड़े ढीले कीजिए, नज़रें बिल्कुल सामने रखिए, हाथों को कुदरती अंदाज में हरकत दीजिए। इससे वॉक ज़्यादा मौसर और आरामदेह बनती है और अपने आप को आप रिलैक्स फील करते हैं। वॉक को दिलचस्प बनाने के लिए किसी दोस्त या फैमिली के किसी भी फर्द को अपने साथ शामिल कर लीजिए, और अगर अकेले चल रहे हों तो फिर अपना कोई भी जो आपको प्रोग्राम बहुत पसंद हो वो आप सुनिए। तिलावत या पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं। इस तरह वक्त का एहसास भी कम होता है और दिलचस्पी भी बरकरार रहती है। और अगर मौसम ख़राब हो तो अपनी वॉक जो है वो तर्क ना कीजिए। घर के अंदर चलना, शॉपिंग मॉल में वॉक करना या सीढ़ियाँ इस्तेमाल करना भी जिस्मानी जो एक्टिविटी है उसी में शुमार होता है। वॉक के दौरान अपने जिस्म के इशारों पर तवज्जो दीजिए। अगर चक्कर आ रहे हों, सीने में दर्द हो या सांस लेने में दुश्वारी हो तो फौरन रुक जाइए, और फिर तभी मशवरा जो है वो ज़रूर कीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। इसमें याद रखिए कि रोज़ाना की चंद मिनट की वॉक फ्यूचर में हमें कई मसाइल जो कि सेहत के हवाले से हैं या कई बीमारियां हैं उनसे बचा सकती है। मुस्तकिल मिजाजी ही असल कामयाबी है। थोड़ा चलिए लेकिन रोज़ चलिए। और आज जो हमने बात की है तो इसमें अपनी सेहत का ख्याल रखिए और वॉक को अपनी रोज़मर्रा जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
0: दोस्तों, साइबर क्राइम के खतरों से बचने के लिए हमेशा एहतियात बरतना जरूरी है। अननोन सोर्सेज से आने वाले मैसेजेस का जवाब देना या उनके लिंक्स पर क्लिक करना आपके लिए खतरा बन सकता है। हर मैसेज या ईमेल को वेरीफाई करें और सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेज पर ही यकीन कीजिए। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पासवर्ड्स और बैंकिंग डिटेल्स कभी भी किसी अनजान शख्स के साथ शेयर ना करें। स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड्स का इस्तेमाल करें और अपने डिवाइसेस पर एंटीवायरस और सिक्योरिटी अपडेट्स हमेशा अप टू डेट रखें। याद रखें, आपकी अवेयरनेस ही आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है, और छोटी सी एहतियात आपको बड़े नुकसान से बचाती है। साइबर क्राइम से महफूज रहने के लिए होशियारी और एहतियात को अपनी आदत बनाएं। FM 107 आपको याद दिलाता है कि धोखेबाजी से हमेशा होशियार रहना है।

0: नहीं, अगर आपका कॉन्फिडेंस है ठीक है, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ के ऊपर तो फ़ख्र बताया ही नहीं है। वो तो फटे हुए पैबंद लगा के जूते कपड़े सहाबा कराम जो अमीर थे कर सकते थे। और वाकई आने वाले ज़माने में आप देख लें कैसे कैसे माशी मामलात दरपेश हैं, चैलेंजेस हैं और आ रहे हैं। अगर इस चीज़ को वाकई फिक्र करके हम लोग इसके ऊपर तवज्जो करें तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, वरना बंदा बिला वजह के गम और फिक्र में अपनी एनर्जी को डाउन कर देता है।
1: पूरा पूरा पूरी की पूरी बात है। इसको मैं आपके मौजू के साथ साथ अभी उस आयत को भी कोट करता हूँ, वला तमुद्दन आइनैक इला मा मत्तअना बिहि अज़्वाजन मिन्हुम ज़हरत अल-हयात अद-दुनिया, के दूसरों की तुम्हारी आँखों को तुम यानी दूसरों को मैंने जो नेमतें दी हैं उस तरफ ज़्यादा आंखें ना डालो। मतलब ये कि अपना अपनी जो लाइफ स्टाइल है इस पर फोकस करो, बस दूसरों की तवक्कुआत पर या दूसरे क्या कहते हैं या दूसरों को अल्लाह सुब्हानहू ने क्या दी है तो इसकी तरफ ज़्यादा मत जाओ। तो इस आयत की तफसीर के हवाले से एक बात ये भी आ जाती है कि हम बाज़ औक़ात दूसरों की मालूमता पर नज़र तो नहीं डालते, लेकिन अपने आप के ख़ुद अपने आप की लाइफ स्टाइल इस तरह बनाने की कोशिश करते हैं ताकि सब के सब हमारे मालूमता की तरफ नज़र डालें।
0: ये भी एक बात है, अब बड़े ख़तरनाक बात है कि यहाँ अगर आप ये इसी नुमाइश करें तो फिर चार छः आप गार्ड भी रखें, बल्कि अब तो गार्ड भी मालिकों को लूट रहे हैं। अमन इसी में ही है कि जो है अल्लाह का शुक्र अदा करें, नमूदो नुमाइश ना करें। देखें अल्टीमेटली मुसीबतें भी समझा देती हैं इंसान को ना, और जो सबसे बड़ी चीज़ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर आप देखें इसको पूरे एस्पेक्ट में, हमें ग़ुलामी से निजात दिलाई। अब हम किस तरह की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ग़ुलामी में हैं, नफसानी ख्वाहिशात के अलावा कॉरपोरेट और आप ये जो जॉब कर रहे हैं बॉस की और कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप अपना काम खुद करें, तिजारत करें और अपने आप को रखें, और इसकी वजह से आप खुद ब खुद दूसरों की ख्वाहिशात और उनकी चीज़ों को उनको खुश करने की तरकीबें सोचते रहते हैं कि ये हमें कहीं निकालना दे या हमारा ये मामला ना ख़त्म हो जाए। तो इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने आप को आज़ाद और इंडिपेंडेंट रखें। ये बड़ी ही आजकल के दौर में आप देख रहे हैं, और टेक्नोलॉजी कैसे हर चीज़ों को, खासतौर पर जो एक कॉन्सेप्ट आ गया ना जॉब का, इसको खा रही है, और इसमें आपकी ख्वाहिशात और वो चीज़ें, आप इसमें आपकी जॉब लगती है और आपके जो रिश्तेदारियाँ कनेक्शन हैं उनकी तवक्कुआत हो जाती हैं। आप देखें हर एक की अपनी अपनी है, किसी छोटे भाई की, माँ बाप की, घर की, दीन से हटके बड़ा घर पहले शुरू हो जाएंगे, हाँ जी, फिर उसके बाद गाड़ी मोबाइल, और इन चीज़ों का कोई एंड नहीं है। वो बंदा पिसता जाता है, और एक सिचुएशन में कभी वो रियलाइज करते हैं ना, वो खुद करते हैं, यार मैंने किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारी या गुजार रहा हूँ, और जिसका कोई एंड नहीं है, और मैं मेंटली अनस्टेबल हो गया हूँ।
1: सही सही सही। और यानी आपके जो कंक्लूड अगर करूँ आपकी बातों से कि भाई अल्लाह के रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें तो वही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप लोगों को कभी खुश नहीं कर पाएंगे।
0: भाई अल्लाह की अतात, अल्लाह की इबादत, माँ बाप की अतात और उस्ताद की जो है ना काबिलियत, ये एक चीज़ें हैं कि इसमें आप कोशिश करें, ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। आप इसके लिए कोशिश करें कि जो अल्लाह को पसंद है, उस्ताद फ़ख्र करें मेरे तालिब इल्म पे, उसको इल्म और शऊर आए, माँ बाप कहें अतात करें, और उनको भी कई चीज़ें, वो अपने माहौल उन चीज़ों से उन्होंने जो वो कहते हैं ना ली हुई हैं, आप उनकी अच्छे तरीके से करेक्शन भी करें। बिल्कुल, हमने देखा है बड़े तौर तरीके जो हमारे वालदैन को या उनको इस्लाम के मुताबिक नहीं थे या इन चीज़ों के नहीं थे, वो इसी तरह ही कर रहे हैं ना कि भाई हमारे उनके पास बड़ा घर है, चलो अब हमारा बेटा बाहर गया है, अब हमारे पास भी ये शान शौकत नहीं है, इसमें मुकाबला नहीं करना हमने।
1: सही।
0: तो इन चीज़ों के ऊपर आप लेके जब चलेंगे तो सुकून भी होगा, वरना आप लें, अच्छा आप देखें कंज्यूमर फोबिया और इसके ऊपर क्रेडिट, ब्राज़ील में रिसर्च आई थी कि बहुत सारे लोगों ने फिर सुसाइड कर लिया कि जब वो उनके घर में आके मुतालबा कर रहे हैं, वो पे नहीं कर रहे, किसी की जॉब चली गई और उनको आसानी से पहले जी आप क्रेडिट में एक दो महीना आप ना लें तो वो अपने, अच्छा एक और चीज़ देखें, बैंक वाले और इंश्योरेंस वाले आपसे जो 3-4-6 पेपर साइन कराएंगे, इतने माइक्रो में लिखे होते हैं, बंदा पढ़े आंखें थक जाती हैं, तंग आके वो साइन कर देता है, फिर वो लेके आते हैं, ये इसके मुताबिक ये जुर्माने आए हो गए।
1: बिल्कुल सही है। अच्छा ज़ुल्क़र्न भाई, आखिरी सवाल है जो ये है कि जिसमें खुलासा भी आ जाए हमारे इस गुफ्तगू की, वो ये कि यानी दौड़ में हम जो इस दौड़ में शामिल हैं कि सब दूसरों के मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, इस दौर में आपको क्या लगता है

ना ये वक्त जो हमें मिल रहा है ये बहुत बड़ा कीमती सरमाया आपको क्या लगता है कि माल कीमती सरमाया है वो भी एक अहम सरमाया है शोहरत ये भी एक अहम सरमाया लेकिन वक्त जो है ना सबसे बड़ा सबसे अहम तरीन सरमाया वक्त है वक्त ही जिंदगी है तो कभी आप सोच रहे हैं कि जब हम बात कर रहे हैं कि दूसरों की तवक्कात पर उतरने के हवाले से दूसरों की तवक्कात को पूरी करने की तो यहाँ ये बात आ जाती है कि हम अपने वक्त को जो हमारी कीमती सरमाया है इसको हम किस चीज़ पर हम इसे सर्व कर रहे हैं क्या अहम चीज़ों पर जो मुस्ताहिक हैं इस बात के तो हम उस पर सर्व कर रहे हैं या ऐसे बेज़रूरी यूं ही हम सर्व कर रहे हैं किसी फजूल बातों पर क्या हमारा बेहतरीन वक्त हमारे वालिदैन को मिल रहा है क्या हमारे बच्चों को हमारी बेहतरीन तवज्जो मिलती है या नहीं या फिर हम अपनी सारी मुस्कुराहटें सारी तवानाई और सारी मोहब्बत बाहर तकसीम करके घर में सिर्फ थकन लेकर आते हैं तो ये आज के माशरे का बड़ा अलमिया है बंदा बाहर निकलकर वो जो एक बड़ा मसरूफ तरीन लाइफ का सामना कर रहा होता है उस पूरे वक्त को अपने पूरे मुस्कुराहटों को अपनी तवानाइयों को वो बाहर सर्व करके उस मेकी लाइफ कहते हैं ना इसे उस मेकी लाइफ को बाहर सर्व करके आ जाते हैं बंदा जब घर लौटता है तो थकन के साथ लौटता है परेशानियों के साथ लौटता है अब वो आकर घर में एक जुमला तक बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता वही बंदा जो दसों दसियों जुमले उसके बॉस ने उससे किए हो वो उसको बर्दाश्त कर लेता है सब कुछ कह लेता है और मुस्कुराहट के साथ काफ़ी ऐसा तहम्मुल का मुजाहरा करता है कि भाई ये तो बड़ा सब्र का पुतला है सब्र का यानी आली मिसाल है ये तो ये लोग ये समझ रहे होते हैं लेकिन वही बंदा जब घर में भड़क उठता है सिर्फ एक जुमले की वजह से हालाँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें पूरा बिलअक्स तसव्वुर का वो कॉन्सेप्ट वो तसव्वुर दिया है हमें वो कॉन्सेप्ट बताया है कि तुम में बेहतरीन वो है जो अपने अहले खाना के लिए बेहतरीन हो तो दफ्तर में खुश अखलाक रहना और घर में आकर बद अखलाक वाला हो जाना ये दरअसल यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें मेयार दिया है इसके बिल्कुल मुकाबिल इसका अक्स है तो इस वजह से हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले घर दिखाया फिर आगे जाके अपने मैदान में आप उतरें यूँ नहीं कि पूरे दुनिया के फातह बनने की कोशिश कर रहे इधर आपके घर में आपके मामलात काफ़ी संगीन हैं तो ये पूरा गलत है इससे हम सही माने में इस्लाम का चर्चा नहीं कर सकेंगे अगर कुछ हो भी हमसे अगर कोशिश भी करें लेकिन जो है ना कहते हैं कि समाज के इसलिए कि इस्लाह अपने घर से आपने शुरू करना है तो वो घर से जब शुरू नहीं करेंगे तो वो इसलिए आखिरी नतीजे तक नहीं पहुंच पाएगा तो अपनी तमाम जज्बात तवानाई को हम कोशिश करें कि हमारा जो बेहतरीन जो जगह है बेहतरीन जो वक्त है वो हम बेहतरीन लोगों पर खर्च करें ठीक है बाज़ औक़ात तो लोग ये इस हद तक पहुंचते हैं कि आप किसी कॉफ़ी मेकर की कॉफ़ी आपको बहुत पसंद आती है ठीक है तो वो जो आपके जायके को समझता है ना आपको बड़ा यानी इसकी अहमियत रहती है कि हाँ ये बंदा जो है ना जब भी मैं जाता हूँ मेरे सलाम का जवाब खूब अच्छे से देता है तो इसी एक जुमले के लिए आप कभी कभार अपने आसपास के जो कॉफ़ी है मक्खा है जो जितने कैफ़े हैं उसको छोड़कर आप उस दूर कैफ़े तक चले जाते हैं कि सिर्फ उससे एक जुमला सुनने के लिए आप उस कैफ़े तक पहुँच जाते हैं या फिर यानी वो जो थोड़ा सा एक बिहेव करता है आपको वो अच्छा लगता है तो उस बात के लिए आप पहुंच जाते हैं दूर के दूर हालांकि आप अपने घर में जब लौटते हैं तो बीवी जो है बच्चे जो हैं जो भी आपके हैं शौहर हैं वो आपको पूरी ज़िंदगी कोशिश कर रहे होते हैं आपको कैसे राज़ी करें आपके पसंद के कुछ ऐसे डिश भी और वो तैयार कर रहे होते हैं लेकिन क्या वो डिज़र्व नहीं करते कि आप उनसे सही से उनको इसकी तारीफ़ करें और एक जुमला दो जुमला सही से कह दें और यानी वो रिस्पेक्ट कर उसके एहतराम का इजहार करें तो बड़ा अजीब एक ज़िंदगी हमारे इसके सामना कर रहे हैं कि लोग वो जो छोटी छोटी बातों को लेकर उसको इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं और जिसको आप जानते नहीं हैं पहचानते नहीं हैं ना करीबी कोई ताल्लुक़ है उस बंदे को आप कुछ ऐसे रिवार्ड दे रहे हैं बड़ी खुशी हो गई यानी उसको आपने खुश कर दिया ये भी अच्छी बात है हाँ गरीब है जानना वाला पहचानने वाला है जो भी है सबको खुश रखना ही ज़रूरी है लेकिन आप जो आपके जाने पहचाने जो सबसे अहम तरीन लोग हैं उन्हें आप नाराज़ करके दूसरों को जो आप

0: जानते भी नहीं है और उनको खुश करने में आप लगे रहते हैं, तो ये तो कोई अकलमंद इंसान का काम नहीं है ना। अकलमंद इंसान का, अकलमंद इंसान क्या करेगा, वो अपनी प्रायोरिटी पूरे अपनी जो अहम तरीन जगह पर, अहम तरीन जाने पहचाने जिनके साथ उनके पूरे उसको अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है उसको उसमें सर्व करेगा। तो और हो रहा है बिल्कुल अक्स। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की भी मिसाल हमने दी। तो सामिन कराम, ये इन चीज़ों का हम ज़रा ख़ास ख्याल रखें। अगर हम यानी एक अजनबी की मामूली तवज्जो हमें खुश कर सकती है, तो ज़रा सोचिए वो शौहर कितना खुश होगा जिसकी बीवी उसकी बात गौर से सुनती हो, वो बीवी कितनी मुतमईन होगी जिसका शौहर उसके एहसासात को समझता हो, वो बच्चा कितना पुरेतमाद होगा जिसका वालिदैन उसकी छोटी छोटी बातों को भी अहमियत देते हैं। अच्छा, इस सिलसिले में एक मिसाल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, इसको हम इंक्लूड करेंगे। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद जुड़े रहिए हमारे साथ।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: आप सुन रहे हैं FM 107,
4: दिल से देसी।
5: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
6: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
5: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में,
6: हर मंडे सुबह 10 बजे से आप जनाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
5: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
6: गाड़ियों के दरमियान सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना रोड पर हर फर्द की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। हमेशा इतनी जगह जरूर छोड़ें कि अगर आगे वाली गाड़ी अचानक रुक जाए तो आपके पास रिएक्ट करने का वक्त हो। याद रखें, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी स्पीड और डिस्टेंस दोनों कंट्रोल में रखें। अक्सर हादसे इसी वजह से होते हैं कि ड्राइवर्स गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला नहीं रखते। आपकी रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग बिहेवियर सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाने में भी मददगार साबित होती है। फास्ट ट्रैफिक और हाईवे पर ये और भी ज्यादा अहम हो जाता है। सडन स्टॉप्स और इमरजेंसीज किसी भी वक्त हो सकती हैं, इसलिए हमेशा महफूज फासला रखना जरूरी है। ड्राइव सेफली, क्योंकि आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी नहीं रोड पर हर शख्स की जिम्मेदारी भी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मुताबिक ट्रैफिक रूल्स को एहतियात से फॉलो करना ही एक अच्छे ड्राइवर की पहचान है। तो अगली दफा जब आप ड्राइव करें तो याद रखिए फासला जरूरी है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में
3: MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में
2: वजारते दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ,
3: सब कुछ मिलेगा यहाँ।
2: ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर। डोंट मिस इट।
4: FM 107 से अब पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक। मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा।

0: शैतान का रास्ता खोल देता है। सामिन इकराम, यह हदीस हमें जिंदगी का एक मुकम्मल उसूल देती है। ताकतवर मोमिन से मुराद सिर्फ जिस्मानी ताकत नहीं बल्कि ईमानी, इरादी और अखलाकी ताकत है। जैसा कि इमाम नवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ये कुव्वत दरअसल दिल की मजबूती, नीयत की पुख्तगी और इरादे की ताकत है। ऐसा मोमिन जो अल्लाह के रास्ते में इस्तेकामत दिखाए, नेकी के कामों में सरगर्म रहे, सब्र करे और आजमाइशों में साबित कदम रहे, यही अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है। मजीद इस हदीस में तीन सुनहरी उसूल हमें दिए गए हैं। احرص على ما ينفعك, हमेशा उन कामों पर तवज्जो दो जो तुम्हारे लिए मुफीद हो, दुनियावी भी और दीनी भी। इस्तईन बिल्लाह, अपनी कामयाबी के लिए हमेशा अल्लाह से मदद तलब करो। वला ताजिज, हिम्मत न हारो, मायूसी मोमिन की शान नहीं। और अगर कभी नाकामियां मुसीबत आए तो दिल में यकीन रखो कि कद्दर अल्लाह वमा शा फअल, अल्लाह ने ऐसा ही चाहा और वही बेहतर जानता है। ऐ अल्लाह, हमें ईमान में मजबूत, इरादे में पुख्ता और अमल में साबित कदम बना। हमें ऐसा मोमिन बना जो नफा पहुंचाने वाला हो, उम्मीद रखने वाला हो और तेरे फैसले पर राजी रहने वाला हो। आमीन या रब्बल आलमीन।
1: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत। सुनिए हदीत टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
2: दोस्तों, मसाजिद और आसपास के घरों के करीब गलत पार्किंग ना सिर्फ ट्रैफिक को रोकने का सबब बनती है बल्कि ये इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे एम्बुलेंस, फायर ट्रक्स और पुलिस कार्स के लिए भी बहुत बड़ी रुकावट है। जब इन व्हीकल्स को जल्दी से गुजरना होता है तो किसी भी हादसे का खतरा लाहक बढ़ जाता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी पार्किंग की आदतों में बेहतरी लाएं और दूसरों के लिए रास्ता खाली रखें। अगर हम थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपनी गाड़ी सही जगह पर पार्क करें तो हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने इलाके के हर शख्स के लिए फायदा मंद साबित हो सकते हैं। इस तरह हम अपनी कम्युनिटी को सेफ, ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल बना सकते हैं। हमारी छोटी सी सोच और मेहनत से ना सिर्फ ट्रैफिक का मसला हल होगा बल्कि हमें अपनी रिलीजियस और सोशल ड्यूटीज को बेहतर तरीके से अदा करने में मदद मिलेगी। वजारत दाखला का कहना है कि हम सब मिलकर इस मसले को हल करने में अपना हिस्सा डालें और एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा बने जहां सबके लिए रास्ता खुला हो और सेफ्टी पहली तरजीह हो। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
3: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
2: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
3: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। कतर बिजनेस 360, जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
2: हर मंडे सुबह 10 बजे से आरजे नाज़िया के साथ ओनली ऑन FM 107।
3: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
4: आप सुन रहे हैं FM 107।
5: दिल से देसी।
0: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिन इकराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं

0: छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है, इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। सामिन किराम, कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर अल्लाह ताला ने सजदा करने वालों की तारीफ फरमाई है। कभी पूरे कायनात के अल्लाह के सामने झुकने का जिक्र फरमाया। जब एक मोमिन ऐसी आयत पढ़ता है तो वो सिर्फ आगे नहीं बढ़ जाता बल्कि खुद भी अपने रब के सामने झुक जाता है। गोया वो कहता है, अल्लाह जिन्होंने तेरे हुक्म पर सजदा किया मैं भी उन्हीं में शामिल होना चाहता हूँ। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने ऐसी सूरत की तिलावत फरमाते जिसमें सजदे की आयत होती, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते और फिर हम भी आपके साथ सजदा करते, यहाँ तक कि कभी जगह इतनी कम होती कि हम में से किसी को अपनी पेशानी रखने की जगह भी नहीं मिलती थी। इस हदीस से मालूम होता है सामिन किराम कि सजदा तिलावत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था और सहाबा किराम भी पूरी मोहब्बत के साथ इस सुन्नत पर अमल करते थे। सजदा तिलावत की फजीलत बयान करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नहायत मौसर हदीस इरशाद फरमाई। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इब्न आदम सजदे की आयत पढ़ता है और सजदा करता है तो शैतान एक तरफ हटकर रोता है और कहता है, हाय मेरी बर्बादी, इब्न आदम को सजदा करने का हुक्म दिया गया, उसने सजदा कर लिया, उसके लिए जन्नत है और मुझे सजदा करने का हुक्म दिया गया मगर मैंने नाफरमानी की, इसलिए मेरे लिए जहन्नम है। सोचिए सामने के राम, हर सजदा हमें अल्लाह के करीब और शैतान से दूर करता है। सामने के राम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे में होता है। फुकहा ने कुरान करीम में सजदे की मारूफ आयात बयान की हैं जिनकी तादाद जमहूर उलमा के नजदीक 14 है। जब कारी इन आयात में से किसी एक आयत की तिलावत करे और उसे सुने तो उसे चाहिए कि वो सजदे तिलावत करे। जहां अल्लाह ताला ने सजदे का जिक्र फरमाया वहां बंदा अपने रब के सामने झुक जाए। गोया इंसान का जाहिर भी इबादत में है और बातिन भी, कि जबान कुरान पढ़ रही होती है, दिल आयत पर गौर कर रहा होता है और जिस्म अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज होता है। सामने के नाम अपने बच्चों को भी सजदा तिलावत की अहमियत बताइए। जब वो देखेंगे कि कुरान की बाज़ आयात पर वालिदैन फौरन अल्लाह के हुजूर सजदा कर देते हैं तो उनके दिलों में भी कुरान की अजमत पैदा होगी। ये बेहतरीन अमली तरबियत है। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम की सही ताज़ीम करने, उसकी हरायत पर अमल करने और उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सामीन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुन्ना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मा सलामा।
1: आप सुन रहे हैं FM 107। FM 107,
2: दिल से देसी।
3: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान और आज का टॉपिक है इंसाफ पसंदी। इंसाफ पसंदी एक ऐसी खूबी है जो किसी भी माशरे की बुनियाद होती है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हर मामले में इंसाफ करें, चाहे वो अपने हक में हो या खिलाफ। अक्सर इंसान अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर फैसले करता है, लेकिन असल ईमानदारी है कि सच और इंसाफ को

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: इस दुनिया में हमें मुख्तलिफ रिश्ते और ताल्लुकात जोड़ते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं, जिनमें से कई अफराद को हम दोस्त भी बना लेते हैं। ये सोहबतें हमारी जिंदगी का एक नुमाया रंग बन जाती हैं। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने कई अस्हाब के वाकियात बयान किए हैं ताकि हम इबरत हासिल करें और राह रास्त पर आ जाएं। आइए तलहा अशरफ जमा के साथ सुनिए प्रोग्राम कससुल कुरान।
2: सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उर्दू रेडियो कतर का बहुत ही अहम प्रोग्राम कससुल कुरान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। तलहा अशरफ जमान की तरफ से कबूल कीजिए सलाम व तहियात। इस प्रोग्राम में हम कुरानी वाकयात को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और उनसे जिंदगी के कीमती असबाक दरियाफ्त करते हैं। आज की किस्त में हम सुनेंगे एक अजीम हुक्मरान की दास्तान, ज़ुल्करनैन की कहानी। ये वाक़िया सूरतुल कहफ की आयत 83-98 में बयान हुआ है। कुरान से एक ऐसे हुक्मरान के तौर पर पेश करता है जिसे अल्लाह ने कुव्वत, हिकमत और इंसाफ अता किया। सामिन किराम, अब सवाल ये है कि

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: जेन जी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दुहा वाले कबीर के साथ। रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
2: दोस्तों, ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 55 के क्लॉज नंबर 3 के तहत गाड़ी चलाते वक्त 10 साल की उम्र से कम के बच्चों को आगे वाली पैसेंजर सीट पे बैठालने की इजाज़त नहीं है। बच्चों को आगे वाली सीट पे बैठालने से आप ड्राइविंग करते वक्त डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। बच्चों को गाड़ी की बैक सीट पे बैठालने से आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत में मदद मिलती है। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है। क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में।
3: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
2: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप दोहा वाले कबीर के साथ एवरी थर्सडे एट 1 PM।
3: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की।
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: FM 107 दिल से देसी।
0: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, हम बात कर रहे हैं वॉक की। जैसे हमने बात की कि वॉक का जो आगाज़ है कैसे किया जाए, तो आज हम जानेंगे कि वॉक को रोज़मर्रा ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा कैसे बनाया जाए। इसमें मुस्तकिल मिजाजी जो है वो बहुत अहम है, और आज हम यही देखेंगे कि किस तरह से हम उस पर अमल कर सकते हैं। बहुत से अफराद चंद दिन वॉक करते हैं और फिर मसरूफियत या फिर लेजीनेस या सुस्ती की वजह से छोड़ देते हैं। कामयाबी का राज सिर्फ और सिर्फ वॉक करना या वॉक शुरू करना नहीं है, बल्कि उसे मुस्तकिल जारी रखना है। सबसे पहले एक हकीकत पसंदाना जो हदफ है वो मुकर्रर कर दीजिए। अगर आप नए हैं यानी अभी शुरू की है वॉक, तो रोज़ाना 20 या 30 मिनट चलने का दबाव ना डालिए। मिसाल के तौर पर पहले हफ्ते में आप 10 मिनट रोज़ाना आप वॉक कीजिए, दूसरे हफ्ते में 15 मिनट वॉक कीजिए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त को ज़्यादा करते चले जाइए। वॉक करने के लिए आरामदेह जूतों का इंतखाब बहुत ज़रूरी है। मुनासिब जूते आपके पैरों, घुटनों और कमर को सहारा देते हैं, और ऐसे कपड़े पहनिए जो जिस्म को आराम दें और वो मौसम के मुताबिक हों। वॉक करते वक्त अपनी जो बॉडी पोस्चर है उसका खास ख्याल रखना है। सर सीधा रखिए, कंधे थोड़े ढीले कीजिए, नज़रें बिल्कुल सामने रखिए, हाथों को कुदरती अंदाज में हरकत दीजिए। इससे वॉक ज़्यादा मौसर और आरामदेह बनती है, और अपने आप को आप रिलैक्स फील करते हैं। वॉक को दिलचस्प बनाने के लिए किसी दोस्त या फैमिली के किसी भी फर्द को अपने साथ शामिल कर लीजिए, और अगर अकेले चल रहे हों तो फिर अपना कोई भी जो आपको प्रोग्राम बहुत पसंद हो वो आप सुनिए, तिलावत या पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं। इस तरह वक्त का एहसास भी कम होता है और दिलचस्पी भी बरकरार रहती है। और अगर मौसम ख़राब हो तो अपनी वॉक जो है वो तर्क ना कीजिए। घर के अंदर चलना, शॉपिंग मॉल में वॉक करना या सीढ़ियाँ इस्तेमाल करना भी जिस्मानी जो एक्टिविटी है उसी में शुमार होता है। वॉक के दौरान अपने जिस्म के इशारों पर तवज्जो दीजिए। अगर चक्कर आ रहे हों, सीने में दर्द हो या सांस लेने में दुश्वारी हो तो फौरन रुक जाइए, और फिर तभी मशवरा जो है वो ज़रूर कीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। इसमें याद रखिए कि रोज़ाना की चंद मिनट की वॉक फ्यूचर में हमें कई मसाइल जो कि सेहत के हवाले से हैं या कई बीमारियाँ हैं उनसे बचा सकती है। मुस्तकिल मिजाजी ही असल कामयाबी है। थोड़ा चलिए लेकिन रोज़ चलिए। और आज जो हमने बात की है तो उसमें अपनी सेहत का ख्याल रखिए और वॉक को अपनी रोज़मर्रा जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: स्कैम अलर्ट। दोस्तों, नए जमाने के नए स्कैम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आज तक आपने डिजिटल स्कैम के बारे में सुना है, लेकिन अब लोग सामने आना शुरू हो गए हैं, यानी कि फिजिकल स्कैम। आपके सामने वो आते हैं, आपसे QR कोड, लिंक या फिर आपसे किसी गवर्नमेंट का एम्प्लॉई बनकर बात करते हैं। ऐसे में आपको होशियार रहने की जरूरत है। आजकल एक नया स्कैम चला है जिसे कहते हैं फेक स्मार्ट यूटिलिटी मीटर स्कैम। रूरल एरियाज और विलेजेस में डिजिटल अवेयरनेस कम होने का फायदा उठाकर स्कैमर्स ने अब एक नया तरीका ढूंढा है, जिसे फेक स्मार्ट यूटिलिटी मीटर स्कैम कहा जाता है। इस फ्रॉड में स्कैमर्स खुद को गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, कभी इलेक्ट्रिसिटी या कभी वाटर डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय या अफसर बताते हैं, और ये लोग आम या भोले भाले लोगों को फंसाते हैं। ये लोग घरों पर अचानक आते हैं और दावा करते हैं कि उनके स्मार्ट मीटर खराब है या उनका पिछला बिल बाकी है। लोगों को डराने के लिए ये स्कैमर तुरंत कनेक्शन काटने की धमकी देते हैं। रूरल एरियाज में लंबा पावर कट किसी के लिए

0: ये भी बड़ी मुसीबत हो सकता है, इसलिए लोग डर जाते हैं। इस डर का फायदा उठाकर स्कैमर्स तुरंत पैसे डिमांड करते हैं। वो आपसे कहेंगे कि मामला अभी खत्म करने के लिए फिजिकल कैश दे दें, या फिर उनके पास मौजूद एक फेक POS मशीन पर आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने को भी आपसे कहते हैं। कार्ड स्वाइप करते ही आपके अकाउंट का सेंसिटिव डेटा लीक हो जाता है और अकाउंट पलक झपकते ही खाली हो जाता है। ये पूरा फ्रॉड बिना किसी ऑफिशियल पेपर या नोटिस के सिर्फ डर और झूठ के दम पर किया जाता है। सरकारी विभाग या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कभी भी इस तरह अचानक आकर तुरंत कैश या ऑन द स्पॉट कार्ड पेमेंट की डिमांड नहीं करते हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी है। हमेशा किसी भी एम्प्लॉय का या ऑफिशियल एम्प्लॉय का आईडी कार्ड जरूर मांगे। इसके अलावा एक और आसान तरीका है इस तरह के स्कैम से बचने का, जो है नो कैश ऑन स्पॉट। सरकारी रूल्स के मुताबिक कोई भी टेक्नीशियन घर आकर कैश या कार्ड पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करता। उसके अलावा जब आपके पास कोई बिल आए या कोई शख्स आपको बिल दे तो उसे ऑनलाइन वेरीफाई करें। कोई भी पेमेंट करने से पहले अपनी ऑफिशियल यूटिलिटी ऐप या वेबसाइट पर बैलेंस चेक करें। उसके अलावा आप हेल्पलाइन पर भी कॉल कर सकते हैं। किसी भी तरह की सोच की जरूरत नहीं है, सीधे इलेक्ट्रिसिटी या वाटर बोर्ड के ऑफिशियल टोल फ्री नंबर पर कॉल कर कंफर्म करें कि क्या किसी डिपार्टमेंट ने ऑफिशियल एम्प्लॉय आपके घर भेजा है या नहीं। इस तरह की होशियारी से आप हमेशा खुद को और अपने फैमिली मेंबर्स को स्कैम होने से बचा सकते हैं। स्कैम अलर्ट।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब। यहाँ मिलेंगे आपको छोटे छोटे अचीवर्स, बड़ी बड़ी कहानियाँ जो इंस्पायर करेंगे आपको और आपके बच्चों को। सो गेट रेडी क्योंकि जूनियर जनाब ला रहा है एक नया अंदाज, एक नया जज्बा और ढेर सारी मस्तियाँ। जूनियर जनाब विद आरजे सफा।
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं जूनियर जनाब सफा के साथ, वो शो जहां हम मिलते हैं छोटे छोटे सुपरस्टार्स से जो अपनी मेहनत, टैलेंट और क्रिएटिविटी से सबको इंस्पायर कर देते हैं भाई। और आज हमारे इस शो में हमारी सुपरस्टार हैं एक छोटी सी पावर हाउस जिनका नाम है जन्नत। तो भाई अगर जन्नत के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैं आपको दूं तो जन्नत को सबसे ज्यादा क्या पसंद है बताऊं? जन्नत को पसंद है रीडिंग एंड राइटिंग। वो हर वक्त बुक्स और नोटबुक्स के साथ ही बिजी रहती हैं भाई, नए नए आइडियाज एक्सप्लोर करती हैं और अपनी कहानियां और पोएम्स भी लिखती हैं। अच्छा और गेस कीजिए, गेस व्हाट, जन्नत सिर्फ बुक्स की ही क्वीन नहीं है, वो एक अमेजिंग सी आर्टिस्ट भी है भाई, यानी कि मल्टी टैलेंटेड चल रही है। वो कई आर्ट कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा ले चुकी हैं और अपनी क्रिएटिविटी को सबके आगे एक्सप्रेस करने से बिल्कुल भी नहीं घबराती। और हाँ भाई, इनकी डिबेट्स भी लाजवाब हैं। जन्नत एक स्मार्ट डिबेटर भी हैं जो अपने पॉइंट्स क्लियरली और कॉन्फिडेंटली अपने स्टाइल में सबके सामने प्रेजेंट करती हैं। स्कूल की डिबेट्स हों या कॉम्पिटिशन्स, वो हमेशा अपने आइडियाज को जबरदस्त तरीके से शेयर करती हैं। तो भाई दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि हम जाने वाले हैं एक शॉर्ट से ट्रिप पर जो कि होगा जन्नत के वर्ल्ड में, जहां इमेजिनेशन, आर्ट और कॉन्फिडेंस मिलके इंस्पायरिंग स्टोरीज बनाते हैं। और फिर हम आपको सुनाएंगे एक छोटी सी स्टोरी भी, लेकिन जन्नत की स्टोरी जन्नत से। तो भाई अस्सलाम वालेकुम जन्नत, कैसी हैं आप?
3: वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
2: मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जन्नत की आवाज़ सुन के एनर्जी पता चल रही है, तो ये तो मैं पूछूंगी नहीं कि जन्नत नर्वस तो नहीं हो रही?
3: नहीं
2: नहीं हो रही। अच्छा नहीं हो रही। अच्छा जन्नत बहुत क्यूट सी है, मैं भी यही बोल रही थी, मैंने कहा माशाल्लाह गर्ल्स जो होती है ना वो डॉल्स की तरह होती है, जन्नत बिल्कुल डॉल डॉल जैसी है। अच्छा ये बताएं जन्नत कि आपको जो है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको सबसे, वैसे तो मैंने बता दिया कि आपको इंटरेस्ट है बुक्स में और आर्ट में, डिबेट्स में, लेकिन इन सब चीजों में से सबसे ज्यादा आपको कौन सी वाली पसंद है?
3: सबसे ज्यादा लाइक ड्राइंग में मेरा टैलेंट है, हॉबी है, लेकिन मुझे डिबेट्स करना भी अच्छा लगता है बिकॉज इस वर्ल्ड में सिर्फ स्पीकिंग स्किल्स मैटर करते हैं एंड ओवरऑल ड्राइंग में भी मेरा बहुत ज्यादा, मैंने कॉम्पिटिशन्स को विन किया है, सोशल मीडिया पे भी विन किया है एंड ओवरऑल एवरीथिंग इज गुड, मतलब मुझे सब अच्छा लगता है।
2: सही। और हम हिलेंगे नहीं। जन्नत रेडी रेडी चेयर पे झूल रही हैं। अच्छा ये बताएं जन्नत, अगर मैं आपसे कहूँ कि, अगर पूछूं कि भाई जन्नत आपको याद पड़ता है, आपने, आपको रीडिंग का शौक कौन सी एज से डेवलप हुआ था?

0: करनी आ गई थी.
1: माशाल्लाह. ओके.
0: फाइव इयर्स तक मुझे पढ़ना नहीं आता था, लेकिन जैसे एबीसी और कैट डॉग उसके स्पेलिंग आ गए थे. लेकिन जैसे रीडिंग का शौक होता है, तब मेरी जो ओल्डर सिस्टर्स थे, ओल्डर सिबलिंग्स थे, उनके पास स्टोरी बुक्स होती थी एंड मैं अपनी दादों से उर्दू में स्टोरी सुनती थी.
2: Oh, wow, nice.
0: उनको मतलब सुन के मुझे मजा आता था और मैं रात को सोते वक्त भी स्टोरीज सुनती थी. देन मुझे रीडिंग का शौक आया. मैंने स्कूल में भी काफी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया. उसमें स्कूल में भी सबसे पहले जब रीडिंग करी होती थी, टीचर कहती थी कि आप स्टार्ट करो रीडिंग करना. और रीडिंग मेरी हॉबी है.
2: ओह, यू लाइक रीडिंग. नाइस नाइस. अच्छा ये बताएं कि जैसे आप बता रही हैं कि आपको रीडिंग का शौक है, तो कभी अपनी पोएम्स और अपनी स्टोरीज लिखी हैं खुद कभी?
0: जी, जब मैं छोटी थी मैं स्टोरीज लिखती रहती थी. कुछ भी, मतलब कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था, फिर भी मैं लिखती थी
2: अपने मजे से. अच्छा ये बताएं, ये जो स्टोरीज और ये जो पोएम्स हैं, ये दोस्तों वगैरह को सुनाती थी? अच्छा, उनका क्या रिस्पॉन्स आता था?
0: उनका रिस्पॉन्स आता था कि अच्छी स्टोरीज लिखी हैं. कुछ लोग जो जेलस होते थे वो बोलते थे कि नहीं, अच्छी नहीं लिखी, मत करो कंटिन्यू. जो मेरे रियल फ्रेंड्स थे वो तो बोलते थे कि बहुत अच्छी आपकी सारी स्टोरीज है, कीप गोइंग.
2: अच्छा मैं आपसे ये पूछना भूल गई शुरू में कि ये बताएं मुझे, आप हैं कितने साल की भाई?
0: 10
2: इयर्स की. माशाल्लाह. अरे वाह भाई. तो ये बताएं कि ज्यादा दोस्त जो हैं वो वाले हैं जिनका आपको पता है कि ये अच्छे और सच्चे दोस्त हैं, या ज्यादा दोस्त वो वाले हैं जिनका आपको पता है कि अच्छा ये तो मुझसे जलसी रखते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन क्या करूं क्योंकि क्लास फेलोज हैं तो बात करना ही पड़ता है. कौन से वाले दोस्त हैं आपके ज्यादा?
0: मेरे ज्यादातर अच्छे और सच्चे दोस्त ही हैं, और जो बुरे हैं मैं उनको अपना दोस्त कंसीडर नहीं करती.
2: ओह गुड, नाइस. अच्छा भाई, इनको पता है, इनको अपने, ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट चल रही है इस मामले में. यू आर क्लियर अबाउट इट. वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा ये बताएं कि आप जैसे स्टोरीज या पोएम्स लिखती हैं तो वो किस जेनरे की होती हैं? मतलब आप कहेंगे ना कि भाई हॉरर होती हैं, सस्पेंस होती हैं, किस टाइप की होती हैं?
0: ज्यादातर मैं हॉरर लिखती हूँ. मुझे हॉरर स्टोरीज लिखने का भी बहुत मजा आता है.
2: डर नहीं लगता हॉरर स्टोरी से?
0: लगता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन लिखने में ज्यादा.
2: अच्छा चले. अच्छा ये तो एक अच्छी बात है, मजा भी आता है, अच्छी भी लगती है, ठीक है. अच्छा ये बताएं कि आपको आर्ट में सबसे ज्यादा कौन सी चीज यूज करना पसंद है? जैसे एक होता है ना कलर पेंसिल्स, पेंट्स या क्ले या कुछ एनीथिंग, कोई स्पेसिफिक मटेरियल हो जो आपको यूज करना अपने आर्ट में बहुत ज्यादा पसंद है?
0: मुझे वैसे ज्यादातर कलरिंग ज्यादा अच्छी लगती है, बट आई एम बेटर इन
2: स्केचिंग. नाइस.
0: मेरी स्केचिंग स्किल्स ज्यादा अच्छे हैं पेंटिंग से. पेंटिंग मुझे आती नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं तो सही हो जाता है, अच्छा होता है, फिर
2: अच्छी होती है. तो कलर पेंसिल से. अच्छा पेंटिंग, हाँ ठीक है. ओके सॉरी पेंटिंग ठीक है. ओके अच्छा ये बताएं कि किस टाइप की स्केचिंग या किस टाइप की पेंटिंग, कुछ लोग कहते हैं ना फ्लावर्स बनाना पसंद है, सीनरीज बनाना पसंद है, या कोई इमेजेस बनाना पसंद है, कार्टून्स बनाना पसंद है, तो आपको क्या पसंद है?
0: मुझे सीनरीज बनाना ज्यादा अच्छा लगता है एंड कार्टून्स भी मैं बनाती हूँ.
2: अच्छा मेरे लिए क्या बनाएंगी फिर? बनाएंगी तो

0: लाइन टाइप की बीच की जो है ना वैसी वाली सीनरी बना कर देंगी मुझे पक्का
1: या
0: चलिए मैं देखें रेडियो पे प्रॉमिस कर रही हैं करी हूँ ओके अच्छा भाई ये बताएं कि आपका अभी तक की जो फेवरेट कार्टून तो नहीं आप कह रही हैं आप सीनरीज बनाती हैं तो अभी तक की कौन सी ऐसी आर्ट की आपकी क्रिएशन है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है
1: माउंटेन वैली स्काई अच्छा मौसम होता है वेदर
0: सैंड ड्यून्स
1: या
0: तो मैं सही बोल रही थी हाँ वो सी लाइन वाली ना सैंड ड्यून्स वाली मुझे गिफ्ट करना फिर ठीक है वो तो अच्छी से बना लेंगी ना फिर मैं अपने घर में फ्रेम करवा के लगवाऊंगी ठीक है चलो भाई ओके भाई देखिए हम फ्री फंड में काम कराते हैं इसी के साथ लेते हैं एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक
2: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब यहाँ मिलेंगे आपको छोटे छोटे अचीवर्स बड़ी बड़ी कहानियाँ जो इंस्पायर करेंगे आपको और आपके बच्चों को सो गेट रेडी क्योंकि जूनियर जनाब ला रहा है एक नया अंदाज एक नया जज्बा और ढेर सारी मस्तियाँ जूनियर जनाब विद आरजे सफा
0: अच्छा ये बताएं कि आर्ट बनाते वक्त आपको आइडियाज कैसे मिलते हैं
1: आइडियाज ज्यादातर इंटरनेट का यूज करके मिलते हैं बट अगर आप खुद से कुछ ड्रॉ करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं जैसे अगर आपके आंखों के सामने कोई आपको चीज बहुत अच्छी लगी है तो उसको ड्राइंग में कन्वर्ट करना भी बहुत आसान होता है
0: अच्छा ठीक है अच्छा ये दिस इज आपने जो बात बोली ना आई रियली एडमायर इट कि इंटरनेट की दुनिया ऐसी है द वे यू यूज इट वो आपको वैसा ही रिवर्ट देती है यू यूज इट फॉर क्रिएटिविटी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ये सारे बच्चों के लिए ना एक बड़ी अच्छी बात है सीखने के लिए अच्छा ये बताएं कि आप अपने आर्ट कॉम्पिटिशन्स के लिए कैसे प्रिपेयर करती हैं अच्छा ये भी होता है ना कि स्टडीज भी साथ साथ चल रही हैं तो कुछ और एक्टिविटीज भी साथ साथ चल रही हैं तो ये स्पेसिफिकली उसके अंदर मैनेज करना कैसे मैनेज करती हैं मैं
1: स्टडीज तब जब मेरा लेटेस्ट कॉम्पिटिशन हुआ था तब मेरी समर वेकेशन थी एंड मैंने ड्राइंग की प्रिपेयरमेंट बार बार कर रही थी अगर अच्छा भी बन गया था उसको और अच्छा बनाने में कन्वर्ट कर रही थी एंड माशाल्लाह से मेरा फर्स्ट प्राइज आया था
0: वाह नाइस ओके गुड गुड गुड गुड अच्छा ये बताएं सोचें सिर्फ इमेजिन करें क्योंकि आपको पेंटिंग पसंद है चलें भाई आपके हाथ में हमने एक पेंट ब्रश दे दिया ठीक है तो ये बताएं कि उस पेंट ब्रश से आप क्या चीज क्रिएट करेंगी
1: उस पेंट ब्रश से
0: हाँ मतलब वो एक मैजिक पेंट ब्रश है जिससे आप कुछ भी बना सकती हैं अपनी पसंद का
1: मैं उस पेंट ब्रश से अपने लिए कुछ स्वीट्स ड्रा करूंगी
0: लो जी वाह भाई घूम फिर कर हम आ गए स्वीट्स पर अच्छा ठीक है और क्या ड्रा करेंगी
1: एंड मैं कोई अच्छी चीज ड्रा करूंगी लाइक स्टोरी बुक्स एंड कलर्स पेंसिल
0: लो भाई हम सब कुछ अपने लिए करेंगे हम दूसरों के लिए झूठी बोल देती मैं आपके लिए भी स्वीट ड्रॉ कर लूंगी आपको भी थोड़ी सी दे दूंगी नहीं मैं अपने लिए करूंगी
1: आपके लिए भी आपने तो ब्रश दिया
0: चलो भाई मैं बाद में याद आई इतना जताने के बाद चलें कोई बात नहीं खैर है मैं आपसे शेयर कर लूंगी इट्स ओके जबरदस्ती शेयर कर लूंगी अच्छा ये बताएं कि आपने आपको कब अंदाजा हुआ दैट यू आर गुड इन डिबेटिंग एक होता है ना टैलेंट होता है या शुरू से करती थी डिबेटिंग
1: डिबेटिंग तो मैंने तभी स्टार्ट की थी व्हेन आई वाज इन क्लास 3 पहले मैं रीडिंग करती थी मेरा फर्स्ट कंपटीशन क्लास 4 में हुआ था तब मेरी टीचर ने मुझे बोला था कि आप डिबेट कर सकती हैं रीडिंग कर सकती हैं देन उन्होंने मुझे कंपटीशन में दिया कंपटीशन में गई थी मैं तो मेरा टॉपिक था मोबाइल फोन आपके लिए अच्छे हैं या नहीं उसमें मैंने किया था डिबेट एंड मेरे थर्ड

0: ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं
1: एक्सेसिव यूज, सही,
0: तो उसको थोड़ा सा यूज करना चाहिए और जरूरत के लिए यूज करना चाहिए. जैसे इफ यू वांट टू स्टडी और आपका मैसेज आया है कोई ग्रुप में, आपने स्टडीज से पढ़ना है, आपको कोई चीज नहीं आ रही, तो आप लोग वो इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं. तो उससे पूरा आप इंटरनेट को, इस मोबाइल को इस चीज के लिए भी यूज कर सकते हैं. मोबाइल सिर्फ देखने के लिए, गेम्स के लिए, इन चीजों के लिए नहीं होता. मोबाइल इज नॉट अ बैड थिंग.
1: वाइजली यूज इट वाइजली, ये बात आपने बिल्कुल सही कही. अच्छा, एक रिसर्च ये कहती है कि पर्सनल यूज के लिए भी ना मोबाइल, खासतौर पर बच्चों के लिए कहा जाता है कि मतलब आप एंटरटेनमेंट, फॉर एंटरटेनमेंट यूजेज मैक्सिमम 2 आवर्स से ऊपर नहीं करना चाहिए. अगर आप कर भी रहे हैं तो आपको ब्रेक्स लेनी चाहिए और आपको अपने आप को स्केड्यूल करना चाहिए कि जब आप मोबाइल यूज करें. ठीक है, वेरी गुड. अच्छा भाई, ये बताएं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि डिबेट करते वक्त, क्योंकि ये मेरे साथ बचपन में होता था, मैं जब डिबेट्स करती थी ना, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा फोबिया था सबके सामने, जबकि आई वॉज अ वेरी फ्रीक्वेंट स्पीकर, लेकिन एवरी टाइम आई यूज टू गेट स्केयर्ड द मोमेंट वो स्टेज के ऊपर से कर्टन यूं करके हिलता है ना फिल्मों में दिखाते हैं यूं करके, और फिर जब मैं ऑडियंस देखती थी तो आई यूज टू पैनिक. आपके लिए सबसे टफ चीज क्या लगती है आपको जब आप डिबेट के लिए जाती हैं?
0: जब भी मैं डिबेट के लिए जाती हूँ, मुझे हेटर्स से बहुत मतलब होता है कि कोई मेरे पसंद आएगा लोगों को, मेरा जमीन लोगों को अच्छा लगेगा. कईयों को बहुत पसंद आता है, कई लोग हेट करते हैं, कईयों को नहीं पसंद आता. उस चीज का मुझे बस डर लगता है कि जो मैं चीज करने जा रही हूँ उस लोगों को वो चीज पसंद आएगी या नहीं आएगी.

0: वो कहते हैं आप जो ना लोगों से डर जाते हो, पीपल प्लीजर बन जाते हो. ऑनेस्टली जस्ट एन एडवाइस, बी योरसेल्फ. जो आपको चीज अच्छी लगती है ना, इफ यू नो इट कॉन्ट्रीब्यूट इन अ पॉजिटिव वे, वो आप करो. भूल जाओ एवरी, देयर विल ऑलवेज बी समबडी हु थिंक्स अबाउट यू एज अ विलन. तो भूल जाओ वो जो लोग हैं ना जो आपको कहते हैं कि देयर यू आर नॉट डूइंग गुड इनफ, तो उनको भूल जाओ. जो अच्छा अच्छा ना कमेंट, वो अपनी जेब में रख लिया करो, ठीक है. अच्छा ये बताएं कि खासतौर पर अगर डिबेट्स के बारे में बात की जाए, तो डिबेट्स के लिए कैसे प्रिपेयर करती हैं?
1: डिबेट्स के लिए मेरी टीचर्स, मेरी मदर भी पहले डिबेट्स करती थी बहुत ज्यादा.
0: नाइस, अम्मी की हेल्प मिलती है माशाल्लाह से. ओके,
1: उन्होंने कॉलेज में भी डिबेट्स किए थे, तो वो मुझे ज्यादातर सिखाती हैं.
0: गुड गुड, वेरी गुड. हाँ तो ये बात सही है ना, जो हम लोग कहते हैं बच्चों का पहला स्कूल उनके पेरेंट्स होते हैं, ठीक है. अच्छा भाई ये बताएं, कब लगता है कि आपने डिबेट में सबसे बेस्ट पॉइंट्स दिए थे? कौन सी वाली डिबेट थी आपको याद है, कोई ऐसी डिबेट जब आपने आपने कहा ये तो मेरी बेस्ट वाली डिबेट थी, इसका टॉपिक मेरा बेस्ट वाला था?
1: मेरी एक दफा डिबेट हुई थी when I was in third class, and मुझे पता लग गया था कि मैंने ही जीतना है. तब रिजल्ट अनाउंस भी नहीं हुए थे, मैंने सही किया था, सबसे ज्यादा बेटर मेरा था. मुझे वो पता लग गया था कि मैंने ही जीतना है और मैं ही जीत गई थी. बच्चों के हिसाब, बच्चों का इतना अच्छा नहीं था, मुझे ये था कि मेरा टॉपिक सबसे अच्छा.
0: अच्छा वो टॉपिक याद है, क्या टॉपिक था उसका?
1: टॉपिक था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताना था जस्ट.
0: सही, ठीक है, गुड. सो यू गेव गुड पॉइंट्स एंड यू डिलीवर्ड इट वेरी नाइस. अच्छा डिबेट्स में ये होता है कि इट्स नॉट जस्ट द पॉइंट्स व्हिच यू आर गिविंग, वो एक आपका अपना स्टाइल भी होता है ना डिबेट करने का. तो योर स्टाइल वाज इंप्रेसिव, योर प्रेजेंटेशन वाज गुड. अच्छा ठीक है. अच्छा अगर मैं आपसे कहूँ कि डिबेट करते हुए आपके पास कोई एक सुपर पावर होती है जो आप कहते हैं कि मेरे पास ये चीज़ है तो ये मैं अप्लाई करूँ, तो वो क्या चीज़ होती?
1: वो होती कि मैं कभी भी अटकू ना, भूलू ना बीच में. कभी कभार जैसे आप लोग अगर बोलते बोलते एक वर्ड भूल गए होते हैं तो मैं ना भूलू उसको, अटकू ना बीच में. अच्छा ना लो,
0: ये एक चीज है, इसकी एक ट्रिक होती है. मेरी टीचर हमेशा मुझसे कहती थी उसको याद नहीं करो, उसको समझो. मेक इट, बिल्ड इट लाइक अ स्टोरी. इफ यू बिल्ड इट लाइक अ स्टोरी, यू आर नॉट गोइंग टू, यू कैन एड वर्ड्स बाय योरसेल्फ. अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए ना उस चीज़ का, तो आप वर्ड्स अपने पास से उसके अंदर एड अप कर सकते हो और आप अपने पास से बोल सकते हो. तो कोशिश किया करें कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह यू विल गेट बेटर एट इट. व्हेन ऑब्वियसली आप जब बड़े होते जाते हैं आपको एक्सपीरियंस होता जाता है, तो यू विल इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोप अप विद इट. अच्छा ये बताएं कि चीज़ों के लिए अपने आपको खुद मतलब इतना कुछ करती हैं, आर्टिस्ट हैं, कहानियाँ लिखती हैं, ये करती हैं, डिबेट्स करती हैं, तो अपने आपको मोटिवेट कैसे करती हैं सब चीज़ों के लिए?
1: अपने आप को मोटिवेट तो बस इसी दफा बारे में करना होता है कि आई हैव टू विन, आई हैव टू डू इट. अगर आप लोग अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे, जस्ट बी योरसेल्फ. जो आपको करना है वो आप एक ही दिन के लिए कर, कल क्योंकि कभी भी नहीं आता. अगर आप लोग एक चीज़ कल पर डालते रहेंगे तो कल कभी भी नहीं आएगा और आप लोगों का वो काम कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा. जो करना है आज ही करें, ख़त्म करें आज करके.
0: वो जो कल जिसके पीछे हम भाग रहे होते हैं वो प्रेजेंट होता है एक्चुअली. वो एवरी सेकेंड इज पासिंग बाय एंड इट टर्न्स इनटू प्रेजेंट. वेरी गुड. कल करे सो आज, आज करे सो अभी, अभी करे सो इसी वक्त.

0: फेवरेट वाली हॉबी क्या होती है अपने फ्री टाइम में, जब आप फ्री होती हैं?
1: अपने फ्री टाइम में आई लाइक ड्राइंग एंड मतलब अगर मेरा कोई कंपटीशन है स्पीच का, जैसे अभी मेरा एक कंपटीशन है डायलॉग बोलने का, उसकी मुझे प्रिपेयरमेंट मैं कर रही थी जैसे ही मैं फ्री थी. मैं फ्री टाइम निकालना पड़ता है, फ्री आप कभी भी नहीं होते लेकिन आपको टाइम निकालना पड़ता है.
0: बच्चे ने बात बोली है, सुन ले सब बड़ों के लिए भी, फिर से एक दफा रिपीट करें. फ्री
1: फ्री आप लोग कभी भी नहीं होते, आपको टाइम निकालना पड़ता
0: है. ये बात प्रायोरिटी रखनी पड़ती है अपनी. आई रियली लाइक दैट, माशाल्लाह वेरी गुड. हाँ जी, फिर आगे.
1: फिर मैं जैसे मैं फ्री होती हूँ, अगर मैं फ्री नहीं भी होती फिर भी मैं ड्राइंग करती हूँ, मैं स्पीचेस के लिए लर्न करती हूँ. मेरे जो भी पार्टनर्स हैं मैं उनके साथ कांटेक्ट में रहती हूँ, उनसे मतलब अच्छे तरीके से बात शांत करके अच्छे से प्रिपेयरमेंट करते हैं.

0: को यूटिलाइज करना सीखो, यूटिलाइज करना सीखो. चलो मैं ये, मैं मुझे पापा से वही चीज नजर आ रही है जो अब्बा ने कही थी, भी अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज करना सीखो.
1: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है, और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब. यहाँ मिलेंगे आपको छोटे छोटे अचीवर्स, बड़ी बड़ी कहानियाँ जो इंस्पायर करेंगे आपको और आपके बच्चों को. सो गेट रेडी, क्योंकि जूनियर जनाब ला रहा है एक नया अंदाज, एक नया जज्बा और ढेर सारी मस्तियाँ. जूनियर जनाब विद आरजे सफा.
0: इतने बिजी स्केड्यूल में ये बताएं, इतनी क्रिएटिव होने का टाइम कहाँ से निकलता है भाई? ये रीडिंग, ये राइटिंग, सब पूरा दिन कुछ ना कुछ पढ़ाई वगैरह चलती रहती, फिर भी टाइम निकाल लेती हैं कैसे?
2: जब मेरा फ्री टाइम होता है तब मैं टाइम निकाल, जैसे स्टडीज को मैं, जैसे सबसे पहले स्कूल से आगे, कल की बात है, कल मैंने सबसे पहले स्कूल से आके अपना एक्टिविटी की थी, अपना चार्ट बनाया था. देन उसके बाद मैंने अपनी स्पीच लिखी थी पूरी, उसको प्रिपेयर किया था. उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा वर्क किया था, जैसे जो जिस काम की हमें जरूरत नहीं है, जैसे टेस्ट है ट्यूसडे को, आज मंडे है, तो उसकी नॉट इम्पोर्टेंट तैयारी आज ही करनी है, जो चीज कल है उस चीज की तैयारी करनी है.
0: क्या अगर कुछ रह भी जाता है तो फिर भी एक आपके पास डेडलाइन है कि अच्छा कल तक का टाइम है. ठीक ठीक ठीक ठीक. अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी क्रिएटिविटी कब सबसे ज्यादा पीक पर होती है? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अब जैसे मैं हूँ फॉर एग्जांपल, मैं बच्चा नहीं हूँ लेकिन मैं बड़ा हूँ फॉर एग्जांपल, कि मैं कहती हूँ भाई मेरा दिमाग ना तब काम करना शुरू करता है मगरिब के बाद या रात के टाइम, मुझे चीज़ें याद आती हैं कि आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू, आई डू बेटर एट इवनिंग टाइमिंग्स. कुछ लोग होते हैं वो मॉर्निंग लोग होते हैं, तो आपको क्या लगता है आपकी क्रिएटिविटी सबसे ज्यादा हाई कब होती है?
2: मेरी क्रिएटिविटी सबसे ज्यादा हाई तब होती है जब कोई मेरे साथ हो, मुझे मोटिवेट कर रहा हो.
0: नाइस. अम्मी बैठी होती होंगी. हाँ, ये बच्चों का होता है.
2: जब मैं काम कर रही होती हैं तब मेरे से इतना नहीं हो पाता, बिकॉज मुझे कोई भी मोटिवेट नहीं कर रहा होता, कोई पता नहीं रहा होता कि क्या करना है आपने.
0: अच्छा, एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है हमें भाई, साथ बैठा हो कोई ना कोई, बात करने के लिए, साथ देने के लिए.
2: मोस्टली लाइक जब मेरे ब्रदर्स सो जाते हैं, बिकॉज उन्होंने मामा को लिया होता है,
0: वो
2: जी बहुत हमेशा तंग करते हैं वो बहुत. तो जब वो सो जाते हैं तब मेरी क्रिएटिविटी सबसे ज्यादा.
0: सही. फिर मम्मा की अटेंशन आपके पास आती है तो फिर आपकी क्रिएटिविटी जो ना उजागर हो जाती है. मम्मा मम्मा भाई सुन ले भाई, टाइम ज्यादा दे दिया करें ने, और इनकी क्रिएटिविटी की बैटरी जो है ना वो आप हैं. चलें भाई, वेरी गुड. अच्छा ये बताइएगा कि अगर आपको सिर्फ एक दिन दिया जाए, ठीक है, और आपको वो काम करने को या वो चीज़ करने को मिले जो आपकी फेवरेट हो, तो वो क्या होगी?
2: वो चीज़ होगी मोस्टली लाइक स्पीचेस. ड्राइंग्स बनाने में मुझे टाइम लगता है. हर चीज़ एक ही दिन में मेरी एक ड्राइंग कंप्लीट नहीं हो पाती. स्पीच मैं याद करती रहती हूँ, रिकॉल करते रहते हैं उसको, तो वो एक दिन में हो जाएगी इजिली, ये पता होता है कि वो हो जाएगी. ड्राइंग का मुझे नहीं पता होता कि वो होगी या नहीं होगी. कभी कभी अगर गलत बन जाती है तो गुस्सा आ जाता है, उसको रेस करना पड़ता है, मूड खराब हो जाता है.
0: ओहो, ये एक अच्छा, मैंने एक बड़ी अच्छी बात सुनी हुई और सीखी भी थी खुद. मुझे खुद ड्राइंग का बड़ा शौक है, मैं टेढ़ी मेरी ड्राइंग्स बना लेती हूँ, काम चलाने वाली, नॉट सो गुड, लेकिन अपने आप को खुश रखने के लिए. तो एन आर्टिस्ट इज नेवर रॉन्ग. An artist is never wrong. Artist का मामला ये होता है कि अगर वो टेढ़ी मेढ़ी लकीरें भी बना लेना तो भी उनको वो सही कर सकता है. तो भाई गुस्से में नहीं आना भाई ये काम करते हुए, भाई ये तो बड़ी गलत बात हो जाएगी ना. और जैसे बच्चे गेम खेलते हुए बोर्ड उलट देते हैं ना, जो मैं नहीं कर रहा, ये वाला मामला होता है कभी आपके साथ?
2: मेरे साथ तो नहीं होता, मेरे भाई के साथ होता है.
0: अच्छा, बॉयज के साथ होता है, बॉयज को एंगर इश्यूज होते हैं, गर्ल्स जो है ना बेचारी फिर भी साबिर होती हैं. अच्छा ये बताएं कि बड़े होकर क्या बनने का शौक है?
2: मुझे बड़े होकर आपकी तरह बनना है.
0: मेरी तरह है ये क्या हुआ? अच्छा मेरी तरह टॉकेटिव बनना है, आज बनने का शौक है. चलिए भाई, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, देर इज टाइम एंड लर्न. और माशाल्लाह आपकी तो नॉलेज अभी से ही माशाल्लाह इतनी ज्यादा है, तो टिल द टाइम याद रखें, बी अ नॉलेजेबल पर्सन एंड यू विल रीच वेर यू वांट टू रीच. अच्छा ये बताएं कि भाई सबसे ज्यादा एनिमल कौन सा आपको अच्छा लगता है?
2: कैट्स डॉग्स जो क्यूट होते हैं मुझे बस वो ज्यादा अच्छे लगते हैं, जो हार्मफुल नहीं होते ज्यादा.
0: मेरे पास घर में 8 cats

0: से? 8 cats.
1: 8 cats. Yes. I have Persian 8 cats. तो फिर हम मिलेंगे ना, तो फिर मैं आपको अपनी प्यारी प्यारी कैट्स से मिलवाऊंगी. ठीक है. अच्छा, अक्सर औकात मेरे लोग मेरे घर नहीं आते, डरते हैं. पीपल आर स्केर्ड ऑफ कैट्स. कैन यू इमेजिन दैट?
2: या सम
1: पीपल आर स्केर्ड. अच्छा, चलें ये बताएं कि कार्टून्स वगैरह देखती हैं शौक से, तो आपका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर कौन सा है या सुपर हीरो कौन सा है?
2: सुपर हीरो मुझे सुपर हल्क ज्यादा अच्छा लगता है. मेरे ब्रदर्स को भी वही अच्छा लगता है, वो हर वक्त टीवी पर लगा होता है तो देख ले.
1: अच्छा, ब्रदर्स भाई कोई और गुंजाइश ही नहीं देते कि कुछ और देख ले हम. तो जो देख रहे हैं वही उसी में से पसंद है. अच्छा, ये बताएं कि आप जब अपने फ्रेंड्स के साथ होती हैं, एक तो आपका अपना पर्सनल टाइम है ना, जब अपने फ्रेंड्स के साथ होती हैं, जो अच्छे अच्छे वाले फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ आपको कौन सी एक्टिविटीज करने में मजा आता है?
2: मुझे फ्रेंड्स के साथ ड्राइंग करने में ज्यादा मजा आता है, लेकिन मोस्टली जब भी हम लोग ड्राइंग करने के लिए किसी प्रोजेक्ट पे बैठते हैं, हम बातें ही करते रहते हैं, खेलते ही रहते हैं, टाइम नहीं मिलता करने का.
1: अच्छा, फिर ये भी एक है, but it's fun, right?
2: Yeah.
1: It's fun. अच्छा, हमारा टाइम थोड़ा सा खत्म होने वाला है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जाने से पहले आप मुझे बताएं अ पीस ऑफ एडवाइस विच यू वुड वॉन्ट टू गिव टू ऑल द किड्स हू आर लिसनिंग टू यू.
2: द एडवाइस इज कि आप लोग कभी भी अपना टाइम वेस्ट ना करें. टाइम जो आपके पास है, आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि मेरी ये हॉबी नहीं है, ये मुझसे नहीं होगा. आप लोगों से सब कुछ हो सकता है. एवरीथिंग इज पॉसिबल.
1: थिंग्स माइट बी डिफिकल्ट एट फर्स्ट. एवरीबडी इज इन अ लर्निंग प्रोसेस. थिंग्स माइट बी अ बिट डिफिकल्ट, लेकिन इफ समबडी कैन डू इट, वी कैन ऑल्सो ट्राई इट. एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए, है ना? डरना तो नहीं चाहिए. अच्छा, ये बताएं, खाने पीने में अम्मी को तंग करती हैं?
2: नहीं.
1: पक्का? पूछो अम्मा से, कहाँ है अम्मा? पूछूंगी मैं भी ऑफिस जाकर. ठीक है भाई, फेवरेट चीज क्या है खाने में आपकी?
2: फेवरेट चीज मुझे ज्यादातर दाल चावल ज्यादा.
1: अरे भाई, ये कौन सा बच्चा इसको दाल चावल पसंद है? अक्सर होगा तो मैं बच्चों से सुनती हूँ बिरयानी पसंद है.
2: बिरयानी भी.
1: बिरयानी मैंने याद दिलाई, मैंने तो दाल चावल. मैं तो बहुत मासूम सी बच्ची हूँ, मैं कहाँ अम्मी को तंग करूँ.
2: मैक्रोनी पास्ता.
1: ओके. अच्छा, मैं अगर आपसे कहूँ कि आपकी मम्मा खाने में सबसे ज्यादा अच्छी चीज कौन सी बनाती है जो आपको अच्छी लगती है?
2: मेरी मामा खाने में सब अच्छा बना लेती हैं, जो भी वो बनाती हैं वो बहुत अच्छा होता है.
1: ओए होए, अरे भाई ये तो बात कर दी मम्मा के लिए. अच्छा, अपने पेरेंट्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी जब आपको सुने तो? समथिंग अब फॉर देम.
2: मेरे पेरेंट्स सबसे बेस्ट हैं. और सब बच्चों के पेरेंट्स ही बेस्ट होते हैं. मेरे पेरेंट्स ने ही मुझे इतना ज्यादा मोटिवेट किया कि आज मैं यहाँ पर आ पाई
1: हूँ. ओहो, अच्छा, अम्मी अब्बू में सबसे ज्यादा कौन जो ना वो है आपको, आप कहेंगे आई लव देम द मोस्ट, मम्मा या पापा?
2: दोनों.
1: नहीं नहीं नहीं भाई, हम दो की चॉइस नहीं दे रहे भाई. नहीं नहीं भाई, ये नहीं हो रहा भाई. एक कोई एक बताना पड़ेगा
2: मुझे. हर टाइम में दोनों ही अच्छे लगते हैं. जैसे अगर पढ़ना चढ़ना हो तो मामा, कहीं जाना हो क्या, कोई कंप्यूटर का काम करना हो तो बाबा.
1: हाँ, हमने अपने प्रेफरेंसेस रखे हैं भाई, कौन किस वक्त काम आता है उसके हिसाब से जो ना हमने रखा हुआ है. चलिए भाई, आपसे बात करके बहुत बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा. अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपने आप को मोटिवेटेड रखें. याद रखें, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, नेवर क्लोज द विंडो ऑफ लर्निंग. माशाल्लाह, यू आर अ वेरी प्रोडक्टिव चाइल्ड. इंशाल्लाह मैं अल्लाह ताला इंक्रीज यू इन नॉलेज. तो भाई साथियों, जन्नत और मैं आप लोगों से इजाजत चाहेंगे. अपना ढेर सारा ख्याल रखें, याद रखें, यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप. जो इंसान अपना ख्याल नहीं रख सकता वो जन्नत क्या नहीं कर सकता, वो दूसरों का भी
2: ख्याल नहीं रख सकता.
1: वेरी गुड. तो दूसरों का ख्याल रखने के लिए क्या करना है? सबसे पहले
2: आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा,
1: अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी एजुकेशन का, अपनी फीलिंग्स का. आपको

0: क्योंकि यही सीखना अभी आए ना आए काम आगे जाके बहुत काम आने वाला है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हमें दीजिए इजाजत। शो सुन रहे थे आप जूनियर जनाब, हमारे साथ थी जन्नत। जन्नत अल्लाह हाफिज कर दें।
1: अल्लाह
0: हाफिज। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, सुनते रहे FM 107 दिल से देसी।
2: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब।
3: आप सुन रहे हैं FM 107
0: दिल से देसी।
4: दोस्तों, रोड मार्किंग्स यानी सड़क पे जो निशानात होते हैं वो सड़क की जुबान होते हैं। इन पर अमल करना ट्रैफिक की हिफाजत को बढ़ाता है और लोगों को महफूज रखने के लिए बहुत अहम है। ट्रैफिक साइंस और मार्किंग्स पर अमल कीजिए। याद रखिए कि एक दूसरे का ख्याल रखते हुए हम सब मिलकर इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर सकते हैं। और हाँ, ट्रैफिक के कानून की तामील करने से हम अपनी और रोड पर अपने इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगी को महफूज कर सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
2: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
1: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
2: हर मंडे सुबह 10 बजे से आप जनाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
1: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
2: दोस्तों, इमरजेंसी नंबर 999 एक अहम जरूरी नंबर है। याद रखिए, अगर आपको किसी इमरजेंसी में मदद की जरूरत हो तो सबसे पहले अपने आप को पूरी तरह से पूरी सिचुएशन में शामिल करें। अगर आप खुद पे या दूसरों पे खतरा महसूस कर रहे हैं तो बिना किसी हेजिटेशन के 999 पर कॉल करें। जब आप कॉल करें तो अपना पूरा पता, अपनी हालत और जरूरी मालूमात, जैसे कि किस किस्म की इमरजेंसी है, किस वक्त का इशू है और किस जगह पे आप हैं, ये सब बताना बहुत जरूरी है। ये मालूमात देकर आप अपनी मदद के लिए जल्दी से रिस्पांस हासिल कर सकते हैं। 999 पर कॉल करते वक्त ये जरूरी है कि आप पूरी तरह से शांत रहें। अगर आप घबराएंगे तो मदद देने वाले को आपकी बात समझने में मुश्किल हो सकती है, इसलिए अपनी कॉल को क्लियर और ठीक से देना जरूरी है। जब आप 999 पर कॉल करते हैं तो ये कॉल डायरेक्टली इमरजेंसी सर्विसेज सेंटर तक पहुंचती है।

0: वहां पर ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स आपसे बात करते हैं और सिचुएशन के मुताबिक आपको मदद फराहम करते हैं। अगर आपको मेडिकल मदद की जरूरत है तो एम्बुलेंस भेजी जाती है। अगर किसी कुदरती तूफान या नेचुरल डिजास्टर का सामना है तो रेस्क्यू टीम और सिविल डिफेंस भी आपकी मदद के लिए आती है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है। गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
1: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट,
0: गेम ऑन,
1: वॉल्यूम अप,
0: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
1: समर स्पोर्ट्स विद RJ फजील,
0: ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: वेलकम बैक साथियों टू इको स्विच विद सफा ऑन एफएम 107, जहां हम बात करते हैं उन डेली डिसीजंस की जो एनवायरनमेंट को शेप करते हैं। साथियों, आज का टॉपिक है ग्लास वर्सेस प्लास्टिक कंटेनर्स, यानी हम जो कंटेनर्स खाना स्टोर करने, पानी रखने या लेफ्ट ओवर्स सेव करने के लिए यूज करते हैं, उनमें कौन सी चॉइस ज्यादा इको फ्रेंडली है। ये सिर्फ किचन का डिसीजन नहीं है बल्कि लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का भी पार्ट है। साथियों, जरा सोचिए, आप अपना फ्रिज खोलते हैं और अंदर प्लास्टिक कंटेनर्स का एक जंबल पैदा हुआ हुआ होता है। एक में करी पड़ी हुई है, दूसरे में कहीं राइस पड़े हुए हैं, तीसरे में कहीं स्नैक्स पड़े हुए हैं। कुछ स्टेन हो जाते हैं, कुछ स्मेल होल्ड कर देते हैं और कुछ तो ऐसे होते हैं जो कुछ टाइम बाद रिप्लेस करने पड़ते हैं। अब भाई, अगर कंपेयर करें ग्लास कंटेनर के साथ तो भाई कैसा होगा? क्लियर विजिबिलिटी, नो स्मेल और लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबिलिटी। इको स्विच यहाँ बताता है कि छोटी सी स्विच यानी प्लास्टिक से ग्लास या ग्लास से भी बेटर रीयूज किचन हाइजीन और एनवायरनमेंट दोनों को इम्प्रूव कर सकता है। अब चलिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं जो आपको कंपेयर करने पर मजबूर कर देंगी इन चीजों को। देखिए भाई, प्लास्टिक कंटेनर्स को डिग्रेड होने में कितने 400 से 500 साल लग जाते हैं। ग्लास 100% रिसाइक्लेबल होता है बिना क्वालिटी लॉस के, यानी ग्लास इनफिनिट टाइम्स रिसाइकल हो सकता है। अच्छा, प्लास्टिक कंटेनर्स के कंपैरिजन में ग्लास फूड टेस्ट को अफेक्ट नहीं करता और केमिकल लीचिंग का रिस्क जीरो होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाई, ग्लोबली हर साल आप कह लें कि मिलियंस ऑफ टन ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट सिर्फ फूड स्टोरेज और टेक अवे कंटेनर से ही जनरेट होता है। अच्छा, इको स्विच को यहाँ अगर सिंपल सा लिया जाए ना, तो इको स्विच का आइडिया यहाँ सिंपल है, स्टोरेज को सस्टेनेबल बनाना। जब हम ग्लास कंटेनर्स यूज करते हैं तो हम प्लास्टिक वेस्ट को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक अगर एक एवरेज हाउस होल्ड प्लास्टिक स्टोरेज को 50% ग्लास से रिप्लेस करे तो वो साल भर में डजन्स ऑफ किलोग्राम्स प्लास्टिक वेस्ट अवॉइड कर सकता है। साथ ही ग्लास कंटेनर्स ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं, मतलब फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं होती। जरा सोचिए ना, आप वीकेंड मील प्रेप करते हैं, राइस हो गए, चावल वगैरह, करी, सब्जियां सब स्टोर करते हैं ना, तो भाई प्लास्टिक कंटेनर्स में कुछ दिन बाद स्मेल रह जाती है, या उनके अंदर आपने कभी देखा होगा कि वो ऑयल के स्टेन्स भी रह जाते हैं। अब सेम चीज अगर ग्लास कंटेनर में स्टोर की जाए, रीहीट सेफ हो जाता है, क्लीनिंग इजी हो जाता है और फूड, आपका जो खाना आपने रखा होता है, वो ज्यादा देर फ्रेश रहता है। इको स्विच पर्सपेक्टिव ये कहता है कि लॉन्ग टर्म में ग्लास नॉट ओनली इको फ्रेंडली है बल्कि कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। चलिए आप कुछ प्रैक्टिकल और सिंपल इको स्विच टिप्स पर चलते हैं जो घर में फॉलो की जा सकती हैं भाई बड़ी आसानी से। पहला ये कि डेली यूज के लिए ग्लास कंटेनर्स प्रेफर करें, स्पेशली लेफ्ट ओवर्स के लिए। दूसरा, अगर प्लास्टिक यूज हो भी रहा है तो BPA फ्री और रीयूजेबल क्वालिटी चूज करें। तीसरा, माइक्रोवेव और गर्म खाने के लिए प्लास्टिक अवॉइड करें। चौथा, पुराने ग्लास जार्स, यानी कि जैसे जैम या सॉस जार्स होते हैं ना, उनको रीयूज करें स्टोरेज के लिए, बहुत शानदार रीयूज होते हैं वो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किचन ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसपेरेंट ग्लास कंटेनर्स यूज करें ताकि खाना वेस्ट कम हो। साथियों, इको स्विच का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि हम सिर्फ कन्वीनियंस नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखें। प्लास्टिक शुरू में तो इजी लगता है, लेकिन ग्लास ड्यूरेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी इज बेटर। अच्छा, इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि जो हाउस होल्ड ग्लास स्टोरेज अडॉप्ट करते हैं ना, उनका खाना कम वेस्ट होता है क्योंकि विजिबिलिटी बेटर होती है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपने किस बॉक्स में क्या रखा था। आखिर में भाई, इको स्विच का सिंपल मैसेज है और वो ये है कि हर कंटेनर सिर्फ स्टोरेज नहीं होता बल्कि एक एनवायरमेंटल चॉइस होती है। ग्लास और प्लास्टिक के बीच सिर्फ मटेरियल का डिफरेंस नहीं है बल्कि हमारे फ्यूचर का भी डिफरेंस है। तो भाई, अगली बार जब आप कंटेनर चूज करें ना, तो एक छोटा सा इको स्विच जरूर ऑन कर लीजिएगा। इज दिस हेल्पिंग माई किचन टू स्टे सस्टेनेबल? इसी के साथ मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच FM 107 कतर पर, जहाँ हर बॉक्स सिर्फ कंटेनर नहीं बल्कि क्लीन फ्यूचर का डिसीजन होता है।
1: number one hits music station. Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: गाड़ियों के दरमियान सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना रोड पर हर फर्द की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। हमेशा इतनी जगह जरूर छोड़ें कि अगर आगे वाली गाड़ी अचानक रुक जाए तो आपके पास रिएक्ट करने का वक्त हो। याद रखें, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी स्पीड और डिस्टेंस दोनों कंट्रोल में रखें। अक्सर हादसे इसी वजह से होते हैं कि ड्राइवर्स गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला नहीं रखते। आपकी रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग बिहेवियर सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाने में भी मददगार साबित होती है। फास्ट ट्रैफिक और हाईवे पर ये और भी ज्यादा अहम हो जाता है। सडन स्टॉप्स और इमरजेंसीज किसी भी वक्त हो सकती हैं, इसलिए हमेशा महफूज

0: महफूज फासला रखना जरूरी है। ड्राइव सेफली, क्योंकि आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी नहीं, रोड पर हर शख्स की जिम्मेदारी भी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मुताबिक ट्रैफिक रूल्स को एहतियात से फॉलो करना ही एक अच्छे ड्राइवर की पहचान है। तो अगली दफा जब आप ड्राइव करें तो याद रखिए, फासला जरूरी है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।
3: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज का टॉपिक है मुश्किल वक्त में शुक्र अदा करना। अक्सर हम खुशी के लम्हों में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, लेकिन असल इम्तिहान मुश्किल वक्त में होता है। जब जिंदगी में चैलेंजेस आते हैं, तब भी अगर इंसान शुक्रगुजारी का रवैया अख्तियार करे तो उसका दिल मजबूत रहता है। शुक्र का मतलब सिर्फ सुकून के लम्हों तक महदूद नहीं, बल्कि हर हाल में अल्लाह की हिकमत पर यकीन रखना है। हर मुश्किल के अंदर कोई ना कोई बेहतरी छुपी होती है जो वक्त के साथ समझ आती है। मुश्किल वक्त में शुक्र करने वाला इंसान रूहानी तौर पर ज्यादा मजबूत हो जाता है। ये उसे नेगेटिव सोच से बचाता है और उम्मीद देता है। आज का अमल ये है कि अपनी किसी मुश्किल सिचुएशन के बारे में सोच कर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहें और उसमें कोई पॉजिटिव पहलू ढूंढने की कोशिश करें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आरजे मावश। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी। One step to 2030. Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया। One Step to 2030. आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक पर जिसका टाइटल है क्लीन एनर्जी। इस पर हमने पहले भी बात की है, लेकिन आज थोड़ा सा डिटेल में इस टॉपिक को समझेंगे। देखिए, 2030 तक दुनिया को बेहतर बनाने के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप जो लिया जा रहा है वो है कि क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ाया जाए। क्लीन एनर्जी का मतलब है एक ऐसी एनर्जी जो एनवायरमेंट को नुकसान ना दे, जैसे सोलर, विंड और हाइड्रो पावर। क्लीन एनर्जी होता क्या है? क्लीन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हवा, धूप और पानी से मिलती है। इससे पोल्यूशन नहीं होता और एनवायरमेंट सेफ रहता है। आजकल ज्यादातर एनर्जी कोल और ऑयल से बनती है जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है और ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा सबब भी बनती है। 2030 तक इसका गोल क्या है? देखिए, दुनिया की कई कंट्रीज ने टारगेट रखा है कि 2030 तक फॉसिल फ्यूल का यूज कम करना है, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना है, कार्बन इमर्शंस कम करने हैं। यानी एम ये है कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी क्लीन सोर्सेस से आए। इसका क्या इफेक्ट होगा? देखिए, 2030 तक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत चेंजेस आ सकते हैं। सोलर पैनल्स घरों पर, लोग अपने घर की छत पर सोलर पैनल्स लगाएंगे और अपनी बिजली खुद ब खुद प्रोड्यूस करेंगे। वहीं पर पेट्रोल और डीजल की जगह इलेक्ट्रिक कार्स का इस्तेमाल, जो कि पोल्यूशन को कम करेगा। और स्मार्ट सिटीज शहर ऐसे डिजाइन होंगे जहां एनर्जी वेस्ट ही ना हो और हर चीज एफिशिएंट हो। वहीं क्लीन एनर्जी से नए जॉब्स क्रिएट होंगे, सोलर पैनल इंस्टॉलर्स के, विंड टर्बाइन इंजीनियर्स के, एनर्जी एक्सपर्ट्स के, और इससे इकोनॉमी स्ट्रांग हो सकती है और नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है। अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि पोल्यूशन कम होगा, क्लाइमेट चेंज स्लो होगा, हेल्थ इम्प्रूव होगी, फ्यूचर जनरेशन के लिए बेटर प्लैनेट मिलेगा। और चैलेंजेस? चैलेंजेस भी हैं इसके अपने कई। क्लीन एनर्जी सिस्टम महंगा हो सकता है, टेक्नोलॉजी हर जगह अवेलेबल नहीं होगी, लोगों को अवेयर करने की सख्त जरूरत होगी। दोस्तों, 2030 तक क्लीन एनर्जी का यूज बढ़ाना एक बहुत ही जरूरी स्टेप है। ये सिर्फ एनवायरमेंट को सेफ नहीं रखेगा, बल्कि इंसान की जिंदगी को भी बेहतर बनाएगा। अगर दुनिया मिलकर काम करे तो 2030 तक एक क्लीनर और हेल्दियर प्लैनेट मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। फिलहाल मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए।

0: और नसीहत करना छोड़ दें। मुश्किल वक्त में दुनियावी तदाबीर जरूर कीजिए, लेकिन अल्लाह ताला से इल्तजा और दुआ भी कीजिए, क्योंकि जहां इंसान का हौसला खत्म हो जाता है वहां से अल्लाह ताला की रहमत का नुज़ूल शुरू हो जाता है। मुश्किल वक्त में साथ देने वाला कोई अजनबी क्यों ना हो दिल में उतर जाता है, जबकि मुश्किल की घड़ी में किनारा करने वाला अगरचे अपना ही क्यों ना हो दिल से उतर जाता है। याद रखिए कि जिंदगी में अगर हम मुश्किल हालात से दो चार ना होते तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपने हमें कैसे नजर आते।
1: पैगाम ऑन FM 107।

मैं सच में जाता हूँ इंट्रो के लिए मैं एक रोबोट रख लूँ और वो रोबोट जो है बोले वेलकम टू टैक इन ओ चैन ओ ओ ओ अस्सलाम वालेकुम मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे यस वेलकम टू टैक इनोवेशन वो दुनिया जहां पर टेक्नोलॉजी भाग रही है सरपट दौड़ रही है सरपट इधर से उधर क्या क्या नहीं हो रहा भाई आप बैठे हुए यहाँ पे आपको लग रहा है कि सब कुछ पहले जैसा ही तो है ना जी ना हर 5 मिनट पे सब कुछ बदल जा रहा है टेक्नोलॉजी की दुनिया ही ऐसी है और क्या क्या खबरें कौन कौन से कोने से आ रही हैं सब बताऊंगा बट उससे पहले कुछ कमाल के टूल्स हैं कमाल की एप्स हैं कमाल के गैजेट्स हैं और आज के गैजेट्स बजट वाले हैं जो आपके काम आ सकते हैं और बजट में है तो मजा ही आ जाएगा आपको उसके बाद हम सीधा कूदेंगे न्यूज़ में क्योंकि न्यूज़ में बहुत काम की चीज़ें हैं और हम गेमर्स का थोड़ा दिल तोड़ा गया है उसके बारे में भी बात करेंगे लेट्स बिगिन विद एप्स दिस वीक ट्रेंडिंग एप्स तो एक ऐप जिसके बारे में सबसे पहले बात करूंगा ये ऐप मैंने रिसेंटली डिस्कवर करी है जी हाँ मैंने डिस्कवर करी है मैं क्रिस्टोफर कोलंबस आई नो सबसे पहले मैंने नहीं करी डिस्कवर लेकिन जिनको नहीं पता है उनके काम आएगी इमेज जनरेशन की बहुत सारी एप्स और एआई टूल्स मैंने पहले आपको बताई थी याद होगा आपको ये जो है अभी ऐप नहीं है दिस इज एक्चुअली एन एआई टूल जो आप फोन में या फिर अपने लैपटॉप्स पे पीसीज पे खोल सकते हैं इसका नाम है REVE AI रेव या फिर रवे जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है REVE AI जब आप टाइप करेंगे तो एक पेज खुलेगा शुरुआत में बिना पेमेंट के यू हर्ड इट राइट बिना पेमेंट के आप बहुत सारी इमेजेस प्रोड्यूस कर सकते हैं जनरेट कर सकते हैं अब एक स्पेसिफिक चीज बताता हूँ बहुत सारे इमेज जनरेटर्स जो होते हैं जो AI इमेज क्रिएट करते हैं उनसे ये बेटर है एंड आई एम नॉट लाइंग टू यू क्योंकि जब आप चेंजेस करने बैठते हैं व्हेन यू एडिट बाकी में तो पूरी पूरी फोटो चेंज हो जाती है ना मान लीजिए आप एग्जांपल देता हूं मैं एक टेबल आपने लिखा कि क्रिएट अ टेबल जिसपे फ्रूट्स रखे हुए हैं राइट अब आपके सामने सेब की एक पूरी बास्केट आ गई है अब उस पूरे फ्रेम में अगर आप एप्पल्स को चेंज करना चाहेंगे इफ यू वांट टू पुट बनाना और प्रॉब्ली पीचेस और व्हाटएवर वो पूरे के पूरे सीन को बदल सकता है चांसेस हैं कि ना सिर्फ बास्केट बल्कि आसपास का सीन भी थोड़ा सा चेंज हो जाए ये जो है REVE AI ये क्या करता है एक तो इमेज बहुत रिफाइंड वर्जन आपको देता है उसके बाद स्पेसिफिकली चीजों को चेंज करता है तो आपको कोई फ्रेम में कोई स्पेसिफिकली कोई चीज बदलनी है तो पूरे फ्रेम पे फर्क नहीं पड़ेगा ये अलग से उसी चीज को बदलेगा सिर्फ जिसको आप बदलना चाहते हैं पूरी की पूरी फोटो में I know it sounds a little complicated, but I'm not lying to you. ये आपके काम आ सकती है अगर आप इमेज जनरेट करना चाहते हैं even if you want to check, आप जाइए खुद ट्राई कीजिए REVE AI ठीक है इस पे आप डाल के देखिए एंड फ्री में बहुत सारी इमेजेस आप क्रिएट कर सकते हैं एक पॉइंट के बाद वो आपसे ऑफकोर्स बोलेगा लाओ जी डॉलर तो मेरे हाथ में तब बनाऊंगा अगली लेकिन आप कर सकते हैं इसका जो पेड वर्जन है ये उन लोगों के लिए जो वीडियोस बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो भी इससे जनरेट करवा सकते हैं या अपने फोटोज को एनिमेशन एनिमेट कर सकते हैं ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल AI टूल टू यूज एंड आप यूज करिए खुद बताइएगा मुझे कि आपका क्या इस पर रिव्यू बिकॉज आई एब्सोल्युटली लव्ड इट तो ये है हमारी लिस्ट में सबसे पहले रैंकिंग वाइज नहीं मगर सबसे पहले इसका जिक्र करना चाहता हूँ बिकॉज रिसेंटली मुझे ये AI टूल मिला ओके मूविंग ऑन अगला जो है जी ये बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत काम का है इस AI टूल का नाम है Gamma AI GAMA ठीक है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बहुत सारे AIs हैं आई नो जो लोग बिजनेसेस में हैं या जिन लोगों को प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है

0: वो लोग मुझसे कहीं गुना ज्यादा और कहीं गुना ज्यादा जानते हैं, ऐप्स उन्हें पता है, उन्हें यह टूल पता है। बट अगर नहीं पता किसी को, जो सोच रहा है कि प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया तरीके से कैसे बनाए, तो गामा AI, GAMA AI, लेट मी टेल यू वाई इट इज बेटर एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर AI टूल्स। ये प्रेजेंटेशन तो जनरेट करेगा ही करेगा बहुत सिंपल तरीके से, मगर इसके बाद आपको कोई स्पेसिफिक स्लाइड में कुछ चेंज करना है, उसको आपको कोई कैजुअल लुक देना है, आपको उसमें चार्ट्स बनाने हैं, आपको उसमें एक फ्लो बनाना है, वट एवर इज देयर, ये फौरन चेंज करेगा स्पेसिफिक स्लाइड्स में। जैसे आपने डाला कि चेंज स्लाइड 3 टू बी मोर कैजुअल विद अ फ्लो चार्ट, तो बाकी प्रेजेंटेशन की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, स्पेसिफिकली वो वाली स्लाइड जिसको जिस पे आपने प्रॉम्प्ट दिया है वो काम करेगी। मैं नहीं कह रहा बाकी AI नहीं करते, मगर ये जो करता है ना भाई, बहुत बढ़िया करता है। एंड इसमें जो लेआउट्स हैं, टेम्पलेट्स हैं, वो तो कमाल के हैं। वन ऑफ द फास्टेस्ट AI टूल्स जिससे मैंने प्रेजेंटेशन खुद बना के देखी है। मत पूछिए किस सब्जेक्ट पे बनाई, बिकॉज आपका भाई प्रेजेंटेशन वाला बंदा नहीं है, जो लोग हैं प्रेजेंटेशन वाले उनके काम आएगी। तो आप सुन रहे हैं भाई साहब, इधर तो देखिए, हाँ, गामा AI, GAMA AI, ठीक है, ओके, मूविंग ऑन। अगली है ऐप बहुत बहुत काम की, अगर ऐप ना मिले वेबसाइट पर चले जाना, फोन में खुलती है, एंड्रॉइड हो, iOS हो, या आपके पास PC हो या लैपटॉप, वॉट एवर। इसका नाम है famelack.com, FAMELACK। मैं डिकोड नहीं कर पाया इसका नाम ये क्यों रखा है, famelack.com। ये क्या करता है, इसमें जब आप खोलेंगे इसकी वेबसाइट को, तो ये लाइव TV है भाई, दुनिया जहां का कोई सा भी चैनल आप देख सकते हैं। इसका इंटरफेस मुझे इतना बढ़िया लगा, जब आप ये वेबसाइट खोलते हैं तो आपके सामने ग्लोब आता है, उस ग्लोब को आप घुमाइए, जूम कीजिए, जूम आउट कीजिए, जूम इन कीजिए और कंट्री सेलेक्ट कीजिए, कंट्री के बाद आपको सारे के सारे जो उसके टीवी चैनल्स हैं वो नजर आ जाएंगे। ऑफ कोर्स कुछ बहुत सारे चैनल्स होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं आएंगे, मगर मोस्टली जो चैनल्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे भाई। बहुत कमाल की चीज है, बहुत कमाल की चीज है। सो famelack.com, इट इज नॉट लैकिंग फेम एट ऑल, पर नाम में है तो है, ठीक है। विदाउट सब्सक्रिप्शन अगर आप TV चैनल्स देखना चाहते हैं ऑन द गो, ये है आपके लिए famelack.com, ठीक है। अब बढ़ते हैं जरा गैजेट्स में, गैजेट्स दिस वीक में, जिसमें बजट वाले गैजेट्स हैं।
1: cool gadgets।
0: तो गैजेट ऑन द लिस्ट, सबसे पहले बात करूंगा मैं एक ऐसी चीज की जिसको देखने के बाद मेरा भाई हमारे ऑफिस में काम करता है शहबाज, वो कह रहा भाई ये चाहिए, ये तो चाहिए। ये है एसर चार्ज मेट 4-in-1। ये क्या है, एक किस्म का, हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस भाई, एक किस्म का कारपेट है, ठीक है, छोटा सा कारपेट है आपके लैपटॉप के लिए, 4-in-1 जैसे मैंने कहा, वायरलेस चार्जिंग देता है, वायरलेस चार्जिंग। इसके अंदर सिर्फ वायरलेस चार्जिंग नहीं है, लैपटॉप स्लीव भी है, तो मतलब लैपटॉप अगर आपका 13-16 inches का है, आप आराम से इसमें लैपटॉप को स्लाइड कर सकते हैं, अपने साथ कैरी कर सकते हैं, और वायरलेस चार्जिंग है इसमें। आप वायरलेस चार्जिंग के अलावा आप घड़ी चार्ज कीजिए, आप अपने जो हेडफोन्स है वो चार्ज कीजिए, एनीथिंग, पर आपका लैपटॉप इस पे रख के जब आप काम करेंगे, 10 लोग मुड़ के देखेंगे और बोलेंगे यही है भाई बिजनेसमैन, इसी को आवे है काम, मैं बता रहा हूँ। फॉर गुड इंप्रेशन, फॉर गुड क्वालिटी, फॉर चार्जिंग पर्पसेस एंड टू लुक मोर सिक्योर इन योर वर्क प्लेस, ये आपके काम आएगा। बहुत सस्ता है भाई, बहुत ही सस्ता है, इंडिया से अगर किसी से मांगेंगे आप तो और भी सस्ता पड़ेगा। तो एसर चार्ज मेट 4-in-1, अभी अमेजोन पे ये मैंने चेक किया तो अभी अमेजोन पे नॉट अवेलेबल, लेकिन बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, बट इट इज अवेलेबल एल्सवेयर एज वेल। तो कतर में भी कहीं पर मिले तो मुझे प्राइस बताइएगा इसका क्या है, मैं भी लेने की सोच रहा हूँ। सो एसर चार्ज मेट, ACER वो जो कंपनी है, एसर चार्ज मेट 4-in-1 वायरलेस, इतना टाइप करेंगे आपको मिल जाएगा, एंड बहुत कमाल का भाई, बहुत ही ज्यादा कमाल का, ठीक है, लेट्स मूव ऑन। अब अगला जो है जो मैं जिक्र करना चाहता हूँ, ये भी बड़ा कमाल का है, ये माउस है। मैं इसलिए हिचकिचाया कि आप बोलें ऐसा क्या बताने वाला है। देखो आप, मैं जानता हूँ आप माउस बहुत सारे कतर में ले चुके हैं, लेकिन आपको लगता है ये क्या करूँ मैं इसका, पर ये बजट में है भाई, ये बजट में है। कतर में भी आपको 50-50 रियाल के माउस मिल जाएंगे, लेकिन जो इस माउस के अंदर है वो बाकी में बात नहीं है, ये हाथ में प्रीमियम फील होता है। इसका नाम है MCAT, AMKETTE, MCAT, MCAT प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, मगर मैं स्पेल आउट कर देता हूँ, AMKETTE XS सीरीज, X एज एन एक्सरे वाला और S, ठीक है, एज इन स्नो, तो MCAT स्नो सीरीज फ्लो। ये एक माउस है, एरोगोनॉमिक वायरलेस ब्लूटूथ माउस है ये। इसमें साइड स्क्रोल भी है और साइड स्क्रोल बड़ा अच्छा काम करता है भाई। 7 बटन दिए हुए हैं, मल्टी ओएस, 3200 डीपीआई एडजस्टेबल है, 1000 हर्ट्ज पॉलिंग है और 800 एमएएच की रिचार्जेबल बैटरी है। बहुत बढ़िया काम का है। कई मरतबा क्या होता है ना, आप जब एक्सेल शीट खोलते हैं तो उसे साइड स्क्रोल करना पड़ता है और फिर आपको लगता है काश कुछ ऐसा हो जाए तो फौरन साइड स्क्रोल कर लेता, तो ये है। और बजट में अंडर 1000 है, कई जगहों पे 1200-1100 का पड़ेगा। मैं इंडियन रुपीज में बात कर रहा हूँ, तो अगर कोई इंडिया से आपके लिए ला सके तो ये मंगा लीजिए। आपकी छुट्टी माउस लेने की जरूरत ही नहीं है इसके बाद आपको, यहाँ पर ही मिल सकता है। चांसेस आर यहाँ पे आप देख लीजिएगा, AMKETTE मिले तो भाई बताना, हम भी जरा हाथ साफ कर लेंगे क्योंकि काम की चीज तो है भाई, काम की चीज तो है। अब मूविंग ऑन। अच्छा अब देखो, कतर में ना एक चार्जर है, अब मल्टीपल कंपनीज इस किस्म के चार्जर बना रही है, तो मैं इसको कोई कंपनी का नाम नहीं लूंगा। आई एम जस्ट टेलिंग यू, यहाँ पर कतर में एक चार्जर मिल रहा है। उसकी खास बात यह है कि वो जब आप गाड़ी में प्लग इन कर लेते हैं, जहाँ पे लैपटॉप चार्जिंग की जगह होती है, सॉकेट में लगाते हैं, तो उसके रिट्रैक्टेबल वायर्स हैं, है ना, वो मिल रहे हैं अराउंड 120 रियाल्स के, आई डोंट नो, अभी 140-130 ऐसे चल रहा था। पहले मुझे लगा ये खराब चीज है, क्या यार वो मतलब है, कोई तो क्या है इस बात का, मैं तो अपनी गाड़ी में चार्ज कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वायर लगाया चार्ज हो गया। आई वॉज रॉन्ग। ये आप ट्राई करके देखें, जब आप अपनी गाड़ी में इसे लगाएंगे सॉकेट को, तो रिट्रैक्टेबल वायर्स का बहुत फायदा रहता है भाई। आपने फोन चार्जिंग पे लगाया और आपका चाहे कैसी भी पिन लगती हो भाई आपके फोन में, ये काम करेगा। सी टाइप हो, कैसी भी हो, लाइटनिंग केबल हो, सब लगाइए और काम कीजिए। ये बहुत बहुत बढ़िया है। आपने वायर जैसे हटाया अपने फोन से, ये रिट्रैक्ट होकर चला जाएगा। इसमें जो है सॉकेट्स भी, सो यू कैन ऑब्वियसली चार्ज योर लैपटॉप एज वेल, यू कैन चार्ज एनीथिंग यू वांट। एंड ये गाड़ी के मेन सॉकेट से सोर्स जुड़ा हुआ है, तो बहुत जल्दी चार्ज भी करता है, बहुत काम का है। तो अगर कतर में ये मिले आपको, ऐड आएंगे आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, सोचने का नहीं, ले डालने का। ओके ठीक है जी, ये हो गई गैजेट गुजेट की बातें। अब एक रिमाइंडर, सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 कतर है, FM107 कतर, इस पे आ जाइएगा। कोई गैजेट, कोई ऐप, कोई कुछ भी आपके जहन में आ रहा हो टेक से जुड़ा हुआ, तो हम तक जरूर पहुंचाए। ठीक है, अब बढ़ते हैं इन टेक न्यूज की तरफ। खबरें बहुत सारी हैं और उन खबरों में एप्पल अभी भी छाया हुआ है। एप्पल जो है रोल आउट करने वाला है iOS 27। आपके पास अगर iPhone 15 से ऊपर है, iPhone 15 से आपका फोन शुरू होता है, तो बढ़िया भाई, इस फॉल में मतलब के कुछ महीनों बाद ही आपको iOS 27 की अपडेट मिल जाएगी। iPhone 15 से पहले वाले फोन्स को नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यस, Apple has said that. उन्होंने बोला कि न्यू असिस्टेंट जो है वो इनिशियली रिलीज होगा एज अ बीटा वर्जन, उसके बाद यूजर्स जो हैं वो मोर और लेस लाइकली ऑप्ट इन करेंगे फॉर सीरी AI, जो कि iOS 27 डेवलपर्स जो हैं वो रोल आउट करेंगे बीटा, उसका टेस्टिंग वेस्टिंग वो सब अलग चीजें, मगर जो कैपेबिलिटी है इसकी वो आने में पता लगेगी। आई विल नॉट जज, पर एक चीज़ है, एप्पल जब भी अपडेट देता है तो पिछले वाला फ़ोन जो है अगर आप अपडेट करते हैं तो पता नहीं क्यों स्लो हो जाता है, बैटरी यार आप बहुत जल्दी निकलने लग जाती है, विच इज़ सैड। तो मुझे अपडेट से डर लगता है, मगर आप करना चाहें, इफ़ यू हैव अ फोन आईफोन 15 से ऊपर है या आईफोन 15 है, तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये सपोर्ट जो है देना चाह रहे हैं आईफोन 11 को भी, मगर वो बहुत ही वेगली इन्होंने कहा है, तो आई विल नॉट मेंशन दैट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब गेमिंग न्यूज की तरफ, जिससे मेरा दिल टूटा है।
2: गेम एंड एंटरटेनमेंट।
0: गेमिंग न्यूज में प्लेस्टेशन कम्युनिटी को बहुत बड़ा धक्का लगा है। जैसे मैंने पिछले हफ्ते बताया था आपको कि इन्होंने बोल दिया है कि सीडीज अब नहीं आएंगी, नो फिजिकल डिस्क, नो नथिंग। अब ये करने के बाद एक केओटिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है। जापानीज कंपनी जो है वो बहुत ज्यादा अनॉयड है इस चीज से, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर डिसएग्रीइंग, यार क्यों कर रहे हो ऐसा। पर प्लेस्टेशन अभी भी अड़ा हुआ है, उन्होंने बोला नो नो नो नो नो, जनवरी 2028 के बाद सोनी जो है किसी भी किस्म की फिजिकल डिस्क नहीं क्रिएट करने वाला है। जहां तक मुझे लगता है जो लीक्स बता रहे हैं, जब प्लेस्टेशन 6 आएगा, आई डोंट नो, कह रहे हैं कि 28-29 में आ जाएगा, उसमें पहले ही इन्होंने सेटल कर दिया कि ना भाई कोई डिस्क नहीं है। द सैड पार्ट इज कि बहस छिड़ चुकी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि डिस्क नहीं है चलेगा, पर मैं उनमें से जो कह रहे हैं भाई फिजिकल डिस्क तो दो। If I want to share a game with somebody, I cannot. Online में कर सकता हूँ, online में share कर सकता हूँ, मुझे अपना account देना पड़ेगा, that is another thing. मगर physical disc की बात कुछ और होती है, है ना? तो वो चीज़ खत्म करके इन्होंने बाकियों को भी वो कर दिया है। हाँ प्रोवोक कर दिया है. अभी एक्सबॉक्स वाले भी कह रहे हैं ना जी ना हम भी डिस्क खत्म कर रहे हैं, हटाओ हटाओ हटाओ. सो ऐसा करने से कंसोल तो थोड़ा पतला हो जाएगा, कंसोल जो है गेमिंग कंसोल, पर इसका फायदा क्या है? यू आर किलिंग योर फैंस, है ना. आई डोंट नो आपका इस पर क्या कहना है, ये आप बता सकते हैं. डिस्क नहीं होगी, आई एम जस्ट सैड. सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 कतर है, FM107 कतर. मुझे बताइएगा कि आप फिजिकल सीडीज के हक में हैं या आपको लगता है कि नहीं जो ऑनलाइन खरीदो तो चल जाएगा, बिकॉज ऑनलाइन खरीदने पे यू डोंट टेक्निकली ओन इट. सीडीज या यस यस यू थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन, बट फॉर नाउ टेक इनोवेशन से मैं दो हवाला कभी लेता हूँ. इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं. मास्सलाम.
3: आप सुन रहे हैं FM 107
4: दिल से देसी.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: अलैकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। सईद अल सुलैती कतर के सबसे नुमाया मोटरसाइकिल रेसर्स में शुमार किए जाते हैं। मैंने पिछले कई एपिसोड्स में मोटर गाड़ियों के बारे में बताया, मोटर कार रेसिंग के बारे में बताया, ऑफ रोड रेसिंग के। इस बार मैं जिसके बारे में मैं बात करूंगा या कर रहा हूं वो सईद अल सुलैती है, जो कि मोटरसाइकिल रेसर्स में से वन ऑफ द स्टार्स हैं। उन्होंने अपनी रफ्तार, हिम्मत और मेहनत के जरिए बैन अक्वामी मोटर स्पोर्ट में कतर का नाम रोशन किया है। मोटरसाइकिल रेसिंग दुनिया के मुश्किल तरीन और खतरनाक खेलों में से एक है। ये आप लोगों को पता है, टू व्हीलर इज ऑलवेज डेंजरस, बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होता है, जहां ड्राइवर्स को बहुत तेज रफ्तार पर मुकम्मल कंट्रोल और गैर मामूली तवज्जो की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ सईद अल सुलैती ने इन तमाम टैलेंट का बेहतरीन मुजाहरा करते हुए एक कामयाब करियर तय किया। हिम्मत चाहिए होता है मोटरसाइकिलिंग रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए, एंड इट्स क्वाइट डेंजरस, क्वाइट डेंजरस। सईद अल सुलैती ने कतर की नुमाइंदगी सुपर बाइक वर्ल्ड चैंपियनशिप में की, जो मोटरसाइकिलिंग रेसिंग की दुनिया के सबसे बड़े और मुकाबले से भरपूर टूर्नामेंट्स में से एक माना जाता है। इस प्लेटफॉर्म पर मुख्तलिफ ममालिक के बेहतरीन राइडर्स शिरकत करते हैं और सईद ने उनके दरमियान अपनी काबिलियत साबित की। इसके अलावा उन्होंने FIM एंड्योरेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी हिस्सा लिया, जहां लंबी मुद्दत की रेसेस ड्राइवर्स की जिस्मानी और जहनी सलाहियत का सख्त इम्तिहान लेती है। आज सईद अल सुलैती कतर के मोटर स्पोर्ट के एक रोशन सितारे के तौर पर जाने जाते हैं और उनकी कामयाबियां इस बात का सबूत हैं कि जज्बा, मेहनत और अजम के जरिए कतरी एथलीट्स दुनिया के सबसे बड़े मंच पर अपनी पहचान बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
0: दिल से देसी।

0: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
1: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
3: بس اگر تم نہیں جانتے تو اہلِ

0: वक्त की कमी हो, मतलब जल्दी में हो बंदा, या उसका टैंक टूट रहा हो या उसका बस टूट रहा हो
1: जी।
0: और पानी कम होने का मतलब ये है कि मतलब आपके पास का पानी कम हो, अगर मतलब आपको ये लगे कि मैं अगर मुंह और नाक में डालूं तो बाकी अजा मेरे वो नहीं होंगे।
1: अच्छा
0: जी, इसके बारे में थोड़ा
1: इंशाल्लाह जरूर इंशाल्लाह इस पर हम बात करेंगे। और कोई दूसरा सवाल आपका?
0: नहीं, थैंक यू सर।
1: अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। सामीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे दुआओं के सिलसिले में, और बात ये हो रही थी कि इंसान की ज़िंदगी जो है वो खुशियों और आजमाइशों का मजमूआ है। कभी राहत के दिन आते हैं तो कभी मुश्किलात के बादल छा जाते हैं, और इन तमाम मौके पर एक दर ऐसा है जो कभी बंद नहीं होता, एक रब ऐसा है जो कभी अपने बंदे को मायूस नहीं करता, और एक इबादत ऐसी है जो बंदे को बराह रास्त अपने खालिक से जोड़ देती है, और वो इबादत दुआ है। जैसा कि गुज़श्ता हलकों में आपने सुना है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ख़ुद फरमाया, दुआ ओ हुवल इबादा। दुआ ये महज चंद अल्फाज का नाम नहीं है, बल्कि बंदे की आजजी, उसके ईमान, उसके यकीन और अपने रब पर कामिल भरोसे का अमली इजहार है। जब एक बंदा अपने दोनों हाथ उठाकर कहता है, या रब, ए अल्लाह, ऐ मुझे पालने वाले, ऐ मेरे खालिक, तो वो दरअसल अपनी तमाम कमज़ोरियों, ज़रूरतों और उम्मीदों को अपने रब के रब करीम के सुपुर्द कर देता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ को इबादत का मग़्ज़ करार दिया है, क्योंकि दुआ ये बंदे और अल्लाह ताला के दरमियान मोहब्बत, उम्मीद, तवक्कुल और ताल्लुक की सबसे मज़बूत कड़ी है। और ख़ुद अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद में अपने बंदों को सिर्फ दुआ का हुक्म नहीं दिया है, बल्कि दुआ कबूल करने का वादा भी किया है। अल्लाह फरमाते हैं, वक़ाला रब्बुकुम उदउनी अस्तजिब लकुम, कि तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर अल्लाह ताला ने कबूलियत का वादा फरमाया है, तो फिर बहुत से लोग ये शिकायत क्यों करते हैं कि भाई हम दुआ करते हैं मगर हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। इसका जवाब हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तालीमात में मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के ऐसे आदाब बयान फरमाए हैं, ऐसे उसूल बयान फरमाए हैं और ऐसी हिदायत हमें दी हैं कि जिन पर अमल किए बग़ैर दुआ अपनी हकीकी रूह से महरूम रह जाती है। यानी अगर उन आदाब का, उन हिदायत का हम लिहाज न करें तो दुआ बस यूं ही रायगा चली जाती है। आज के इस हलके में हम उन्हीं नबवी इरशादात की रोशनी में दुआ के चंद अहम आदाब और कबूलियत के असबाब का मुताला करेंगे। हमें जानेंगे कि दुआ करते वक्त यकीन कितना ज़रूरी है, अल्लाह से मांगने का सही अंदाज़ क्या है, खुशहाली के ज़माने में दुआ की क्या अहमियत है, कबूलियत में जल्दबाजी क्यों नुकसानदेह है, और हलाल रिज़्क़ का दुआ की कबूलियत से क्या ताल्लुक है। तो आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद मुबारक अहादीस की रोशनी में हम दुआ के आदाब को समझते हैं। इससे पहले हम एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।
2: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह शेख
1: साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी भाई फरमाइए, आपका नाम?
2: मेरा नाम अहमद है।
1: जी अहमद भाई,
2: सर हम लोग टैक्सी चलाते हैं और कभी कभी हमको कस्टमर मिलते हैं, वो शराब लेने के लिए जाते हैं ना
1: जी,
2: तो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में
1: जी,
2: तो उधर हम उनको लेके जाते हैं, फिर उधर से हम वो बोलते हैं वेट करो, फिर वो सामान लेते हैं, फिर उनको लेके भी जाते हैं और उनको घर पे भी ड्रॉप करते हैं
1: जी।
2: तो पूछना ये था कि सर इसमें क्या हमको भी कोई गुनाह का कोई ऐसा हो सकता है या हमको कोई ऐसा मसला नहीं पड़ेगा, उनको ले जाने और ले आने में हमको भी कोई मसला आता है, गुनाह मिलेगा या नहीं?
1: यानी वो आपसे जो आपकी टैक्सी बुक करते हैं वो कहते हैं वो शराब लेने जाते हैं और फिर वापस भी आते हैं साथ में?
2: जी जी, और हम उनसे पैसे भी लेते हैं और वो पैसा भी जायज़ है।
1: इंशाल्लाह ज़रूर इस पर बात करेंगे भाई। आपका कोई दूसरा सवाल है?
2: सर एक ही सवाल है जी, बहुत
1: मेहरबान। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर इस पर बात करेंगे। इंशाल्लाह
2: जज़ाकअल्लाह।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तो समीन हम बात कर रहे थे कि हम आदाब अहादीस की रोशनी में दुआ के मुतालिक चंद आदाब और हिदायत को समझते हैं। समीन पहला अदब ये है, दुआ करने के आदाब में से हम पहला अदब ये बयान करते हैं कि दुआ ये यकीन कामिल और हुजूर कल्ब के साथ की जानी चाहिए, यानी दुआ पूरे यकीन के साथ करना चाहिए और हमारा दिल दुआ के वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जे हो, गाफिल ना हो। यानी दुआ इस यकीन के साथ

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर।

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو FM 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آپ سن رہے ہیں FM 107.
2: Dil se desi.
3: Consistency is the key. ये तो सुना ही होगा आपने. और इसी consistency के साथ अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और energy को sustain करने में आगे हाथ बढ़ाया, तो यूँ समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोहफा दे दिया. So sustain the future. RJ महविश के साथ. छोटे-छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और sustainable मुस्तकबिल के लिए. सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी.
4: अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सस्टेन द फ्यूचर, जहां हम बात करते हैं एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और हमारी जमीन को फ्यूचर जनरेशंस के लिए बेहतर बनाने के बारे में. मैं हूं आपकी आरजे महावश और टुडे वी आर डाइविंग इनटू ब्यूटीफुल टॉपिक
1: टॉपिक ऑफ द डे
4: बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्टिंग नेचर्स बैलेंस. आज हम बात करेंगे कि हर एक स्पीशीज जरूरी क्यों है और हम इस प्लैनेट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. स्टे कनेक्टेड विद अस ऑन आवर सोशल मीडिया FM 107 कतर या व्हाट्सएप पे मैसेज भेजें 666-22-107 पे. चलें शुरू करते हैं. आज का टॉपिक है बायोडायवर्सिटी, यानी जमीन पर जिंदगी की वो रंग बिरंगी वैरायटी जो छोटे से कीड़े से लेकर बड़े पेड़ों तक और हर चीज के दरमियान होती है. बायोडायवर्सिटी इज द हार्ट बीट ऑफ आवर प्लैनेट. हर स्पीशीज का अपना रोल है. मिसाल के तौर पे मक्खी यानी कि बीज पॉलिनेशन करती हैं, जिससे हमें क्रॉप्स मिलती हैं. मैंग्रोव्स हमारे कोस्ट लाइंस को प्रोटेक्ट करते हैं और फंगी वेस्ट को ब्रेक करता है. अगर ये डायवर्सिटी खत्म हो जाए तो इकोसिस्टम्स कोलैप्स हो जाते हैं और ये हमारे पानी, खाना और हवा पर असर डालता है. अक्सर हम क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन या एनर्जी क्राइसिस की बात करते हैं, लेकिन एक और चीज जो शायद उतनी हेडलाइंस में नहीं आती वो यही है, बायोडायवर्सिटी का खत्म होना. ये इशू इतना सीरियस है कि साइंटिस्ट इसे साइलेंट क्राइसिस कहते हैं. बायोडायवर्सिटी का मतलब है कि हमारे प्लैनेट पर जितनी भी किस्म की लाइफ एग्जिस्ट करती है, प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, फंगी, इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सब इस सिस्टम का हिस्सा हैं. हर एक स्पीशीज का अपना रोल है और अगर कोई एक लिंक टूट जाए तो पूरी चेन डिस्टर्ब हो जाती है. सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बायोडायवर्सिटी सिर्फ जानवर और पौधों की वैरायटी का नाम नहीं है. ये असल में लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जो इंसानों को जिंदा रखता है. हम जो रोटी, चावल, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं, ये सब बायोडायवर्सिटी का नतीजा है. अगर क्रॉप्स की डायवर्सिटी खत्म हो जाए तो डिजीजेस या क्लाइमेट शॉक से हमारा फूड सिस्टम कोलैप्स हो सकता है. आज की मॉडर्न दवाओं का 50% से ज्यादा हिस्सा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल्स से आता है. अगर ये स्पीशीज खत्म हो जाए तो हमारी दवाओं की दुनिया भी खत्म हो सकती है. क्लीन एयर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, फर्टाइल सॉइल, पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स, ये सब बायोडायवर्सिटी प्रोवाइड करती है. बीज और बटरफ्लाइज अगर ना हो तो एग्रीकल्चर भी रुक जाए. जंगल, माउंटेन्स, रिवर्स और वाइल्ड लाइफ इंसान के लिए सिर्फ रिसोर्सेस नहीं बल्कि एक कल्चरल आइडेंटिटी भी है. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंसान की

एक्टिविटीज ने बायोडायवर्सिटी को खतरे में डाल दिया है। कुछ मेजर थ्रेट्स ये हैं। सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन। हर साल अगर हम देखें तो मिलियन ऑफ एकर्स जंगल कट किए जा रहे हैं, खास तौर पे अमेज़न और साउथ एशिया में। जंगल का मतलब है घर फॉर काउंटलेस स्पीशीज। जब जंगल कटा तो वो स्पीशीज भी गायब हो गए। फिर दूसरे नंबर पे पोल्यूशन। प्लास्टिक पोल्यूशन समंदर की लाइफ के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। व्हेल्स और टर्टल्स प्लास्टिक खाकर मर जाते हैं। वाटर और एयर पोल्यूशन ने काउंटलेस स्पीशीज को इनडेंजर कर दिया है। क्लाइमेट चेंज की बात करें तो राइजिंग टेम्परेचर्स और अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स ने स्पीशीज के नेचुरल हैबिटेट्स को चेंज कर दिया है। पॉलर बियर और कोरल रीफ सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। हंटिंग, ओवरफिशिंग और इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड ने काउंटलेस स्पीशीज को खात्मे के करीब पहुंचा दिया है। सोचें, अगर बीज खत्म हो गई, फूल पॉलिनेट नहीं होंगे, क्रॉप्स ग्रो नहीं करेंगे और फूड शॉर्टेज हो जाएगी। अगर फॉरेस्ट कट गए तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा। अगर फिश ओवर हार्वेस्ट कर ली गई तो मैरीन फूड चेन कोलैप्स हो जाएगी। यानी कि बायोडायवर्सिटी का लॉस सिर्फ एनिमल्स का लॉस नहीं, ये डायरेक्टली इंसान के सर्वाइवल को इफेक्ट करता है। अब सवाल ये है, हम बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट कैसे करें? सबसे पहले तो नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और मैरीन रिजर्व्स क्रिएट करना बहुत जरूरी है, जहां इंसान की इंटरफेरेंस लिमिटेड हो और स्पीशीज अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकें। फिर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ऐसी हो जो सॉइल को डिस्ट्रॉय ना करें और फिशिंग मेथड्स ऐसे जो ओशंस को एम्प्टी ना करें। प्लास्टिक बैन करना, रिन्यूएबल एनर्जी यूज करना और क्लीन वाटर मैनेजमेंट बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत बड़ा फर्क लेकर आता है। फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कम करना और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा थ्रेट है। लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व किया जाए। अगर लोग समझ जाएं कि उनकी जिंदगी बायोडायवर्सिटी पर डिपेंड करती है तो वो ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे। कुछ आपको अब मैं इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स भी देती हूँ। हम बात करेंगे कोस्टा रिका की। ये मुल्क बायोडायवर्सिटी का ग्लोबल चैंपियन है। वहाँ के फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग लॉज हैं। टूरिज्म भी इको फ्रेंडली है। पाकिस्तान की बात करें तो हंजा और गिलगित बल्तिस्तान में कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, जहाँ मारखोर और स्नो लियोपर्ड प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं। कतर और मिडिल ईस्ट की बात करें तो डेजर्ट इकोसिस्टम फ्रेजाइल होता जा रहा है, लेकिन अब इनिशिएटिव्स चल रहे हैं जैसे मैंग्रोव प्लांटेशन और डेजर्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। बायोडायवर्सिटी की प्रोटेक्शन सिर्फ एक एनवायरमेंटल एजेंडा नहीं, ये हमारी सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है। अगर हम अभी एक्शन लें तो बैलेंस रिस्टोर हो सकता है, लेकिन अगर डिले हुआ तो हम अपनी ही सिविलाइजेशन को खतरे में डाल देंगे। इंसान और नेचर एक दूसरे से अलग नहीं, हमारा फ्यूचर इसी में है कि हम नेचर का बैलेंस प्रोटेक्ट करें। कतर में हमें बायोडायवर्सिटी अल थकीरा के मैंग्रोव्स में दिखती है। ये कोस्टल फॉरेस्ट बर्ड्स, फिश और क्रैब्स के लिए एक सेफ हेवन है। ये इरोजन से प्रोटेक्ट करते हैं और कार्बन स्टोर करके क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन ये बहुत फ्रजाइल है। प्लास्टिक का पोल्यूशन या ओवर डेवलपमेंट इन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। एक और मिसाल है अरेबियन ओरिक्स, जो कभी ऑलमोस्ट इंस्टिंक्ट हो चुका था, लेकिन कंजर्वेशन के जरिए वापस आया। दिस स्टोरीज शो एवरी स्मॉल एक्शन काउंट्स। बायोडायवर्सिटी क्यों जरूरी है? ये बैलेंस के बारे में है। एक हेल्दी इकोसिस्टम क्लीन वाटर, फर्टाइल सॉइल और स्टेबल क्लाइमेट देता है। स्पीशीज का लॉस जैसे ओवरफिशिंग या फॉरेस्ट का कटना इस बैलेंस को खराब करता है। फ्यूचर जनरेशंस के लिए बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्ट करना मतलब एक ऐसा प्लैनेट देना जो लाइफ को सस्टेन कर सके। अब हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? पहले अपने लोकल वाइल्ड

लाइफ के बारे में जानिए। बीचेस या डेजर्ट्स पर लिटरिंग से बचें, जहां एनिमल्स को नुकसान पहुंच सकता है। कंजर्वेशन एफर्ट्स को सपोर्ट करें, जैसे लोकल एनजीओस के साथ वॉलंटियर करके या अवेयरनेस स्प्रेड करके। स्मॉल स्टेप्स कैन मेक अ बिग डिफरेंस। यहाँ हम लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हमारे पास होंगी हमारी आज की खबरें ग्रीन फ्लैश में। सुनते रहें FM 107 दिल से देसी।

0: लिसनर्स वेलकम बैक। आप सुन रही हैं एफएम 107 सस्टेन द फ्यूचर। अब चलिए ग्रीन फ्लैश सेगमेंट में, जहां हम दुनिया भर से सस्टेनेबिलिटी के बारे में खबरें लेकर आते हैं। इस हफ्ते तीन इंस्पायरिंग स्टोरीज क्या है, चलिए जानते हैं।
1: ग्रीन फ्लैश।
0: पहली खबर साउथ अमेरिका से, जहां एक रेयर जैगुअर स्पीशीज को कंजर्वेशन प्रोग्राम ने इंस्टिंक्शन से बचाया। प्रोटेक्टेड एरियाज और एंटी पॉचिंग लॉज की वजह से उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। दूसरी खबर है ऑस्ट्रेलिया से, जहां कोरल रीव्स को सेव करने के लिए आर्टिफिशियल रीव्स बनाए जा रहे हैं, जो मैरीन लाइफ को सपोर्ट करते हैं। तीसरी खबर अफ्रीका से, जहां लोकल कम्युनिटीज ने इनडेंजर्ड राइनोज के लिए सेंचुरीज बनाए हैं और अब उनकी तादाद बढ़ रही है। दीज स्टोरीज प्रूव, जब हम एफर्ट डालते हैं तो नेचर रिकवर कर सकता है। अब बात करते हैं ग्रीन इनोवेशंस स्पॉटलाइट की।
1: ग्रीन इनोवेशन।
0: आज हम फोकस कर रहे हैं एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर, बायो मिमिक्री। ये एक ऐसा तरीका है जहां साइंटिस्ट नेचर से इंस्पिरेशन लेते हैं ताकि सस्टेनेबल सॉल्यूशंस बनाएं। मिसाल के तौर पे एक टीम ने शार्क स्किन से इंस्पायर्ड एक मटेरियल बनाया जो बैक्टीरिया को रेजिस्ट करता है बिना केमिकल्स के। ये हॉस्पिटल्स या पब्लिक स्पेसेस में यूज हो सकता है इन्फेक्शंस कम करके। इजंट दैट अमेजिंग।

0: नेचर के डिजाइन से फ्यूचर को शेप कर रहे हैं। चलिए अब कुछ इको लिविंग टिप्स देते हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए।
1: इको लिविंग टिप्स।
0: सबसे पहले तो अवॉइड हार्मिंग वाइल्ड लाइफ। अगर आप पिकनिक पर जाते हैं तो प्लास्टिक बैग्स या लिटर छोड़ने से बचें। नेटिव प्लांट्स लगाएं अपने गार्डन में जो लोकल बर्ड्स और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करें। सपोर्ट कंजर्वेशन। लोकल वाइल्ड लाइफ इवेंट्स में शामिल हो या डोनेट करें। सिंगल यूज प्लास्टिक से बचें क्योंकि ये हमारे एनिमल्स के लिए डेंजरस होते हैं। स्मॉल चेंजेस बड़ा इम्पैक्ट।
1: वॉइसेस ऑफ द प्लैनेट।
0: अब वक्त आ गया है हमारे वॉइसेस ऑफ द प्लैनेट का और आज हम जो आवाज सुनेंगे ये है इंडोनेशियन साइंटिस्ट और इनका नाम है डैनियल मोरडियर्सो। तो चलिए सुनते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये क्या कहते हैं।
2: Mangrove is one of the important ecosystem which is undergoing high pressure because of deforestation for infrastructure development, shrimp farm development and things like that. Globally, the area of mangrove is decreasing. We have less than 15 million hectares globally and it's decreasing almost half in the past 30 years or so. So I think globally the negotiator need to look at this instead of country by country, but in global term it's very important.
0: जो लिसनर्स अभी आपने सुनी इनकी आवाज और ये एक बहुत ही यंग एक्टिविस्ट हैं जो हमें डेफिनेटली इंस्पायर करते हैं और आप भी इसी तरह से इंस्पायर होके अपना हिस्सा डाल सकते हैं। अब हमारा टेक अवे चैलेंज। इस हफ्ते हम आपको चैलेंज देते हैं।
1: वीकली चैलेंज।
0: गो वन वीक विदाउट सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल्स स्ट्रॉ या प्लास्टिक बैग्स अवॉइड करें। Use reusable items instead. अगले हफ्ते हमें बताएं कि आपने ये चैलेंज कैसे पूरा किया। WhatsApp करें 666-22-107 पर या सोशल मीडिया @FM107 कतर पे शेयर करें। Let's make it fun and sustainable. इसी के साथ listeners, शुक्रिया for joining us today on Sustain the Future. अगले हफ्ते हम बात करेंगे ग्रीन ट्रांसपोर्ट मूविंग विदाउट पोल्यूटिंग के बारे में जहां हम डिस्कस करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक कार्स और साइकिलिंग के बेनिफिट्स। स्टे ट्यून्ड ऑन FM 107। फॉलो अस एट FM 107 कतर और मैसेजेस भेजें 666-22-107 पर। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। सी यू नेक्स्ट वीक। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।
1: सस्टेन द फ्यूचर।
3: आपने सुना हमें ऑन एयर। नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
4: बस बहुत हो गया रूटीन। नीड एन एस्केप। एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ क्योंकि आ गया है एस्केप रूम। द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एस प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं ट्रिकी वर्ड प्ले है। बोरिंग मीटिंग्स नहीं ब्रेन टीजिंग रिडल्स है जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
5: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi.
6: Are you ready? Friday, 9 p.m. लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको।
7: टॉप 10 काउंटडाउन।
6: सबसे जबरदस्त गाने लेटेस्ट हिट्स और

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेज और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग. तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन एफ एम 107 दिल से देसी.
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
2: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब. सुनिए हदीब टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107. एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीद सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी. स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीद, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम. हदीद टू हैबिट, हदीद दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए.
3: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी.

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa। घर, ऑफिस और हमारा वजूद सब संभाल कर रख लेने की ताकत और कुछ कर गुजरने की हिम्मत ख्वातीन में कुदरती है, तो इसलिए हम ला रहे हैं एक प्लेटफॉर्म शोकेस करने के लिए ऐसी ही इंस्पायरिंग वुमेन को। तो ट्यून इन कीजिए इंस्पायरिंग वुमेन विद आरजे नाजिया हर वेंसडे 5 बजे से 6 बजे तक, और सुनिए उनके सफर को जो प्रूफ करती है कि पैशन और डेडिकेशन से कुछ भी पॉसिबल है।

0: before, so you can take care of your children and your family.
1: Very well said. Beautiful message.
0: Thank you.
1: Thank you, Rania. Thank you for taking out this time and sharing amazing insights and the resources, the tips and the practices with us. Thank you so much.
0: It's my pleasure. Thank you for having me.
1: Thank you once again. दोस्तों इसी के साथ अब वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का. इंशाल्लाह नए एपिसोड में नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे. तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए. खुश रहिए. सुन 3FM 107 दिल से देसी.

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
2: Are you ready? Friday 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको. Top 10 countdown. सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आपके फेवरेट ट्रैक्स एक ही जगह पर.

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग. तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी. दोस्तों हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ई गेट सर्विस सफर करने वालों के लिए एक मॉडर्न और फास्ट फैसिलिटी फराहम करती है. इस सिस्टम के जरिए आपको लंबी लाइंस में वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती बल्कि आप अपने पासपोर्ट आईडी कार्ड या कतर डिजिटल आईडी एप्लीकेशन से यूज करके ट्रेवल प्रोसीजर्स कुछ ही सेकंड्स में कंप्लीट कर सकते हैं. ये फैसिलिटी सिर्फ सिटीजन्स और रेसिडेंट्स ही नहीं बल्कि उन बच्चों के लिए भी अवेलेबल है जिनकी हाइट 130 सेंटीमीटर से ज्यादा है. साथ ही व्हीलचेयर्स यूजर्स सीनियर सिटीजन्स और पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी इस सर्विस का आसानी से फायदा उठा सकते हैं. इस सर्विस का मकसद सफर करने वालों के लिए प्रोसेस को ज्यादा कन्वीनियंट क्विक और यूजर फ्रेंडली बनाना है. वजारत दाखिला का कहना है कि ई गेट सर्विस की वजह से एयरपोर्ट पर भीड़ कम होती है क्यूज छोटी होती हैं और हर एक मुसाफिर का एक्सपीरियंस स्मूथ और स्ट्रेस फ्री बन जाता है. FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है. सेफ रहें और खुश रहें.
1: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
0: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
1: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360. जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में.
0: हर मंडे सुबह 10 बजे से आज नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107
1: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ.
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: Absolute Cinema.
3: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं. बट डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा. अस्सलाम वालेकुम, FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का. हर हफ्ते एक ऐसी मूवी के बारे में हम बात करते हैं जिसके बारे में आपको सोचना और समझना चाहिए देखने से पहले. वेल, अगर आपने FM 107 पे ये रिव्यू सुन लिया तो आपको पता चल जाएगा कि मूवी देखनी है या इग्नोर करनी है, अपने पैसे बचाने हैं. वेल, इस मूवी ने काफी धमाल मचाया था एक वक्त पे, और इस हफ्ते जिस मूवी का रिव्यू करने जा रहे हैं वो धमाल तो मचा चुकी है, लेकिन क्या इतना धमाल मचाया है कि वो लॉन्ग टर्म में और धमाल मचा पाएगी?
4: अपने एकदम ठीक सामने देखें, व्हील के साइड में एक रेड बटन है.
5: दबा दिया?
4: नहीं दबाना था.
3: Well, ये तो आज का रिव्यू देखने के बाद और मूवी पर आपके डिसाइड करने के बाद ही तय होगा. तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का मूवी रिव्यू, और आप सुन रहे हैं रिव्यू ऑफ द वीक. तो दोस्तों, मेरा नाम है फजील और इस हफ्ते हम बात करने वाले हैं धमाल 4 मूवी के बारे में. और ये एक ऐसी मूवी है जो 2007 में जब पहली मूवी आई थी इसने इतना धमाल मचाया था कि उसके मीम्स आज तक रेलेवेंट है, आज तक लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, और इसके बाद जितनी मूवीज आई उसके भी मीम अभी तक बन रहे हैं. तो ये धमाल 4 मूवी का जो रिव्यू है जब आप आज सुनेंगे तो फिर मूवी देखने के बाद डिसाइड होगा कि इसका रिव्यू 2026 के बाद क्या 2040, 45 या 37, 38 तक रिलेवेंट रहेगा या नहीं. ये तो मूवी पर डिपेंड करता है कि कैसी मूवी चलती है और क्या उतनी हंसी, क्या उतनी मजेदार ये मूवी है. तो सबसे पहले हम मूड के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस मूवी का मूड क्या है. धमाल 4 मूवी का जो मूड है वो बड़ा ही लाजवाब कहा जा सकता है.
6: डांसिंग के खजाने का एड्रेस जरा जोर से बोले बे. किसी से लिया हुआ उधार है जो भूल जाए. ये तो गया.
7: ये भी गया.
6: कौन?
7: जिसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था.
3: धमाल 4 एक ऐसी मूवी है दोस्तों जो आपको

0: पूरी तरह अपना दिमाग थिएटर के बाहर रखने पर मजबूर कर देगी। बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, सीधी सी बात तो पहले यही है। इस बार फिल्म का मूड बहुत ज्यादा लाउड, ओवर द टॉप और केओटिक है। अगर आप ओरिजिनल धमाल 2007 वाला सटल और स्मार्ट ह्यूमर ढूंढ रहे हैं तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा, पर अगर आपको स्लैपस्टिक माइंडलेस कॉमेडी पसंद है तो ये एक टाइम पास फैमिली वॉच बन सकती है। फिल्म में फिर से वही पुराना खजाना ढूंढने का फॉर्मूला यूज किया गया है, मतलब 2007 के बाद 2026 में 2021 साल में आप कुछ चेंज कर सकते थे, लेकिन पता नहीं डायरेक्टर को समझ आया होगा कि यार वो पुराना ही वाला लेकर चलते हो, क्योंकि 2007 वाली जनता बड़ी हो गई है, उसको शायद इतना याद हो या ना हो। यार आप कैसी बात करते हैं, हमें 90s के गाने याद है और आज भी हम 90s की मूवीज को देखा करते हैं, तो 2007 के बाद अब हमें सब चीजें याद है। अब ऐसा भी नहीं है कि 2007 की जनता जो है 20 साल की हो गई तो उसको फिर यही दिखा दो, है ना। 2005-2004 की जनता जो है 3 साल की रही होगी और उसको अभी से मूवी का बड़ा शौक आ गया है और उसी जनता के लिए ये मूवी बना दो। लेकिन ये वही है कि यार सबके पास से होते हुए ये मूवी आ चुकी है तो ये पुरानी लगेगी, बट जहां सभी कैरेक्टर्स एक दूसरे के आगे निकलने की होड़ में पागलपन की सारी हदें पार कर जाते हैं जब उनको खजाना ढूंढना होता है।
1: अरे खजाने का नक्शा मिल गया।
0: वैसे इस मूवी को आगे बढ़ाते हुए कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा लेजी राइटिंग जैसी लगती है। कुछ सीन्स में पुरानी यादें ताजा होती हैं जब अरशद वारसी यानी कि आदि और जावेद जाफरी यानी कि मानव स्क्रीन पर आते हैं, पर ओवरऑल मूड बहुत ज्यादा लाउड और थोड़ा थका देने वाला लगता है क्योंकि स्क्रिप्ट में नए जोक्स की बहुत ज्यादा कमी है। दोस्तों इस मूवी की हाइप जो है वो बड़ी लाजवाब थी, लेकिन राइटिंग जो है इतनी वीक है कि अब इतनी हाइप बनी रहे ये मुमकिन नहीं है। रिलीज से पहले धमाल 4 को लेकर मार्केट में काफी तगड़ा हाइप था क्योंकि अजय देवगन, रितेश देशमुख, संजय मिश्रा ये ऐसे जबरदस्त एक्टर थे जिनकी कॉमेडी टाइमिंग भी अच्छी है, जिनके पंच लाइंस भी बहुत बेहतरीन तरीके से निकलती हैं, बढ़िया कॉमेडी एक्टर्स एक साथ आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि धमाल 4 एक बार फिर से धमाल मचाएगी। फैन पेजेस, सोशल मीडिया पर लोग उम्मीद कर रहे थे कि इस बार मीम मटेरियल का डबल डोज मिलेगा, है ना। जो मीम आज भी इस्तेमाल होता है 2007 की मूवी से वो 2040 तक, मतलब मीम समाज बड़ा खुश हो गया था। अनफॉर्चुनेटली रिलीज के बाद का हाइप थोड़ा ठंडा पड़ गया। क्रिटिक्स और ऑडियंस का कहना है कि फिल्म ने नॉस्टैल्जिया बेचने की कोशिश तो की है पर इसका वीएफएक्स और राइटिंग बहुत कमजोर है। ट्रेलर में जो अच्छे जोक्स थे बस वही फिल्म में बेस्ट लगते हैं। रवि किशन का पायरेट अवतार और उनका स्वैग जरूर थोड़ा ट्रेंड कर रहा है, पर वीक स्क्रीन प्ले की वजह से मूवी पहले पार्ट जैसा कल्ट स्टेटस हैंडल नहीं कर पा रही है। वैसे दोस्तों मेरा यह मानना है, क्रिटिक्स अपना अपना हिसाब लगाते हैं, मेरा अपना हिसाब यह है कि यह मूवी बनाई गई है 2004, 2003, 2002 के बच्चों के लिए जो अब 22, 23, 24, 20, 18, 25 साल के हैं, उनके लिए वही पुराने जोक्स लाकर रख दो। मूवीज पर पैसे वही खर्च कर रहे हैं, वही एक टीनेजर पर खर्च करने वाला या टीनेजर पर मार्केटिंग करने वाली टैक्टिक्स, जिसके वजह से पैसे कमाई कर ली जाए, कुछ राइटिंग करके नया कर दें, कुछ अनोखा कर दें, कुछ अलग से क्रिएटिविटी डाल दें। वो डायरेक्टर का विजन नहीं रहा, मुझे डायरेक्टर के विजन पर शक होने लगा, इसीलिए फिल्म की स्टार रेटिंग बहुत मुतासिर हुई। ओवरऑल मैं इसे 5 में से 2.5 स्टार दूंगा। एक्टिंग के मामले में अगर हम बात करें तो थोड़ा अलग है मामला। एक्टिंग में 5 में 3.5 दिया जा सकता है, एक्टर्स ने अपनी तरफ से पूरी जान लगाई है। रितेश देशमुख की बात कर ले, उनका भोजपुरी एक्सेंट, संजय मिश्रा का ब्रो बोलने वाला स्टाइल कुछ जगह हंसाता है, अरशद और जावेद की जोड़ी हमेशा की तरह क्यूट लगती है, मजेदार लगती है, इंटरेस्टिंग है, ये क्रिएटिव है, ये पार्ट क्रिएटिव है जो कि ऑब्वियसली 2007 से यहां पर इसे इंडल्ज कर दिया गया है, ठांस दिया गया है, लेकिन एक्टिंग अच्छी हुई है तो इसलिए 5 में से 3.5 स्टार।
2: डांसिंग के खजाने का एड्रेस जरा जोर से बोले बे, किसी से लिया हुआ उधार है जो भूल जाए। ये तो गया,
3: ये भी गया,
2: कौन?
0: अब आते हैं डायरेक्शन और वीएफएक्स। 5 में से 1.5 डायरेक्शन और वीएफएक्स को। इंद्र कुमार का डायरेक्शन इस बार काफी पुराना लगता है। फिल्म का सीजीआई वीएफएक्स बिल्कुल सस्ते पेंट जैसा नकली फील होता है, जो मजा जो है वो खराब कर देता है।

0: सोचिए यार, घर को आपने खूबसूरत बनाया, लग्जरी बनाया है, नए जमाने की आपने ब्रांडिंग या कहें नए जमाने की आपने डिजाइन बनवाई है, आपने आर्किटेक्ट का इस्तेमाल किया है, पेंटिंग आपने चूने से करवा दिया, यार नहीं मजा है, तो वो वाली चीजें हैं। डायरेक्शन ऑफ वीएफएक्स बहुत ही सस्ता और आउटडेटेड है। स्टोरी और स्क्रिप्ट में 5 में से 1, मतलब डायरेक्शन इससे ज्यादा बेहतर था। स्टोरी और स्क्रिप्ट एकदम ही बेकार। कंटेंट बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड यानी कि खिंचा हुआ है और बॉडी शेमिंग जैसे पुराने रिग्रेसिव जोक्स पर हंसाने की कोशिश की गई है जो बिल्कुल काम नहीं करती। ये फिल्म सिर्फ उन लोगों के लिए एक बार देखने लायक है जो बिना किसी लॉजिक के बस हल्की फुल्की पॉपकॉर्न कॉमेडी एंजॉय करते हैं, जो मतलब फैमिली इंटरटेनमेंट है ना। अगर आप कुछ नया देखने जा रहे हैं या फिर जैसा मुझे लगता है कि ये 2002 से 2007 या 8 या 9 या 10 की जो पैदाइश वाले बच्चे हैं उनके लिए बनाई जा रही है, ये तो मतलब सीरियसली अब तो उनका भी ह्यूमर बहुत अच्छा हो गया ना। आप सोचिए 2007 वाले बच्चों का ह्यूमर ऐसा थोड़ी 2026 में वैसा रहेगा जैसा हम लोग का ह्यूमर था। उनका तो और ज्यादा बेहतरीन ह्यूमर हो गया, वो और ज्यादा टैलेंटेड हो गए, उनको अलग तरह के जोक चाहिए भाई, उनके ऑब्जर्वेशन स्किल्स हम सबसे कहीं ज्यादा बेहतरीन हो गए। तो ऐसे में यार आपको कुछ तो नया और कुछ तो चेंजेस वाले काम करने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ओवरऑल ये फिल्म 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग लेकर जा रही है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं जरा मूवी के बाकी चीजों के बारे में, जैसे कि मूवी का फन फैक्ट क्या रहा, प्रोडक्शन में डायरेक्टर का विजन क्या था, इस फिल्म को बनाने के लिए किन लोकेशंस का यूज किया गया, एक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन क्या रहा, सिनेमाटोग्राफी और साउंड पर भी जरा नजर डालते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे फन फैक्ट अबाउट दिस मूवी। धमाल 4 के प्रोडक्शन को लेकर बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा और मुश्किल काम था जिसे लगभग 200 करोड़ के मेगा बजट के साथ हैंडल किया गया। इस मूवी के प्रोडक्शन से जुड़े एक बहुत ही हैरान करने वाला किस्सा इसके डेंजरस क्लिप हैंगर सीक्वेंस से आता है। जब ट्रेलर रिलीज हुआ तो लोगों को लगा कि ये सीन पूरी तरह से VFX और ग्रीन स्क्रीन पर बनाया गया है, पर अरशद वारसी ने ट्रेलर लॉन्च पर रिवील किया कि ये सीन किसी स्टूडियो में नहीं बल्कि एक रियल और बहुत ऊंची लाइव लोकेशन पर शॉट किया गया था। इस पूरे सीक्वेंस के लिए पहले 15 से 20 दिन का लंबा स्केड्यूल प्लान किया गया था, पर अजय देवगन ने अपनी एक्शन एक्सपर्टीज का यूज करके इस पूरे काम को सिर्फ 3 दिन में रैप अप कर दिया, जिसने पूरी प्रोडक्शन टीम को हैरान कर दिया था। तो इस मूवी को जब आप देखेंगे तो एक सीन है जिसमें क्लिफ का इस्तेमाल या कहें बहुत पहाड़ी का सीक्वेंस है, एक डेंजरस क्लिफ हैंगर सीक्वेंस है, वो आपको समझ में आएगा जब आप मूवी देखेंगे। फिर पूरी डिटेल में चले जाएंगे तो फिर क्या मजा है आपको मूवी देखने का। बजट के मामले में भी प्रोडक्शन टीम को काफी समझदारी से काम लेना पड़ा क्योंकि फिल्म की स्टार कास्ट बहुत ज्यादा बड़ी थी। अजय देवगन इस फिल्म के सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर थे जिन्होंने गुड्डू के रोल के लिए 40 करोड़ चार्ज किए थे। प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने अजय देवगन की तारीफ करते हुए बताया कि वो एक काफी प्रोड्यूसर फ्रेंडली एक्टर हैं और उन्होंने फिल्म के बढ़ते प्रोडक्शन कॉस्ट को मैनेज करने के लिए अपनी फीस में खुद बड़ा कट लिया। 40 करोड़ के बाद भी मुझे तो नहीं लगता ये कट है। लेकिन फिर भी विजुअल स्केल पर अगर हम देखें, फिल्म की विजुअल स्केल पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। उनके अलावा रितेश देशमुख, अरशद, रवि किशन ने इस फिल्म के लिए 10-10 करोड़ लिए। फिल्म को रिलीज से ठीक पहले सेंसरशिप का भी सामना करना पड़ा जहां CBFC ने 2 ऑब्सीन हैंड जेस्चर्स को हटाने का ऑर्डर दिया और लगभग 7 अब्यूजिव वर्ड्स को बदलने के लिए कहा। इसके अलावा बॉक्स ऑफिस पर वेलकम टू द जंगल के साथ बड़े क्लैश से बचाने के लिए मेकर्स ने स्ट्रेटेजिकली इसकी रिलीज डेट को 3 जुलाई से बदलकर 10 जुलाई कर दिया ताकि फिल्म को पूरे इंडिया में ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन्स मिल सके। अब बात कर लेते हैं डायरेक्टर के विजन को लेकर। बड़े पुराने डायरेक्टर हैं इंद्र कुमार, बॉलीवुड कॉमेडी को लेकर हमेशा से एक बहुत ही क्लियर और लाउड विजन रहा है। धमाल 4 के लिए उनका मेन गोल एक ऐसी ब्रेनलेस केओस और स्लैपस्टिक कॉमेडी क्रिएट करना था जिसे पूरी फैमिली एक साथ बैठकर एंजॉय कर सके। वैसे आजकल दौर चल रहा है स्लैपस्टिक कॉमेडी का।
1: उंगली तो किस्मत ने किया हमारी, इतना भारी सजा दे दिया, इतना भारी।
0: अपना इंटरव्यू जब दे रहे थे इंद्र कुमार तो हमेशा इस बात पर वो जोर देते हैं और दिया इस बार भी कि इस फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी ताकत है इसका एंसेंबल कास्ट, उनका मानना है कि आजकल की स्ट्रेस भरी लाइफ में ऑडियंस थिएटर में सिर्फ इसलिए आती है ताकि वो कुछ देर के लिए अपना दिमाग बंद करके खुलकर हंस सके, और उनका ये फॉर्मूला पहले भी बहुत बार चल चुका है। लेकिन ऑब्वियसली जैसे ऐसे दिन बदलते हैं, जैसे ऐसे साल बदलते हैं, जैसे ऐसे दशक बदलते हैं, तो ह्यूमर भी बदलता है। लेकिन अगर हम देखें तो वो जो पुराना ह्यूमर था इस बार से उस तरह से कनेक्ट नहीं कर पाया। ये ओल्ड स्कूल कॉमेडी विजन मॉडर्न फिल्म क्रिटिक्स को बिल्कुल रास भी नहीं आया। पारितोष पेंटर, वेद प्रकाश और बंटी राठौड़ ने मिलकर जो स्क्रीन प्ले लिखा है वो एक लंबी कहानी लगने के बजाय अलग अलग कॉमेडी स्केचेस का एक झुंड लगता है। इंद्र कुमार का डायरेक्शन इस सिंपल लॉजिक पर चलता है कि अगर स्क्रीन पर बहुत सारे कैरेक्टर्स एक साथ चिल्लाएंगे, हल्ला मचाएंगे, शोर करेंगे और एक दूसरे का मजाक उड़ाएंगे तो ऑडियंस को अपने आप हंसी आ जाएगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात कर लेंगे एक शॉर्ट स्पॉइलर फ्री प्लॉट के बारे में कि क्या है इस मूवी का प्लॉट, एंड देन वी गोना टॉक अबाउट क्रिटिक्स का क्या कहना है, भाई आपको मूवी देखनी है या नहीं देखनी है। डिस्कशन कर लेंगे परफॉर्मेंस पे कि परफॉर्मेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि देखी जाए या फिर छोड़ दिया जाए। वेल, इस मूवी को सिर्फ इसलिए आई गेस देखना चाहिए कि इसमें स्टार बहुत हैं और पहला हाफ अच्छा है। ठीक है, एक फिलहाल छोटा सा ब्रेक, एफएम 107 पे वापस कुछ ही देर में। दिल से देसी
2: एब्सोल्यूट सिनेमा,
3: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। बट डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है एफएम 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
4: हम भी वो हैं जो कभी

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दोस्तों, ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए इनके सोर्स को वेरीफाई करके अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं। याद रखिए, आपकी आगाही आपकी हिफाजत है। फेक एडवर्टाइजमेंट के जरिए फ्रॉड का शिकार होने से बचिए। अपनी हिफाजत के लिए हमेशा ऑफर्स और प्रोमोशंस के जायज होने की तस्दीक करें। आमतौर पे कम कीमत पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज को लेने के लिए ऑनलाइन प्रोमोशंस किए जाते हैं। FM 107 आपसे कहता है कि अगर आपको किसी ऑनलाइन फ्रॉड्स पर शक है तो इकोनॉमिक एंड साइबर क्राइम्स कॉम्बेटिंग डिपार्टमेंट से राब्ता करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: Absolute Cinema.
3: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
4: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो चल रहा है रिव्यू ऑफ द वीक। इसके अलावा फिल्म में कैरेक्टर पारो यानी कि अंजलि आनंद पर लिखे गए फैट शेमिंग जोक्स को लेकर काफी बवाल भी है। इंद्र कुमार ने इस पर अपना विजन क्लियर करते हुए कहा कि ये जोक्स कहानी के स्क्रीन प्ले का हिस्सा है और उन्हें गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए। भले ही लोग कहें कि उनका कॉमेडी सेंस 2000 के एरा में अटका हुआ है, पर इंद्र कुमार का सिंगल माइंडेड विजन हमेशा से वही आइकॉनिक ट्रेजर हंट फॉर्मूला को नए तरीके से पेश करना था, जहां दिमाग से ज्यादा फिजिकल गैग्स और हल्ला गुल्ला में होता।

0: तो ऐसा कुछ नहीं है कि इस फिल्म में आपको कुछ नया मिलेगा, तो इसीलिए 5 से 2.5 स्टार है। अब बात कर लेते हैं फिल्मिंग लोकेशन के बारे में। दोस्तों धमाल 4 का जो जंगल ट्रैक और वाइल्ड एडवेंचर वाला लुक है उसे स्क्रीन पर लाने में इसकी फिल्मिंग लोकेशन का बहुत बड़ा हाथ है। इस फिल्म की शूटिंग महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में की गई है जहां रियल लोकेशंस और स्टूडियो सेट्स का एक बहुत बड़ा मिक्स देखने को मिलता है। फिल्म के शुरुआत के और कुछ आउटडोर कॉमेडी सीन्स की शूटिंग मुंबई के पास मड आइलैंड पर की गई है। मड आइलैंड के खुले बीचेस और गांव वाले सेटअप्स ने फिल्म के केओटिक कैरेक्टर्स को एक बहुत ही फ्रेश और सुंदर बैकड्रॉप दिया। जब बात फिल्म के हाई स्टेक्स चेज और एडवेंचर्स सीक्वेंसेस की हो तो पूरी कास्ट और क्रू डीप माले घाट के पहाड़ों में शिफ्ट हो गई। वेस्टर्न घाट्स में बसा ये हिल स्टेशन अपने घने कोहरे, गहरी खाइयों और ग्रीन लैंडस्केप के लिए जाना जाता है। माले घाट के खतरनाक और घुमावदार रास्तों ने फिल्म के कॉमेडी सीन्स में एक रियल टेंशन भी ऐड की है, जहां जब कैरेक्टर्स जंगल में फंसते हैं तो ये पहाड़ से गिरते भी हैं, वो देखने में सच में डर और एडवेंचर का फील होता है। तो एक चीज कही जा सकती है कि इस फिल्म को बनाने के लिए रेकी तो की गई है, है ना, कि कौन सी लोकेशन अच्छी रहेगी, किस जगह पे फनी शूट किया जा सकता है। रियल लोकेशन के अलावा फिल्म के गाने और हैवी इंडोर स्टंट्स को शूट करने के लिए सत्य ड्रीम स्टूडियोज वसई विरार में, जो मुंबई में मौजूद है, उसका यूज किया गया है। इस बड़े स्टूडियो फैसिलिटी के अंदर बहुत ही बड़ा और कलरफुल इंटीरियर सेट बनाया गया था जहां एक्टर्स बिना किसी टेंशन के स्लैपस्टिक स्टंट्स परफॉर्म कर सके। फिल्म का सबसे बड़ा प्रमोशनल सॉन्ग चटनी भी इसी सत्य ड्रीम स्टूडियोज के अंदर कस्टम बिल्ड सेट पर शूट किया गया था। रियल नेचर और पॉलिश्ड स्टूडियो का ये कॉम्बिनेशन फिल्म को एक बड़ा कमर्शियल लुक देता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। धमाल 4 के लिए जहां फिल्म के पुराने एक्टर्स ने अपने उसी सेफ जोन में काम किया, वहीं कुछ बड़े एक्टर्स ने इंद्र कुमार के इस पागलपन से भरी दुनिया में फिट होने के लिए काफी बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस दिखाए। सबसे पहले बात करते हैं अजय देवगन की, जिन्होंने गुड्डू के रोल में अपना हमेशा वाला इंटेंस और एंग्री एक्शन हीरो अवतार छोड़कर एक बहुत ही लाउड और कार्टूनिश कैरेक्टर प्ले किया है। वो फिल्म में एक स्वैश बकलिंग पर बेवकूफ एडवेंचर बने हैं और उनका स्पीड बोट पर होने वाला एंट्री सीन उनकी अपनी ही सीरियस फिल्मों का मजाक उड़ाता है। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन अगर लोगों की अच्छी है तो वो इस सीन में या अजय देवगन के सीन में उनको हंसी जरूर आएगी। रितेश देशमुख के बारे में बात करें तो उन्होंने इस फिल्म के लिए एक अलग ही वोकल ट्रांसफॉर्मेशन लिया है, जहां उन्होंने देश बंधु लल्लन रॉय के रोल के लिए एक बिल्कुल देसी और टाइट भोजपुरी एक्सेंट अपनाया।
1: पिचक गया ये।
2: बचाओ।
3: अरे हम हैं ना जी।
1: अरे तुम इसे तो बचना है।
0: रितेश ने इस लैंग्वेज का यूज अपनी फिजिकल कॉमेडी को और ऊपर ले जाने के लिए किया है, जहां उनका कैरेक्टर एक लालच से भरा इंसान है जो एक एक्स्ट्रा लार्ज रिच लाइफस्टाइल का सपना देखता है। इसके साथ ही संजय मिश्रा ने जॉनी के रोल में अपना कॉमेडी स्टाइल बदला है, जहां वो आजकल के यूथ से कनेक्ट करने के लिए हर दूसरी लाइन में मॉडर्न इंटरनेट स्लैंग ब्रो का यूज करते हैं। यो ब्रो ब्रो का इस्तेमाल करते हैं। पर सबसे बड़ा और शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन का, जिन्होंने अधूरा नाम के एक बहुत ही अजीब पायरेट का लुक लिया। वाइल्ड कॉस्ट्यूम्स और क्रेजी एक्सप्रेशंस के साथ रवि किशन इस फिल्म के सबसे बढ़िया और एनर्जेटिक सरप्राइज बनकर सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ अरशद वारसी और जावेद जाफरी ने अपने पुराने आइकॉनिक लुक और स्टाइल को बिल्कुल वैसे ही रखा है। जावेद जाफरी ने आज भी मानव के उस भोलेपन और नादानी को इतने सालों बाद भी स्क्रीन पर बिल्कुल जिंदा रखा है। बहुत ही लाजवाब काम। इसीलिए जब एक्टर्स को रेटिंग देने की बात आई तो 5 में से 3.5 मिलता है। दोस्तों अब कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी और साउंड के बारे में। टेक्निकल साइड पर देखा जाए तो धमाल 4 मॉडर्न बॉलीवुड की एक बहुत ही ब्राइट और लाउड कमर्शियल फिल्म है। इसकी सिनेमाटोग्राफी को इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी ने हैंडल किया है। उन्होंने फिल्म के लिए एक बहुत ही ब्राइट और हाईली सैचुरेटेड कलर पैलेट चुना, जहां हर फ्रेम इतना

ना ओवरलिट लगता है ताकि एक्टर्स के फनी फेशियल एक्सप्रेशंस और जंगल का माहौल बिल्कुल साफ दिखे। हालांकि मालेघाट के रियल लोकेशंस और क्लिफ सीन्स में उनका कैमरा वर्क स्केल दिखाने में कामयाब रहा, पर फिल्म में यूज किया गया खराब सीजीआई और ग्रीन स्क्रीन का जो काम है इस विजुअल को और ज्यादा खराब कर देता है, मजा वो नहीं रह जाता। जहां एक्टर्स कई बार बिल्कुल नकली बैकग्राउंड के सामने खड़े लगते साफ नजर आता है मूवी में और बड़े पर्दे पर और क्लियर हो जाता है। साउंड डिजाइन के मामले में ये फिल्म बहुत ही ज्यादा लाउड और नॉन स्टॉप है। बैकग्राउंड स्कोर का जिम्मा अमर मोहिले ने संभाला है और उन्होंने स्लैपस्टिक साउंड इफेक्ट्स, कार्टूनी नॉइजेस और अजीब इंस्ट्रूमेंटल साउंड्स का इतना ज्यादा यूज किया है ताकि ऑडियंस को समझ आए कि उन्हें किस सीन पर कब हंसना है। फिल्म में एक पल की भी शांति नहीं है, हर कोने में बस आवाजें और क्रैशिंग साउंड्स भरी पड़ी हैं। इसलिए फिल्म में वो मजा नहीं है। फिल्म का म्यूजिक एल्बम नए गाने बनाने के बजाय इंटरनेट पर चल रहे वायरल हिट्स को रीयूज करने पर फोकस करता है। साउंड ट्रैक में संजू राठौड़ का सुपरहिट

0: और नील कमल सिंह का फोक पॉप ट्रैक गिल्लौरी बिना चटनी शामिल किया गया है। भले ही ये गाने थिएटर में लोगों को थोड़ा नचाने और प्रोमो वीडियोस में अच्छे लगते हैं, पर क्रिटिक्स का मानना है कि ये गाने फिल्म की मेन कहानी में बिल्कुल फिट नहीं बैठते हैं, बस थोपे जा रहे हैं। देखिए, ये सब गाने जो है ना, ये छोटे गाने अच्छे लगते हैं जब आप ट्रेलर देखते हैं। और आजकल के, वैसे मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था कि ट्रेलर बड़े अच्छे लगते हैं देखने में, लगता है कि यार ये फिल्म देख लेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, लेकिन वो मज़ा है नहीं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि फिल्म में कुछ नया रंग डाला जाए, वही पुरानी चीज़ें ला कर ना ठूस दिया जाए, तो कुछ तो नया रखें, कुछ तो क्रिएटिविटी हो। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मूवी के शॉर्ट स्पॉइलर फ्री प्लॉट के बारे में। धमाल 4 की कहानी वही पुराने और दिलों पर राज करने वाले आइकॉनिक ट्रेजर हंट फॉर्मूला पर बेस्ड है, यानी कि डब्लू के नीचे एक कोई बड़ा सा खजाना रखा है, बस ऐसा वाला मामला, उसको ढूंढने के लिए सब निकले, जिसे देखकर बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं, नॉस्टैल्जिया हिट हो जाता है हमारे जैसे लोगों का जिनकी पैदाइश 2000 के पहले की है। 2000 के बाद से लेकर 2010 वालों के लिए ये फिल्म नहीं हो सकती है, लेकिन उनके लिए ये ह्यूमर पुराने हो जाएंगे। फिल्म की शुरुआत तब होती है जब एक अजीब और बहुत बड़े खजाने की अफवाह मार्केट में फैल जाती है, जिसके अंदर 100 करोड़ रुपये छुपे होते हैं। ये खबर सुनकर सारे एक्टर्स इकट्ठा होते हैं, सभी लालच से भरे कैरेक्टर्स के कान खड़े हो जाते हैं। अजय देवगन हो, जैसे कि गुड्डू हैं, लल्लन जो कि ऑब्वियसली रितेश देशमुख कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, अरशद वारसी आदि, मानव, ये इकट्ठा हो जाते हैं इस खजाने को सबसे पहले पाने के लिए, एक दूसरे के पीछे पागल हो जाते हैं ये सारे एक्टर्स। इस बार ये पागलपन किसी सिटी के रास्तों पर नहीं, बल्कि एक बेहद खतरनाक और घने जंगल में सेट किया गया है। कहानी एक ऐसी एपिसोडिक रोड ट्रिप बन जाती है, जहां हर कैरेक्टर सिर्फ इस कोशिश में रहता है कि वो कैसे सामने वाले को धोखा देकर आगे निकल सके। वही पुरानी वाली स्क्रिप्ट। जंगल के इस सफर में उनका सामना कई अजीब और क्रेजी लोगों से होता है, जिसमें सबसे बड़ा अट्रैक्शन है एक बेहद अतरंगी पायरेट अधूरा, जिसका नाम है रवि किशन। ऑब्वियसली रवि किशन इस रोल को प्ले करते हैं। फिल्म में कोई फालतू इमोशनल ड्रामा, रोमांस या हैवी सबप्लॉट्स नहीं है, पूरा फोकस सिर्फ वाइल्डर नेट्स के हजार्ड्स और फिजिकल कॉमेडी पर रखा गया है। कैरेक्टर्स कभी जंगली जानवरों के सामने फंसते हैं तो कभी खतरनाक क्लिफ साइड ट्रैप्स में लटक जाते हैं। ये पूरी स्क्रिप्ट इस सिंपल पॉइंट पर चलती है कि कैसे इन चारों दोस्तों की आपस की लड़ाई और दिमाग की कमी उनके अमीर बनने के रास्ते में सबसे बड़ी मुश्किल बन जाती है। नॉट सो यूनिक स्क्रिप्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंसेज अबाउट धमाल 4 के एक्टर्स। धमाल 4 का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट इसकी एक्सपीरियंस्ड और मजबूत कास्ट है, जो कमजोर राइटिंग के बाद भी अपनी सॉलिड कॉमिक टाइमिंग से फिल्म को बचाने की पूरी कोशिश करती है। दोस्तों, इस फिल्म को लेकर क्रिटिक्स का क्या कहना है, ये भी बड़ा जाना जरूरी है। मेन स्ट्रीम फिल्म क्रिटिक्स की तरफ से धमाल 4 को लेकर काफी मिक्स्ड नेगेटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला है, जहां लोगों ने इसे एक थका देने वाली और आउटडेटेड स्लैपस्टिक कॉमेडी बताया। सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म पारितोष पेंटर, वेद प्रकाश और बंटी राठौड़ के लिखे गए फ्रेगमेंटेड स्क्रीन प्ले पर हुआ है। रिव्यूवर्स का कहना है कि ये फिल्म एक पूरी प्रॉपर मूवी लगने के बजाय अलग अलग कॉमेडी स्केच का एक सस्ता कलेक्शन लगता है, जिसे बिना किसी फ्लो के एक साथ जोड़ दिया गया है। फिल्म को इसकी रिग्रेसिव राइटिंग और आउटडेटेड जोक्स के लिए भी काफी सुनना पड़ा। क्रिटिक्स ने पॉइंट आउट किया कि स्क्रिप्ट में कैरेक्टर अंजलि आनंद पर, यानी कि पारो पर लिखे गए फैट शेमिंग जोक्स आज के सिनेमा के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है और बहुत टोन डेफ लगते भी हैं। भले ही डायरेक्टर इंद्र कुमार ने इन जोक्स को स्क्रीन प्ले का एक इनोसेंट कॉन्टेक्स्ट बताकर डिफेंड किया, पर रिव्यूवर्स ऐसे नहीं जाने देते। रिव्यूवर्स का साफ मानना है कि फिल्म में सिर्फ कैरेक्टर्स के चिल्लाने, गाली देने, एक दूसरे पर गिरने पर हंसाने की कोशिश की गई है, लेकिन कुछ नया नहीं है। भले ही डायरेक्टर इंद्र कुमार ने इन जोक्स को स्क्रीन प्ले का बड़ा ही इनोसेंट कॉन्टेक्स्ट बताकर डिफेंड किया, पर रिव्यूअर्स का साफ मानना है कि फिल्म में सिर्फ कैरेक्टर्स के चिल्लाने, उल्टी सीधी बात कहने और एक दूसरे पर गिर जाने से हंसाने की कोशिश की गई है, बस और कुछ नया नहीं है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स को लेकर भी क्रिटिक्स बिल्कुल खुश नहीं दिखे। सुधीर के चौधरी की ब्राइट और कलरफुल सिनेमाटोग्राफी के बावजूद फिल्म का खराब ग्रीन स्क्रीन और सस्ता CGI काम साफ झलकता है, जो जंगल के एडवेंचर को बिल्कुल नकली बना देता है। हालांकि कुछ ट्रेड एनालिस्ट ने फिल्म के बॉक्स ऑफिस और रीवॉच पोटेंशियल को लेकर हल्के पॉजिटिव दिए हैं उनका कहना है कि भले ही फिल्म में कोई आर्टिस्टिक वैल्यू ना हो पर उन लोगों के लिए ये एक परफेक्ट माइंडलेस टाइम पास है जो बिना दिमाग लगाए दो घंटे हंसना चाहते हैं। अब ये लाइन इतनी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है, अब ये लाइन कहने के बाद बताइए जो सच में ऐसा सोचते हैं कि यार चलो एक मूवी देखकर आते हैं जिसमें ज्यादा बस दिमाग ना लगाना पड़े। और क्योंकि क्रिटिक्स ने ये बात कह दी है, अगर आप मूवी देखने गए तो लोग आपको क्या समझेंगे, अरे बगैर दिमाग के देखने जाता है मूवी, तो ये लाइन भी कहने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो ये मूवी इतनी कोई परफेक्ट नहीं है कि इसको दो बार जाकर देखा जाए, वन टाइम वॉच कहा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं वर्डिक्ट के बारे में दोस्तों, कि इस मूवी को देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए। धमाल चार एक प्योर अनअडल्टरेटेड लीव योर ब्रेन्स एट होम स्लैपस्टिक कॉमेडी है, ये तो मानना पड़ेगा। 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग मिली है तो कहना पड़ेगा। अगर आप सिनेमा में लॉजिक, डीप स्टोरी या सेंसिबल ह्यूमर ढूंढ रहे हैं तो ये फिल्म आपके लिए बिल्कुल नहीं है। छोड़ दो भाई, मत जाओ, मैं तो कहता हूँ ऑफिस का काम करो इससे अच्छा। पर अगर आपको फ्रेंचाइजी का वही पुराना लाउड और क्योटिक ट्रेजर हंट फॉर्मूला पसंद है तो ये आपको एक अच्छा माइंडलेस टाइम पास दे सकती है। अच्छा और बुरा क्या है ये बात कर लेते हैं। कास्ट की एनर्जी अच्छी है, उनकी आपस की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, प्लस पॉइंट है। रितेश देशमुख का भोजपुरी एक्सेंट लाजवाब, रवि किशन का पायरेट अवतार जबरदस्त, अरशद वारसी और जावेद जाफरी की जोड़ी नॉस्टैल्जिक फील देगी आपको। ये जो पॉइंट है ना अरशद वारसी और जावेद वाला, ये मजेदार है। बुरा क्या है, फिल्म का सस्ता CGI और VFX। वैसे आप इसके लिए जाते नहीं है, अच्छी कॉमेडी के लिए जाते हैं। ऑल्दो अच्छी कॉमेडी नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी CGI VFX को अगर इग्नोर कर दिया जाए तो देखा जा सकता है, थोड़ा बहुत मूवी एंजॉय तो कर ही सकते हैं फैमिली के साथ। इसके अलावा स्क्रीन प्ले बहुत ही बिखरा हुआ है, स्क्रिप्ट में बॉडी शेमिंग जैसे कुछ रिग्रेसिव और पुराने जोक्स यूज किए गए हैं जो मॉडर्न ऑडियंस को थोड़े अजीब लग सकते हैं। फाइनल अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि ये फिल्म ओरिजिनल धमाल 2007 के क्लासिक लेवल को टच नहीं कर पाती है, पर ये एक ऐसी मासी कमर्शियल फिल्म जरूर है जिसे आप संडे को बिना दिमाग लगाए एक बार देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था रिव्यू ऑफ द वीक इस हफ्ते का, जहां पर हमने बात करी मूवी धमाल 4 के बारे में। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते एक नई मूवी के साथ और इंटरेस्टिंग रिव्यू के साथ। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: था कि इनका रोल काफी बढ़ चुका है। इस पर उन्होंने जवाब ये दिया कि आजकल जो फार्मेसीज है ना, वो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर भी फोकस कर रही हैं। इसमें हेल्थ चेकअप्स है, वेलनेस प्रोडक्ट्स है, विटामिंस है, लाइफस्टाइल एडवाइस है और पेशेंट की काउंसलिंग शामिल है। आपका कहना था कि अगर लोग अपनी हेल्थ का ख्याल अर्ली स्टेज पर ही रखेंगे तो बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं और फार्मेसीज इस प्रोसेस में बहुत मदद देती हैं। फिर उनसे उनके पर्सनल सफर के बारे में मैंने पूछा, जहां आपने बताया कि इस बिजनेस का आगाज कैसे हुआ, किस तरह से उन्होंने अपनी डिग्री इसी फील्ड में हासिल की और इनिशियली किस तरह से एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे उन्होंने अपने करियर का आगाज किया और फिर धीरे धीरे इसी सेक्टर में अपने आप को जब मजबूत कर लिया तो धीरे धीरे खुद का बिजनेस भी लॉन्च किया। उन्होंने बताया कि उनका इंटरेस्ट हमेशा से हेल्थ केयर सेक्टर में था और उन्होंने छोटे से लेवल से अपना सफर स्टार्ट भी किया। शुरुआत में उन्होंने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम किया लेकिन स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और मेहनत से धीरे धीरे अपना बिजनेस जो था वो ग्रो किया। फिर हमने उनके इंस्पिरेशन के हवाले से भी सवाल पूछा, जहां आपने बताया कि शुरू से ही उनका इंटरेस्ट, पैशन और प्रोफेशन एक ही था बस, और साथ में एक चीज ये कि लोगों की खिदमत करना है, उनके लिए हेल्थ जो है वो टॉप प्रायोरिटी है। उनका मानना था हमारे गेस्ट का कि हेल्थ केयर एक ऐसी फील्ड है जहां काम करने से सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि इंसानियत को भी जिंदा रखा जाता है और किसी ना किसी तरह से लोगों की मदद की जाती है। शुरुआती दौर में जरूर चैलेंजेस रहे, जो कि उन्होंने बताया कि हर चीज में चैलेंजेस इनिशियली होते ही हैं, लेकिन जब आपकी टीम स्ट्रॉन्ग हो, जब आपकी टीम के एक पैशनेट टीम हो तो आप आगे बढ़ ही जाते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में लोग अपनी सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें कन्विंस करना और उनका भरोसा जीतना आसान भी नहीं होता, ये भी बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा कॉम्पिटिशन और फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स भी है जो कि चैलेंज बन ही जाते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि कंसिस्टेंसी और ट्रस्ट और कमिटमेंट, ये सारी चीज़ें अगर आप में हैं, डेडिकेशन, तो वो सारे चैलेंजेस को आप आसानी से ओवरकम कर सकते हैं। फिर मैंने ये भी उनसे जानना चाहा कि आप अपना बिजनेस आपने कैसे ग्रो किया, जहाँ पर उन्होंने कहा कि राज जो है वो कंसिस्टेंसी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ट्रस्ट में और पेशेंस में छुपा है। उनका कहना था कि अगर आप कस्टमर्स को बेहतरीन सर्विस और जेन्युइन प्रोडक्ट्स देते हैं तो वो नेचुरली आप पर ट्रस्ट करते हैं और आपका बिजनेस ग्रो करता ही करता है। देखिए, आज के ना इस कॉम्पिटिटिव मार्केट के हवाले से अगर बात की जाए तो ये इंडस्ट्री जो है वो अपने आप में देखने में तो यूनिक है, लेकिन इसके अपने कुछ हिडन चैलेंजेस भी हैं। यहाँ पर कस्टमर का ट्रस्ट ये सबसे इम्पोर्टेंट है और आपने बताया कि बिल्कुल ट्रस्ट के साथ साथ क्वालिटी और अफोर्डेबल प्राइसेस और फिर पर्सनल केयर पे फोकस, ये सारी चीज़ें मिल जाएं तब कहीं जाकर आपका बिजनेस जो है वो सस्टेन करने की पोजीशन में आता है। उनका कहना था कि हर कस्टमर के साथ एक इंडिविजुअल अटेंशन देना उनका मिशन है जो उन्हें दूसरों से भी अलग करता है। वहीं पर हमने टेक्नोलॉजी के बारे में भी पूछा, जहां हमारे गेस्ट ने बताया कि टेक्नोलॉजी के रोल पर अगर बात की जाए तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ने फार्मेसी बिजनेस को बहुत हद तक चेंज किया है। आजकल ऑनलाइन ऑर्डर्स, डिजिटल प्रिस्क्रिप्शंस और ऑटोमेटेड सिस्टम्स ने जो है वो काम को फास्ट और एफिशिएंट बना दिया है। इससे कस्टमर्स को आसानी होती है और बिजनेस ऑपरेशंस भी स्मूथ चलते हैं। वहीं ट्रस्ट के हवाले से अगर बात की जाए तो आपने बताया कि ट्रस्ट जो है वो सेक्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर कस्टमर आप पर ट्रस्ट करता है तो वो बार बार आपके पास आता है और इस ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए वक्त लगता है, पेशेंस चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, ऑनेस्ट एडवाइस चाहिए, सर्टिफाइड मेडिसिन चाहिए और प्रोफेशनल बिहेवियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कहना था एक ट्रस्ट जो है वो एक दिन में नहीं बनता बल्कि ये टाइम के साथ जो है आपकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के बलबूते पर डेवलप होता रहता है। वहीं पर हमने लास्ट में अपने गेस्ट से ये भी जानना चाहा कि मान लीजिए कोई इसी तरह का बिजनेस यहाँ पे कतर में स्टार्ट करना चाहे तो आप उनको क्या इंपॉर्टेंट एडवाइस देना चाहोगे। तो दो चीजें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी जो हमारे गेस्ट ने हाईलाइट की, वो था पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी. और ये एडवाइस मुझे लगता है नॉट दैट जस्ट हम हेल्थ केयर बिजनेस की बात करें वहीं पर एप्लीकेबल है, बल्कि सारे बिजनेसेस पर ये एप्लीकेबल है ही. इसके अलावा जो चीज बहुत और इंपॉर्टेंट हो जाती है वो है प्रॉपर नॉलेज. हमारे गेस्ट ने यह भी हमें बताया कि जो सक्सेस है ना वो फौरन या शॉर्टकट तरीके से आपको नहीं मिलेगी. इसके लिए आपको सब्र और लगन से लगे रहना है, बस लगे रहना कोशिश करते रहना है. वहीं देखिए सूनर या लेटर आपको कामयाबी मिल ही जाएगी, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि उस कामयाबी को आपको किस तरह से सस्टेन करना है. अब फ्यूचर प्लान्स की जब मैंने बात की उनसे तो हमारे गेस्ट ने बताया कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, ब्रांचेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं, बहुत जल्दी इस्टेब्लिश हो भी रही हैं और हो भी जाएंगे और आपको पता भी चलेगा. इसके साथ साथ वो न्यू हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करने का प्लान भी रखते हैं ताकि कस्टमर्स को और बेहतर फैसिलिटीज मिल सके. कस्टमर एक्सपीरियंस के हवाले से सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि पेशेंट को कंफर्टेबल फील हो, उसको वैल्यूड फील हो, उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाए, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो, ट्रेन्ड स्टाफ हो और सर्विसेज काफी क्विक होनी चाहिए. क्योंकि आज का दौर ऐसा है जहां हम सब के पास बीमारी के दौरान तो बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होता. वैसे मैंने एक सवाल और भी इम्पोर्टेंट किया था जो मुझे अभी याद आ रहा है क्वालिटी कंट्रोल के हवाले से. जी हाँ, और इस पर भी हमारे गेस्ट ने बताया कि क्वालिटी कंट्रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है और सर्टिफाइड सप्लायर से मेडिसिन लेते हैं, प्रोडक्ट्स की अथेंटिसिटी हर हाल में इंश्योर की जाती है. ये उनके लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर लोग जो है वो डायरेक्टली उनका ताल्लुक जो है हेल्थ से है, तो किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता. अच्छा, कस्टमर फीडबैक की अगर मैं देखूँ बात करूँ तो हालांकि ये भी सवाल मुझे पूछना चाहिए था, बट आई जस्ट मिस्ड इट. बट मुझे लगता है कि पता नहीं किस तरह से लोग इस फीडबैक को लेते होंगे या कोई देता भी है कि नहीं देता है, बट हाँ अगर सेटिस्फाइड नहीं होता होगा तो जरूर देता होगा. और एक चीज और मुझे यहाँ पर दोस्तों याद आती है, वो है इंडस्ट्री ट्रेंड्स. ये सवाल भी मैंने किया जिस पर हमारे गेस्ट का कहना था कि फ्यूचर में ना डिजिटल हेल्थ केयर और पर्सनलाइज मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट होंगी. ऑनलाइन कंसल्टेशन और होम डिलीवरी सर्विस भी बढ़ रही हैं जो कि इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म भी कर रही हैं. ऐसे में एथिक्स का ख्याल रखना ये भी इम्पॉर्टेंट है. ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी दोनों इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं बिजनेस की ग्रोथ के. एथिकल स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहिए क्योंकि आप हो सकता है थोड़ी देर के लिए कुछ पैसा बना भी लें लेकिन आप अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट और भरोसा जो है ना वो खो बैठते हैं. तो बस पूरे इंटरव्यू में जितनी भी बातें हुई वहां से मुझे एक चीज समझ में आया कि फार्मेसी का जो बिजनेस है जो दिखने में थोड़ा आसान लगता है वो उतना आसान है नहीं. और फिर धीरे धीरे ये अपने तरीके से इवॉल्व भी हो रहा है. आज के दौर में ये एक सेक्टर जो है वो कम्युनिटी हेल्थ के लिए, अवेयरनेस के लिए और प्रिवेंशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है. वहीं पर मिस्टर रहमान ने अपने सफर के जरिए दिखाया बताया कि डेडिकेशन हो, हार्डवर्क हो, क्लियर विजन हो तो आप किसी भी फील्ड में सक्सेस हासिल कर सकते हैं. उन्होंने ये भी इम्फेसाइज किया कि बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने का जरिया नहीं होना चाहिए बल्कि लोगों की लाइफ को बेहतर बनाने का भी जरिया होना चाहिए. सो ऑल टुगेदर मैं ये कह सकती हूँ कि इंटरव्यू एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी देता है कि हेल्थ केयर सेक्टर में काम करना सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. फार्मेसीज आज के दौर में एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं जो कि सोसाइटी की वेलबीइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वहीं मिस्टर रहमान की बातें खास तौर पर उन लोगों के लिए इंस्पायरिंग है जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर हेल्थ केयर फील्ड में आना चाहते हैं. उनका फोकस क्वालिटी, ट्रस्ट और सर्विस पर है जो किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस की बुनियाद है. आखिर में ये कहा जा सकता है कि अगर इसी तरह इनोवेशन, डेडिकेशन और कस्टमर केयर पर फोकस रखी जाए तो फार्मेसी सेक्टर मुस्तकबिल में और भी ज्यादा तरक्की करेगा और कम्युनिटी हेल्थ को बेहतर बनाने में एक स्ट्रॉन्ग रोल अदा करेगा. मुझे लगता है कि आज के लिए दोस्तों बस इतना ही. मुझे यानी नाजिया और शहबाज अंसारी हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी.
1: Qatar's most heard radio station FM 107 दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: दोस्तों, अब कतर में गाड़ी की मिल्कियत ट्रांसफर करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और डिजिटल हो गया है। मैत्राश 2 ऐप के जरिए आप अपनी रजिस्टर्ड व्हीकल की ओनरशिप घर बैठे ट्रांसफर कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी फिजिकल विजिट के। इस डिजिटल सर्विस का फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वैलिड हो, यानी उसका इस्तेमारा एक्सपायर ना हुआ हो। दूसरा, गाड़ी के ऊपर कोई ट्रैफिक वायोलेशन या अनपेड फाइन्स मौजूद ना हो। तीसरा, दोनों पार्टीज सेलर और बायर का मैत्राश ऐप में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और चौथा, बायर के पास वैलिड कतर आईडी हो और वो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी करती हो। प्रोसेस में सेलर यानी जो पार्टी गाड़ी बेच रही है, मैत्राश 2 ऐप के जरिए व्हीकल ओनरशिप ट्रांसफर ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और बायर की डिटेल्स डालकर रिक्वेस्ट भेजते हैं। बायर को ऐप पर नोटिफिकेशन मिलता है जिसे वो एक्सेप्ट करता है। जब दोनों तरफ से तस्दीक हो जाती है तो ओनरशिप इलेक्ट्रॉनिकली

0: ट्रांसफर हो जाती है और नए मालिक के नाम से रिकॉर्ड अपडेट हो जाती है। ये सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जरिए प्रोवाइड की जा रही है, जिसका मकसद ट्रैफिक सर्विसेज को डिजिटलाइज करना, लोगों का वक्त बचाना और पेपर वर्क को कम से कम करना है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिसपे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिसपे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती है। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे।
2: सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको।
5: टॉप 10 काउंटडाउन।
4: सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग. तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
1: Number 1 hits music station. Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: Kabhi bhi aur kahin bhi aap sun sakte hain FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: यू रेडी? लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप टेन काउंटडाउन। Assalamualaikum, मैं दुहा वाला कबीर एफएम 107 पे एंड वेलकम टू टॉप 10 दिस वीक। ये मुझे भारी आवाज में बोलना चाहिए जब भी मैं आता हूँ टॉप 10 दिस वीक, क्योंकि एक तो मेहनत बहुत लगती है भाई इस लिस्ट को बनाने। मैं बाकायदा आपसे सिंपैथी और क्रेडिट दोनों चीजें लेना चाहूंगा, पर मजा बहुत आता है क्योंकि टॉप 10 की लिस्ट बनाते हुए रियलाइज होता है कि मार्केट में गाने कौन कौन से टहल रहे हैं जो एक्चुअली में आते के साथ हिट हो चुके हैं। कुछ ऐसे गाने भी हैं जिन्होंने अपनी जगह को खो दिया है, कुछ गाने ऐसे भी हैं जिन्होंने वायरलिटी पाई है, धीरे धीरे धीरे आपके दिल में उस गाने ने जगह बना ली है, और कुछ गाने ऐसे भी हैं जो जगह धीरे धीरे बना रहे हैं, जिसे कहते हैं ना स्लो बर्न गाने। सो टॉप 10 में ऐसे बहुत सारे गाने पहली पोजीशन बदल चुकी है और बहुत कुछ है इस लिस्ट में जो अब आप सुनने वाले हैं FM 107 पर। सो गेट रेडी, साथ में सोशल मीडिया हैंडल्स FM 107 कतर, FM 107 कतर, इस नाम से हर जगह मौजूद है। सो प्लीज प्लीज प्लीज गेट इन टच विद अस, और मुझे भी ढूंढ सकते हैं दोहा वाला कबीर, एंड बताइएगा कि आपके गाने इस लिस्ट में कौन से हैं जो शामिल होने चाहिए, कौन से गाने आपको लगता है कि नहीं, या कौन से गाने मिस आउट हो गए हमसे। मैं भी तो भाई दुआ के बारह हाथ तो है नहीं, हो सकता है कोई गाना मिस हो गया हो जो वायरल हो। सो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रीम वायरलिटी एंड एवरीथिंग, लेट्स बिगिन टॉप 10 दिस वीक। गाना नंबर 10, 9 और 8 से शुरुआत करेंगे। यहां पर हल्का सा चेंज है, ज्यादा चेंज नहीं है। सो लेट्स बिगिन विद गाना नंबर 10 जो अपनी जगह बनाया हुआ है लगातार ऑन द लिस्ट। ये गाना है बाय स्टीवन बेन और गाने का नाम है सादगी।
1: सादगी तो जरा,
0: इंडियन पॉप इंडस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं बीच में सो गई थी, नींद लेने के लिए चली गई थी, और जब वो हाइबरनेशन में चली गई थी तो उस चक्कर में कई सारे पॉप म्यूजिक का आना, आर्टिस्ट का आना बंद हो चुका था।

0: यू रिमेम्बर दैट एरा जब सोनू निगम जैसे बड़े बड़े आर्टिस्ट एल्बम्स निकाला करते थे एंड शान जैसे लोग अपने एल्बम निकाला करते थे, वो एरा कहां गया? आई एम मिसिंग दैट एरा. एंड अभी जो पॉप इंडस्ट्री है वापस जाग रही है बिकॉज ऑल दीज न्यू पॉप सिंगर्स आर मेकिंग इट वर्कआउट. उसी में से एक है स्टीवन बेन जो निकाल चुके हैं अपना गाना सादगी, जो सादगी के साथ एकदम आलती पालती मार के बैठा हुआ है एट नंबर 10. एंड बहुत ही बढ़िया गाना है, इसमें जैसा नाम वैसा काम भी है. गाना एकदम सादगी के साथ है, गाना एक स्टोरी सुना रहा है और गाना बेहद बेहद खूबसूरत है. आई इमेंसली लव दिस ट्रैक एंड इट स्टेज एट नंबर 10 ऑन द लिस्ट. ऑल्दो आई बिलीव स्टीवन बेन को एक ईपी एल्बम तो निकाल देनी चाहिए आने वाले टाइम. एंड ऑल्सो उनके जो कंटेम्प्रेरी हैं विशाल मिश्रा, उनको भी निकाल लेनी चाहिए. वी स्ट्रॉन्गली नीड एन एल्बम एक पॉप आर्टिस्ट से, बहुत जरूरत है. फिलहाल गाना नंबर 10 सादगी स्टीवन बेन की. अब गाना नंबर 9 पे जाते हैं. ये गाना टिका हुआ है क्योंकि इसकी रिकॉल वैल्यू है, क्योंकि इसमें नॉस्टैल्जिया है, क्योंकि ये गाना एक फेमस मूवी का है. मूवी चले ना चले मूवी की फ्रेंचाइजी बहुत बहुत बड़ी है. गाना वेलकम टू जंगल का है. अब मुझे बताने की जरूरत नहीं क्योंकि वेलकम टू जंगल या वेलकम बोलूं तो आपके जहन में एक गाना जरूर आएगा, वो है उच्चा लंबा कद. हाँ, तो वही गाना है, बस उसका 2.0 वर्जन है. आजकल तो आपको पता ही है 2.0 रीलोडेड रीमिक्स रीडक्स रीमेक, बहुत सारे वर्ड यूज होते हैं. तो ये गाना जो है ऊंचा लंबा कद फ्रॉम वेलकम टू जंगल अभी भी अपने पोजीशन बनाए हुए है एट नंबर 9 ऑन द लिस्ट. मूवी विल बी लॉन्ग गॉन, किसी को याद नहीं रहेगा, मगर ये गाना कुछ दिनों तक और चलेगा एंड आई थिंक ये फिर लिस्ट से उतर सकता है. बट दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. क्या आपको लगता है ऊंचा लंबा कद शुड स्टे ऑन द लिस्ट या हो गया आपका? बताइएगा जरूर 666-22107 पर एंड ऑल्सो सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए. ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ते हैं. So, गाना नंबर 8, ये एक पायदान नीचे आया है जस्ट बिकॉज स्ट्रीमिंग के डेटा को देख के मद्देनजर रखते हुए इसे इस लिस्ट पर मैं लाया हूं. तो ये जो है गाना है आरज़ू. आसिम अजहर साहब ने इसे गाया है एंड वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स. जब ये आए थे एंड ही वाज डूइंग कोलैबोरेशन विद ऑल द रैपर्स एंड आर्टिस्ट, बड़ा मजा आ रहा था भाई. और आ रहा था का मतलब ये नहीं कि अब नहीं आ रहा है. अब आई एम मोर हैप्पी बिकॉज मैंने अंडररेटेड कह के थक चुका था. एंड नाउ आसिम अजहर हैज कम आउट ऑफ हिज शेल एंड प्रोड्यूसिंग हिज ओन म्यूजिक. और उसी में बात है, आसिम अजहर का प्रेजेंस, आसिम अजहर का सेलेक्शन ऑफ songs and lyricism बहुत मायने रखता है. और ये बंदा पॉप में जो काम कर रहा है भाई साहब, we need to understand ऐसे आर्टिस्ट को सबसे ज्यादा फुटेज मिलनी चाहिए. ये वो लोग हैं जो अटेंशन सीकर नहीं भी हो तो इन्हें अटेंशन जबरदस्ती देनी चाहिए कि लो भाई लो अटेंशन लो भर भर के लो. सो आरज़ू इज एट नंबर 8 ऑन द लिस्ट. ऑलराइट, सो जब वापस लौटेंगे तो गाना नंबर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस सीढ़ी पे चढ़ेंगे. लेकिन फिलहाल गाना नंबर 10 सादगी स्टीवन बेन, 9 पे ऊंचा लंबा कद, 8 पे आरज़ू आसिम अजहर की आवाज में. जाना नहीं आपने, मैं दो हवाले कबीर आपके साथ. दिस इज टॉप 10
1: FM 107 टॉप 10 नंबर 10.

0: FM 107 Top 10.
1: वेलकम टू टॉप टेन, मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे एंड टॉप टेन दिस वीक में गाना नंबर 10 9 और 8 आपको बता चुका हूँ, सादगी ऊंचा लंबा कद और आरजू तो लोग जानबूझ के कभी कभार आयन लगा देते हैं। अब है वक्त गाना नंबर 7 6 और 5 का। बड़े ही पेचीदे मामले होते हैं जब मिडिल ऑर्डर की बात आती है, क्योंकि यहाँ पे गाने ज्यादातर टिकते नहीं है, मूव हो जाया करते हैं। जैसे कि गाना जो है 7 से मूव करके 8 पे चला गया है, लेकिन 7 पे आ गया है कहर धमाल 4 का।
2: बॉम्बे तू बॉम्बे तेरा शहर कुड़े कहर कुड़े।
1: पिक्चर के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, इतना ही कहूंगा डोंट वेस्ट योर मनी ऑन द टिकट प्लीज प्लीज। मतलब जहां कॉमेडी की जा सकती थी सिंपल तरीके से, वहां भी डायरेक्टर्स ने कहा अरे बहुत पैसा हमारे पास, बहुत पैसा। प्रोड्यूसर ने सोचा चलो भाई लगा दो सीजीआई कर दो, तो बड़ा ही लेजी किस्म का इन्होंने बनाया है स्क्रीन प्ले, बट आई विल नॉट टॉक अबाउट इट, दैट्स अनदर शो। फिलहाल तो गाने की बात कर लेता हूँ। गाना कहर ऑफ कोर्स एक टैपिंग नंबर है गुरु रंधावा, जो गाना बनाते ही इसलिए जो वायरल हो एंड रीलो पर चल रहा है कहर अभी तक। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू अ स्टोरी, कहर की वजह से एक लड़की है और उन्होंने अपना डांस स्टूडियो चालू किया और वो अब इतनी वायरल हो रही है जिसकी हद नहीं। आई कैन नॉट टेक हर नेम बिकॉज वो प्रमोशन हो जाएगा, मगर उन्होंने अपना डांस स्टूडियो इस गाने की वजह से उठाया एंड पीपल आर लर्निंग द स्टेप्स फ्रॉम हर। तो आजकल कोई भी काम कभी भी हिट हो सकता है, यू नेवर नो, सो जस्ट कीप ड्रीमिंग। एंड गुरु रंधावा को उसका क्रेडिट मैं देना चाहूंगा, क्योंकि इस बंदे ने म्यूजिक इंडस्ट्री में वो किया जो इससे पहले लोग करने की कोशिश कर रहे थे मगर सक्सेसफुल हर बार नहीं हो रहे थे। लेकिन इनके कमान से जो तीर निकलता है वो निशाने पे जाके लगता है। हर गाना रील पे यार, हर गाना कोई ना कोई ऐसे स्टेप, ये कहाँ से कोरियोग्राफर ला रहा है ये बंदा। तो कहर जो है धमाल 4 से एट नंबर 7 ऑन द लिस्ट।

0: Okay, let's move on to number 6 on the list now. Okay, so आपने देख लिया 10, 9, 8, 7 तो हो गया भाई, है ना? अब आ जाते हैं सीधा नंबर 6 पर. नंबर 6 पर जो गाना है ये है, बता दूं क्या?
1: दिल दे बैठी एक छोरे ने,
0: ये गाना भाई ऊपर चढ़ेगा, डांडा न्योली वाला का गाना भाई साहब. गाना नंबर 6 है डांडा भाई का, दिल दे बैठी एक छोरे ने.
2: दिल दे बैठी एक छोरे ने,
0: ठीक है भाई, डांडा भाई का गाना है, बहुत बढ़िया लिरिसिज्म है. एंड उनकी एल्बम नहीं है, ईपी है. उन्होंने उसको रिलीज करने का फैसला किया है, हर हफ्ते एक गाना रिलीज होगा. अभी तक दो गाने आ चुके हैं जिनमें से एक है दिल दे बैठी एक छोरे ने, और ईडीएम है भाई, ईडीएम गाना बनाया, मतलब कमाल म्यूजिक है भाई. आपको लगेगा कि अगर कोई और सिंगर होगा, कोई रैपर होगा तो उस पर नहीं गा पाएगा, बट डांडा भाई ने वो भी कर दिखाया. इतने बढ़िया लिरिक्स लिखे, इतने बढ़िया मीनिंगफुल लिरिक्स, और ये तो मतलब पहली मर्तबा नहीं है कि मैं कहूं कि ओ तुक्के में लिख दिए होंगे, नहीं, हर बार डांडा भाई की लिरिक्स बढ़िया होते हैं. मैं तो उनका बहुत ही बड़ा फैन हूं भाई, बहुत ही बड़ा फैन हूं, इतना बड़ा फैन कि आई वुड रियली लाइक टू मीट हिम वन डे. सो डांडा भाई का गाना दिल दे बैठी है छोरे ने, छोरा रिप्रेजेंट करा है भाई हरियाणा को, और नहीं है भाई, बढ़िया चल रहे गाने सारे. और यो एल्बम जब आएगी ना भाई, धरती हाल लेगी, स्पीकर बाजेंगे बढ़िया करके. तो ये दिल दे बैठी नंबर 5 पे है डांडा भाई का गाना, ठीक है भाई साहब, सुनो. और राइट, अब नंबर 5 का वक्त आ गया है, ये जगह भी कुछ हल्के में नहीं ले सकते. नंबर 5 पे जो गाना है ये है असीम अजहर साहब का, असीम अजहर विद द ट्रैक तू है वही.
3: तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा.
0: इसकी एक लाइन ने तबाही मचा रखी, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप जब गाना सुनेंगे तो कहेंगे हाँ अच्छा ये वाली लाइन है, ये तो मैं रीलों में सुन चुका हूँ. सो तू है वही असीम अजहर की आवाज, एंड एज आई मेंशन्ड अर्लियर एज वेल, असीम अजहर वो आर्टिस्ट हैं जिनके बारे में मैं कहता आया था कि अंडररेटेड है, कभी नहीं कोई काम देगा, वो बड़ा वाला काम जब भी पर्दे बिछा जाएंगे. लेकिन असीम अजहर प्राइम एग्जाम्पल है जब हम कहते हैं कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, एंड ही हैज डन इट, ही हैज अचीव्ड फॉर हिमसेल्फ. आज की तारीख में ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन. असीम अजहर साहब का ये गाना भी बहुत खूबसूरत है. इस गाने में कहानी है, इस गाने में डेप्थ है, इस गाने का अंतरा मुखड़ा सब एकदम, एक गाने का ना स्ट्रक्चर होता है. मैं इतना बड़ा कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ, ना मैं इतना अच्छा लिखता हूँ, मगर एटलीस्ट इतना समझ पाता हूँ गाना सुनने के बाद कि गानों का स्ट्रक्चर होता है, कहाँ पे हुक आना चाहिए, कितनी बार आना चाहिए, और कितना गैप बीच में क्या आएगा नहीं आएगा, हार्मनीज है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. एंड आसिम अजहर क्या करते हैं, वो कई मरतबा पॉप म्यूजिक को और हिप हॉप को दोनों को मिला देते हैं, और वो जो फ्यूजन है वो बड़ा कमाल का है. बहुत कम आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं, एंड ही इज वन ऑफ देम, रिजल्टिंग इन द फैक्ट कि गाना नंबर 5 उन्हीं का है, आसिम अजहर की आवाज तू है वही. ऑलराइट, सुनिए. तो भाई साहब ऐसा है, गाना नंबर 10, 9, 8, 7, 6 हो चुका है, 5 भी हो चुका है. अब जरा लौट के आएंगे ना तो उस सीढ़ी को चढ़ेंगे, सबसे मुश्किल है, यानी 4-3-2-1 जाना आपने, यानी बढ़िया जगह पर. दिस इज टॉप 10 ओनली ऑन FM 107. लेट्स गो.
4: FM 107 टॉप 10 नंबर 7.

0: number one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: Kabhi bhi aur kahi bhi, aap sun sakte hain FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
4: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
5: आज ही राब्ता करें
4: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
6: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारत दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ,
7: कुछ मिलेगा यहाँ।
6: ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर। डोंट मिस इट।
8: FM 107 Top 10 Number 5.

0: FM 107 Top 10.
1: अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टॉप 10 में. मैं हूं दूहा वाला कबीर FM 107 पे. अभी तक अगर आपने मिस कर दिया तो कर दिया, कोई बात नहीं. मैं लिस्ट एक बार फिर से रमा करा देता हूं आपको. तो गाना नंबर 10 सादगी, स्टीवन बैन की आवाज. नंबर 9 पे है ऊंचा लंबा कद, वेलकम टू जंगल से. नंबर 8 पे है आसिम अजहर साहब, विद आरज़ू. नंबर 7 पे है कहर, धमाल 4 से. नंबर 6 पे है दिल दे बैठी एक छोरे ने, डांडा भाई का गाना भाई. और नंबर 5 पे है तू है वही, आसिम हजर की आवाज में. आज हर तक गाढ़ा हा लगा दिया मैंने तो आसिम हजर की आवाज. एंड अब बारी है गाना नंबर 4, 3, 2 और 1 की. 4, 3, 2, 1 इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्ट्रीम्स, नंबर ऑफ वायरलिटी ऑन यूट्यूब एंड व्यूज एंड एवरीथिंग. तो सब चीजों को एक साथ लेके अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है. तो गाना नंबर 4 ऑन द लिस्ट, एक पायदान नीचे आया है एंड येट इज इट इज फेमस. गाना नंबर 4 है बन जा तू मेरी, मैगा जी बन जा, चरणप्रीत की आवाज, बादशाह साथ में. आइकॉनिक हुक स्टेप वायरल हो रहा है हर रोज. इस गाने की रील एक तो मुझे मेरे फीड पे आई जाती है, एक नहीं 10 आ जाती हैं.

क्या कर दिया भाई साहब इस गाने ने, क्या कर दिया। एवरीबडी इज ट्राइंग टू लर्न, स्लो मोशन में लोग सिखा रहे हैं इंटरनेट पे, एक्चुअल वायरल जिसे कहते हैं वो डेफिनेशन है ये गाना। चरणप्रीत को भी मेरे ख्याल में पता नहीं होगा उन्होंने क्या हुक बना दिया, ये हुक इतना जबरदस्त है। मैं पूरे आई एम क्लेमिंग अ बिग थिंग, ओके, इस पूरे साल में जितने भी गाने आए हैं, इस गाने का जो हुक है, आई थिंक इट इज द बेस्ट हुक एवर। यस, आई एम क्लेमिंग इट। चलो, इफ नॉट द बेस्ट, इट इज एट लीस्ट टॉप थ्री या टॉप टू, इतना शानदार हुक है इस गाने का। तो ये ऐसा होता ना कि एक सिंगर की लाइफ में ये बहुत अच्छी चीज होती है और बहुत बेकार चीज होती है। बेकार चीज बताता हूँ कैसे होती है। जब आप इतनी बढ़िया चीज निकाल देते हैं ना, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो जाती है कि वो एक बेंचमार्क सेट कर लेते हैं। एंड आई हैव नेवर हर्ड चरणप्रीत इस गाने से पहले, पर मैं उनको अब हर गाना उनका इसी गाने से कंपेयर करूंगा। दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम एंड दैट इज ऑल्सो गुड थिंग, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव डिस्कवर्ड कि चरणप्रीत आखिर है कौन। एंड बादशाह भी है तो ऑब्वियसली एक डिस्कवरी थोड़ी आसान हो जाती है। एंड ऊपर से दिव्या, आई थिंक दिव्या गोयल नाम है उनका, और उन्होंने इस गाने के गाने को कोरियोग्राफ किया है, एंड आसी ने परफॉर्म किया है। दैट गर्ल इज ऑल्सो गेटिंग ऑल द फेम, शी डिजर्व्स इट कम्प्लीटली, और बहुत बढ़िया हुक स्टेप है। तो वायरलिटी की डेफिनेशन है ये गाना, विच इज एट नंबर फोर। बन जा तू मेरी, क्या उकलाना भाई, कति जहर यो चलेगा भाई नंबर फोर पे, ठीक है। अब जरा नंबर थ्री पे आ जाते हैं। नंबर थ्री इज ऑल्सो अ वेरी वेरी वाइटल पोजिशन, क्योंकि यहाँ पे गाने यहाँ से या तो चढ़ता है या उतरता है। ये जो गाना है ये पहली पोजिशन पे था, अभी ये गुलाटी मार के तीसरे पे है, विच इज स्टिल नॉट बैड। एक्चुअली बढ़िया है ये गाना, अभी भी गिर के भी नंबर थ्री पर है, टॉप थ्री में बना हुआ है। वरना अक्सर गाने गिरते हैं तो सीधा पांच छह पे चले जाते हैं, क्योंकि बीच में बहुत सारे गाने आ जाते हैं। बट कुडोस टू द मेकर्स भाई, पिक्चर आपकी भुला दी जाएगी, ये गाना कोई नहीं भूलेगा। गाना है फ्रॉम द मूवी कॉकटेल माशुका। ये भाई गाना फिल्म आया, बहुत बढ़िया गया है, विजुअली बहुत बढ़िया है, ऑडियो इसका बहुत बढ़िया है, गाने के लिरिक्स बहुत बढ़िया है एंड यूनिक है। मैं अक्सर ये कहता हूँ, जब गाना बनाने वाले बैठते हैं तो क्या वो ये नहीं सोचते होंगे कि यार थोड़ा पैटर्न तोड़ा जाए। कई मर्तबा मैंने सिंगर्स को ही कंप्लेन करते हुए सुना है कि पब्लिक पैटर्न टूटने से निराश हो जाती है। अगर मैं, आई विल गिव यू अ वेरी लेम एग्जांपल, लेकिन आप समझ जाएंगे, हिमेश रेशमिया का एक गाने का तरीका है, आतिफ असलम के गाने की मौसिकी का एक, अदायगी का एक तरीका है, भाई रटा हुआ है आपको। उससे बाहर सिंगर गाने से दरअसल डरते हैं कि यार मेरा ये जोन है, इससे अलग मैं गाऊंगा तो पब्लिक को समझ में आएगा नहीं आएगा। एंड समटाइम्स दे डोंट डू इट अज्यूम करते हुए कि पब्लिक को कहां अच्छा लगेगा, मगर वो चीज फिर चल जाती है। और बॉलीवुड तो कभी एक्सपेरिमेंट करता नहीं है, बट दिस इज अ वेरी गुड एक्सपेरिमेंट। एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से गाया हुआ गाना, जिसमें स्पेनिश भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, एंड गाया बहुत अलग तरीके से किया है, एंड दैट इज द यूएसपी ऑफ द ट्रैक। सो माशुका हैज बीन ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट फॉर सो मेनी वीक्स, और अब ये गाना आ चुका है नंबर थ्री पर। आप सोचिए, गाना इतने हफ्तों से नंबर तीन पे आ रहा है, तो टू और वन पे क्या होगा। लेकिन फिलहाल माशुका कॉकटेल टू से एट नंबर थ्री ऑन द लिस्ट। ऑलराइट, अब गाना नंबर दो की बारी है, एंड आई एम सो एक्साइटेड भाई। मेरे अंदर का फैन बॉय जो है ना, फैन बॉय, वो फिर से जाग रहा है। नंबर दो पे भी एक बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बढ़िया गाना है। ये आर्टिस्ट का मैं फैन हूँ, ओके, आप कह लीजिए मैं बायस्ड हूँ, आई कैन बी बायस्ड, भाई क्यों नहीं हो सकता, इतनी तो मैं अपनी भी चलाऊंगा ना। गाने के अंदर स्पेशली जब हिप हॉप की बारी आती है, तो लोग अक्सर कहते हैं कि हिप हॉप में लिरिक्स होते नहीं, हर रैपर आता है और अपने बारे में गा के निकल जाता है, कह देगा मैं गरीब था, मैं पहले चूते थे, मेरे ये थे, मेरे वो थे, और बचत था, मेरे खाली हाथ, ऐसे कर करके रैप बना देते हैं और लोग निकल जाते हैं, हर रैप सेम साउंड करता। बट देन केम सिद्धू मूसेवाला, यू रिमेम्बर, सिद्धू मूसेवाला आए और उन्होंने पूरे रैप सीन को बदल के रख दिया भाई साहब, बहुत अलग लेवल पे चले गए। फिर जो हुआ वो हुआ, बट ही स्टिल अ लेजेंड। नाउ हरियाणा ने भी अपना एक वर्जन ऑफ सिद्धू मूसेवाला क्रिएट किया है,
और नॉट जस्ट दैट, आई मीन आई एम नॉट कंपेयरिंग हिम विद सिद्धू मूसेवाला, आई एम ट्राइंग टू से वो जो रिफ्लेक्शन होती है एक आदमी की ना, वो जो वॉइस होती है, वो जो इम्पैक्ट होता है ऑन द सीन, वैसा बहुत बहुत कम होता है और वैसा हुआ है हरियाणा के हिप हॉप सीन में इनकी वजह से. नाम है ढंडा न्योड़ी वाला, गाने का नाम है जगाने. भाई साहब ये गाना आप सुनिए, और अगर आप हिप हॉप नहीं भी सुनते हैं, आप रैप को पसंद नहीं भी करते हैं, तो मेरे कहने पे ये वाला रैप सुन लीजिएगा. दो चीजें होंगी, एक तो आपको हरियाणवी थोड़ी बहुत समझ में आने लग जाएगी, ओके, इवन इफ यू डोंट वांट टू अंडरस्टैंड, इसमें हिंदी भी है. वो जब लिरिक्स को आप समझने की कोशिश करेंगे, जब सुनेंगे, यू विल बी लाइक तो बंदा एक्चुअली में शायरी कर रहा है. और गाने को सिर्फ म्यूजिक नहीं आगे बढ़ाता है, गाने के लिरिक्स भी बहुत मैटर करते हैं, जो कहीं ना कहीं फेड आउट हो चुका है. आजकल हर दूसरा तीसरा गाना साउंड्स लाइक अ साउंड इफेक्ट है ना, उस पे लोग खेलते हैं बिकॉज सबको अभी गाने वाले नंबर्स चाहिए. बट देन कुछ बीच में ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जो आपको मजबूर कर देते हैं कि भाई बैठ और सुन. दिस इज वन ऑफ द सॉन्ग्स, जगाने विच इज हथियार बाय ढांडा न्योड़ी वाला फ्रॉम हिज लेटेस्ट ईपी विच इज कमिंग आउट स्लोली, कंप्लीटली हो जाएगी एट नंबर 2 ऑन द लिस्ट. प्लीज सुनिए and I'm pretty sure you will love it. और अब बारी है गाना number 1 on the top of the list. यहाँ पे भी मेरे अंदर का फैन बॉय जगा. मैंने कहा ना जी ना, ये तो मैं कतई होने नहीं दूंगा भाई साहब, ये होने नहीं दूंगा मैं. पहले मैंने होने दिया था, और कितने साल हो गए, 2007, तब तो हम बालक थे भाई, तब हो लिया था, अब नहीं होने देंगे. 2007 में एक मूवी रिलीज हुई थी, उसको लोग समझ नहीं पाए, गए नहीं थिएटर, और बाद में उस मूवी ने तबाही मचा दी. आंधी लेके आ गई पिक्चर, आंधी बॉर्डर के पार तक. 19 साल बाद वो पिक्चर वापस आ रही है अपना पार्ट 2 लेकर, और हम उसके फैन अभी जिंदा हैं, तो हम उसको भाई कोई घरों जाने नहीं देंगे भाई, इस बार नहीं आने देंगे. तो रिलीज होने वाली फिल्म जल्दी, जिसका एक ही गाना आया, और जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, कुछ गाने काफी स्लो बर्न होते हैं, धीरे धीरे आप पे चढ़ते हैं, ये वही गाना. मूवी है आवारापन 2, एंड सुबोध शर्मा ने ये गाना गाया है. मैं सच्ची बता रहा हूं, मैं खुद एज अ फैन बॉय जब मैंने गाने को पहली मर्तबा सुना, जब ये रिलीज हुआ, तो बहुत हाइप थी. मैं कब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा. फिर गाना रिलीज हुआ ना, आई वाज लाइक यार ये गाना थोड़ा कंपेरेटिव. मैंने फिर मेरे अंदर के फैन बॉय ने कहा नहीं, मुझे कोई हक नहीं बनता कंपेयर करने का. अगर मैं सच्चा फैन हूं तो मैं कंपेयर क्यों करूं, मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, एंड आई डोंट वांट टू रूइन द फैक्ट के अभी अलग तरीके से म्यूजिक बन रहा है, तो बनेगा. पर आवारापन 2 का ये गाना धीरे धीरे मुझ पर चढ़ गया है. ये गाने का नाम है वे जुनून. ये गाना एक स्टोरी सुनाता है पूरी की पूरी, सुनने वाला होना चाहिए. एक बार दो बार जब आपने सुना, सुनोगे आप ये गाना, मैं सही बता रहा हूं, यू विल प्ले इट इन द कार. जो काइंड ऑफ टेक्सचर है, जो लिरिसिज्म है, भाई क्या शायरी है गाने में. हैट्स ऑफ टू सईद कादरी, जिन्होंने, जिन साहब ने पहली आवारापन में भी काम किया, उन्होंने लिखा है बहुत कुछ, गाने भी लिखे हैं, आई थिंक ही रोट अ बिट ऑफ स्क्रीन प्ले एज वेल. उनकी ही शायरी इस बार भी है. आई कैन नॉट वेट फॉर तो फिराओ का वर्जन 2 और 3, बट फॉर नाउ कि जिस हिसाब से क्रेज है आवारापन का, आवारापन 2 का, और जिस हिसाब से इस गाने का क्रेज है, ये गाना जिस तरीके से चढ़ रहा है, एंड एज आई मेंशन लाइक अ स्लो बर्न, इट टोटली डिजर्व्स द टॉप स्पॉट. 6 मिनट का गाना है ओरिजिनल ट्रैक जो है, 6 मिनट का, समझ रहे हैं, ओरिजिनल ऑडियो जो है. इतना बोल्ड मूव, इतना बढ़िया गाना, ऊपर से भाई आवारापन 2. एक और कोई रीजन हो सकता है क्या? एंड इट वॉज ट्रेंडिंग एट नंबर 1 फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. नंबर 1 पे है वे जुनून फ्रॉम द मूवी आवारापन 2, सुबोध शर्मा की आवाज में, किलिंग इट एट द टॉप. तो ये अपना टॉप टॉप टॉप टॉप गाना आप सुनेगा जरूर. मैं लिस्ट एक बार रवा कर देता हूं, एक बार फिर से आपको बता देता हूं. तो नंबर 10 पे रहा साथ की, नंबर 9 पे उछल अम्बकद, नंबर 8 पे आरजू, नंबर 7 पे कहर धमाल 4 से, नंबर 6 पे दिल दे बैठी है कछोरन, नंबर 5 पे भाई सब तू है वही, नंबर 4 पे बन जा तू मेरी, नंबर
टू पे आ जाते हैं जगाने डंडा भाई का गाना, और नंबर वन पे दिस ट्रैक।

आवारापन टू से. And on that note, this is Doha Wala Kabir signing off. लेकिन social media handles FM107 Qatar. इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं. Please get in touch with us. हमसे जरूर जरूर रابطہ कायम करें. अगले हफ्ते की तैयारी कर लेंगे. आपकी वजह से कोई गाना लिस्ट में ऐड हो जाएगा. आपकी वजह से कोई गाना बाहर हो जाएगा. You are the judge, you are the jury of this whole show. Please बताइएगा. And message जरूर कीजिएगा. मुझे भी ढूंढ सकते हैं. Doha Wala Kabir FM107. कबीर की स्पेलिंग रहेगी KABIR. And this is Doha Wala Kabir signing off. अपना ख्याल रखिए क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं. मा सलामा. FM 107.

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान, सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ और मेरी पहचान में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज मेरी पहचान कुछ अलग ही होने वाला है। यस, आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हम अक्सर बड़ों का काम समझकर छोड़ देते हैं या ये सोचकर टाल देते हैं कि ये तो मर्दों का डिपार्टमेंट है। तो आज बात होगी फाइनेंशियल पहचान की। आज हम बनाएंगे आपका अपना मनी मैप। तो ब्यूटीफुल लेडीज, हमारे शहर की जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, चमचमाते मॉल्स हैं और बड़े ही अट्रैक्टिव ऑफर्स हैं, इन सब के बीच क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि वेयर डिड द मनी गो, हमारा पैसा जाता कहाँ है? Well, पिछले हफ्ते जब आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर गई थी या सुपरमार्केट गई थी, वहां पर शॉपिंग वगैरह की, तो उसके बिलिंग काउंटर पर खड़ी होकर क्या वो लंबे से बिल को हाथ में देखा है? क्या उस वक्त दिल की धड़कनें तेज हुई थी? आई एम श्योर जरूर हुई होंगी। वो जो एक हल्का सा डर होता है ना कि महंगाई बढ़ रही है, रेंट बढ़ रहा है, स्कूल की फीस बढ़ रही है और पता ही नहीं चल रहा है कि पैसे जा कहाँ रहे हैं, हाँ, बस उसी डर को आज हम समझदारी में बदलेंगे। सो मेरी प्यारी लेडीज, आप घर चलाने में तो एक्सपर्ट्स हैं, बेहतरीन डील्स ढूंढना, सेल का इंतजार करना, सब्जी वाले से मोल भाव करना ये सब तो हमें आता ही है, लेकिन पैसा मैनेज करना और पैसा ओन करना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ एक सैलरी का नाम नहीं है, ये एक हक का नाम है। यस, चाहे आप एक मल्टीनेशनल कंपनी की सीईओ हो या शानदार होम मेकर, आपको पता होना चाहिए कि आपकी कश्ती किस दिशा में जा रही है। तो चलिए आज का सवाल आपसे पूछ ही लेती हूँ। पूरी ईमानदारी से बताइएगा, क्या आपको पता है कि हर महीने आपकी फैमिली की असली सेविंग्स कितनी होती है? या फिर आप बड़े फैसले अपने पार्टनर पर छोड़ देती हैं या घर के बड़ों पर? मुझे व्हाट्सएप कीजिए 6622107 पर, 6622107 पर, और अपने नाम के साथ मुझे जवाब दीजिए कि क्या आपको पता है कि हर महीने आपकी फैमिली की असली सेविंग्स कितनी होती है। यस, मुझे आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा। और अभी एक शानदार सा गाना आपकी राहों में आ चुका है, तो पहले इसे एंजॉय कीजिए, फिर हम अपनी बातों को कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वंस अगेन. एफएम 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ और शो का नाम है मेरी पहचान. अब रुख करते हैं आज की एक बहुत खास बात पर. यस, और वो है आज की सोच. अब आप सब आंखें बंद कीजिए और थोड़ा पीछे चलिए. हाँ, अपने बचपन में याद है हमारी अम्मी, हमारी दादी नानी, किचन की वो एक खास खुशबू मसालों की, हल्दी की और देसी घी की. और उसी किचन में सबसे ऊपर वाले शेल्फ पर किसी पुराने दाल के डिब्बे के या चावल के कनस्तर के अंदर एक छोटी सी थाली होती थी. या फिर याद कीजिए दादी का वो पुराना बटुआ, ठीक है, जो हमेशा उनकी साड़ी के पल्लू में मजबूत तरीके से ना बंधा होता था. वो जो एक एक दो दो रुपए जोड़कर रखती थी ना, वो उनका सीक्रेट जार होता था. वो उनकी पहचान थी. उन्हें किसी ने फाइनेंस नहीं सिखाया, उनके पास कोई एक्सेल शीट भी नहीं थी, लेकिन उनके पास एक इंस्टिंक्ट थी. यस, और उसे वो हिफाजत से रखती थी. जब महीने के आखिर में अब्बू की जेब खाली हो जाती थी या घर में कोई अचानक बीमार पड़ जाता था, तो वही सीक्रेट जार काम आता था. वो उस वक्त की इमरजेंसी फंड थी. वो पैसे सिर्फ कागज नहीं थे, वो दादी का गर्व या यूं कहें दादी की प्राइड हुआ करता था, और वो उनकी बरकत थी. लेकिन आज जिस तरह से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्या वो डिब्बा काफी है? नहीं ना. तो ब्यूटीफुल लेडीज, हमें ये समझना होगा कि आज के दौर में सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं है. आज हम दोहा में रहते हैं, एक ऐसी जगह जहां हर साल रेंट भी बढ़ जाता है, जहां स्कूल की फीस हर साल एक नई बुलंदी छू रही होती है. वो जो दादी ने 10 रुपए बचाए थे, उनकी कीमत आज भी 10 रुपए ही है. लेकिन उन 10 रुपयों में जो सामान पहले आता था, आज उसका एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं आता. इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इन्फ्लेशन और उर्दू में कहते हैं गिरानी, यानी महंगाई का वो ड्रैगन जो चुपके से आपके पैसे की ताकत को खा जाता है. अगर आपने आज 100 रियाल बचाकर अलमारी में रख दिए, तो 2 साल बाद भी वो 100 रियाल ही रहेंगे, लेकिन उनकी ताकत 80 रियाल की रह जाएगी. तो आज की सोच ये है कि हमें सिर्फ बचाने वाली नहीं बल्कि बनाने वाली बनना है. हाँ, हमारे एंसेस्टर्स ने पैसे को छुपाना सिखाया था, है कि नहीं? हमें पैसों को बढ़ाना सीखना होगा, क्योंकि आज की जो महंगाई है ना, वो किचन के डिब्बे के नोटों को भी खा जाएगी अगर हमने उन्हें सही जगह काम पर नहीं लगाया. मैं अक्सर सुनती हूँ कि अक्सर मेरी फ्रेंड्स कहती हैं कि मीता, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मेरे मियाँ बहुत कमाते हैं या मेरे अब्बू ने सब संभाल कर रखा है. माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, और मैं यही चाहती हूँ कि ऊपर वाला आपकी जो ये बरकत है वो बनाए रखे. लेकिन याद रखिए, पैसा सिर्फ जरूरत पूरी करने का जरिया नहीं है, पैसा आजादी की जुबान है. मनी इज द लैंग्वेज ऑफ फ्रीडम. इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं, ठीक है? जब आपके पास अपना पैसा होता है या आपको अपने घर के पैसे का पूरा हिसाब पता होता है, तो आप सिर्फ खर्च नहीं कर रही होती हैं, आप चुन रही होती हैं. यू आर चूजिंग योर लाइफ. चूज करना यानी ये फैसला लेना कि क्या हमें इस साल बड़ी गाड़ी लेनी चाहिए या बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सारे सवाल, ठीक है? क्या मुझे वो महंगा डिजाइनर बैग लेना चाहिए या उस पैसे से एक नए बिजनेस में एक छोटा सा हिस्सा लेना चाहिए? जब आप फाइनेंशियल पहचान बनाती हैं, तो आप डिपेंडेंसी से पार्टनरशिप की तरफ बढ़ती हैं. आप घर की मैनेजर से घर की CFO बन जाती हैं. हाँ, और यकीन मानिए, जब एक औरत को पता होता है कि उसके पास एक बैकअप है, तो उसके चलने का अंदाज बदल जाता है. उसके लहजे में एक नई सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाती है. अब आप सोच रही होंगी, अमिता ये सब तो ठीक है, पर मुझे नंबर से डर लगता है, मैं तो आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ, मुझे मैथ नहीं समझना. देखिए, आपके जैसा मेरा भी हाल है, मुझे भी मैथ से डर लगता है. लेकिन मेरी प्यारी प्यारी लेडीज, पैसा समझने के लिए आपको कोई मैथ की डिग्री या कैलकुलेट करना ये सब नहीं पड़ेगा, ठीक है? आपको बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए उन नंबर्स की तरफ देखने की.
हिसाब से डरना छोड़ना पड़ेगा, हिसाब रखना शुरू करना पड़ेगा। ये वैसे ही है जैसे पहली बार ड्राइविंग सीखी होगी आपने, शुरू में डर लगता है लेकिन फिर आगे कंट्रोल भी आ गया और उसके बाद हमने जो स्टीयरिंग व्हील संभालना शुरू किया, बस रास्ते अपने आप खुलते चले गए। तो भाई आज की सोच का निचोड़ ये है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, अपने पार्टनर से पूछिए हमारा इंश्योरेंस कहाँ है, हमारी सेविंग्स कहाँ इन्वेस्ट हो रही हैं, अगर कल को बैंक का पासवर्ड भूल गए तो हम क्या करेंगे। ये सवाल पूछना कोई बदतमीजी नहीं होती है या कोई डिसरिस्पेक्ट।

0: आप सुन रहे हैं मेरी पहचान ए फॉर अमिता के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं एफएम 107। मैं हूं आपकी अमिता, आपके साथ मेरी पहचान है शो का नाम। और आज हम बात कर रहे हैं हमारे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की। यस, थोड़ी देर पहले हमने बात की उस पुराने किचन के डिब्बों की याद की जिसे हमने ताजा किया, लेकिन अब थोड़ा आज में लौट जाते हैं। चलिए अब रुख करते हैं उस चीज की तरफ जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, हमारा अपना शरीर, हमारी बॉडी,

और हमारा बैलेंस। क्या आपने कभी महसूस किया है कि महीने की 25 या 26 तारीख होती है, बैंक अकाउंट का बैलेंस धीरे धीरे जा रहा होता है और अचानक आपको लगता है कि आपके कंधों पर दर्द शुरू हो गया है क्योंकि भार काफी हो जाता है, या फिर वो जो अचानक सर में एक हल्की सी टीस उठती है, हम बेवजह माइग्रेन की गोलियां खाने लगते हैं। देखिए लेडीज, वो माइग्रेन बेवजह नहीं होता। क्या आपको पता है कि पैसों की चिंता, फाइनेंशियल स्ट्रेस, इससे हमारी सेहत पर बहुत गहरा असर पड़ता है। साइंस कहती है कि जब हम पैसों को लेकर अनसेफ महसूस करते हैं तो हमारी बॉडी कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करती है जिससे स्ट्रेस हॉर्मोन्स बढ़ते जाते हैं। मुझे रात भर नींद नहीं आती और हम बार बार करवट बदल बदल के सोते रहते हैं और ये सोचते हैं कि अगला खर्चा कैसे निकलेगा। वो जो मियाँ बीवी के बीच छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन होता है, अक्सर उसकी जड़ कोई पुरानी दुश्मनी नहीं होती बल्कि एक खाली बटुआ, या वो कहते हैं ना, बढ़ता हुआ कर्ज या बढ़ती हुई महंगाई या बढ़ता हुआ पैसों का अरेंजमेंट, ये सारी चीजें होती हैं। जब पैसा कम होता है तो घर में सुकून कम हो जाता है और बेचैनी बढ़ जाती है। अब थोड़ा हमारी लाइफस्टाइल पर ये सोचिए कि भाई देखो, हमारे जो दोहा की लाइफस्टाइल है वो बहुत ही डिफरेंट है। हम एक ऐसे शहर में रहते हैं जो कि चमक धमक से भरा हुआ है। यहाँ हर रोज एक नया मॉल खुलता है, हर रोज एक नई गाड़ी लॉन्च होती है और यहाँ हम एक बहुत बड़े जाल में फंस जाते हैं। हाँ जी, इसे इंग्लिश में कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हमारी सैलरी बढ़ती है, हम अपने खर्चे उससे भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। हमारे पास एक बहुत अच्छी गाड़ी है, ठीक है, वो हमें सही सलामत ऑफिस और घर पहुंचाती है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी ने कोई बड़ी गाड़ी खरीद ली, अचानक हमारी पुरानी गाड़ी हमें छोटी लगने लगती है कि नहीं? और हर वीकेंड वो लग्जरी ब्रंच करना, वो 300-400 रियाल एक वक्त पर खाने में गवा देना, क्यों? सही कह रही हूँ ना? क्या हमें वाकई भूख है इतने सारे पैसे खर्च करने की, या फिर सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमें सोशल मीडिया पर अच्छी अच्छी फोटोज डालनी है, बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, इसीलिए हम ये खर्चा करते हैं, या यूं कहें तो सोशल मीडिया के कंपैरिजन ट्रैप में फंस गए हैं? वेल, इससे हमारा जो मेंटल पीस है ना और बैंक बैलेंस, ये दोनों ही ना खोते जा रहा है। हम इस मामले में अक्सर दिखावे की जिंदगी जीने के चक्कर में अपना सुकून बेच देते हैं। हम वो चीजें खरीदते हैं जिनकी हमें जरूरत भी नहीं है, उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिन्हें हम पसंद भी नहीं करते। थिंक अबाउट इट, क्या ये डील, या यूं कहें क्या ये सौदा सही है? याद है वो फिल्म तुम्हारी सुलु? अगर आप सभी ने देखी होगी, काफी हिट हुई थी हमारी विद्या बालन की। उसमें विद्या बालन का ना एक वो आइकॉनिक डायलॉग था, मैं कर सकती हूँ। बस वही जज्बा हमें अपने फाइनेंसेस में चाहिए। अक्सर जब हम बजट का नाम लेते हैं तो हमें लगता है कि कोई हमारी आजादी छीन रहा है कि नहीं? ऐसी फीलिंग आती है ना, हमें लगता है कि बजट एक ऐसा वर्ड है जो हमें ना सलाखों के पीछे डाल देगा। लेकिन लेडीज, आज मेरी ये बात ध्यान से सुनिए। बजट कोई जेल नहीं है, बजट एक बाउंड्री है जो आपकी हिफाजत करती है, आपके पीस को बचाती है और आपके मेंटल पीस को भी प्रोटेक्ट करती है। ये वैसा ही है जैसा आप अपने घर के बाहर एक दीवार बनाते हैं ताकि आप अंदर महफूज रह सकें। बजट आपको ये बताता है कि इतना खर्च करके मैं चैन की नींद सो सकती हूँ। जब आप और आपके पार्टनर मिलकर एक बजट बनाते हैं तो लड़ाइयाँ कम हो जाती हैं और आप एक दूसरे से नहीं लड़ रहे होते हैं, आप मिलकर उस नंबर से लड़ रहे होते हैं। इट ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट बढ़ता है और आपके प्लान्स मजबूत होते हैं। देखिए, जब एक औरत अपने घर का बजट संभालती है तो वो सिर्फ पैसे नहीं बचा रही होती है, वो अपने घर की मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट कर रही होती है। जब आपको पता होता है कि इमरजेंसी फंड में पैसे रखते हैं तो अचानक वो माइग्रेन कम होने लगता है, क्योंकि अब आपका दिमाग सर्वाइवल मोड में नहीं, थ्राइविंग मोड में चलने लगता है। मैं आपके साथ एक बहुत दिलचस्प रिपोर्ट शेयर करना चाहती हूँ। यूएन विमेन की एक रिसर्च कहती है कि जब एक औरत के हाथ में पैसों का कंट्रोल होता है तो उसके पूरे खानदान की सेहत और तालीम का लेवल ना ऊपर उठ जाता है। क्यों?

क्योंकि एक औरत हमेशा फ्यूचर फर्स्ट सोचती है. वो बच्चों की पढ़ाई, घर की बीमारी और बुजुर्गों की देखभाल, इन सब के बारे में पहले सोचती है. सो माय ब्यूटीफुल लेडीज, अगर आप महीने के आखिर की चिंता में यूं घुलती जा रही हैं, अगर आपको लगता है कि आपका शरीर थका थका रहता है, तो समझिए कि शायद आपका शरीर आराम मांग रहा है उस फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी से. अपने आप को इस तनाव से, इस स्ट्रेस से आजाद कीजिए. बैठिए, बातें कीजिए और अपने बैंक अकाउंट की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाइए. पैसा दुश्मन नहीं है. अगर आप इसे अपना गुलाम बनाना चाहते हैं तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा. लेकिन अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो ये आपका मालिक बन जाएगा. आपकी पहचान एक मजबूत और एक कॉन्फिडेंट लेडी की होनी चाहिए. और वो कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपका बैलेंस और आपकी बॉडी दोनों एक दूसरे के साथ हार्मनी में चलते हैं. एक गहरी सांस लीजिए, रिलैक्स कीजिए. मनी इज जस्ट अ टूल एंड यू आर द मास्टर. इस चीज के बारे में सोचिए तो आई एम वेरी सर्टेन कि जिंदगी की सारी चिंताएं यू गुल हो जाएंगी. और इसी बात के साथ अब हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ रुख करेंगे, उसके बाद वापस आकर अपनी बातों को कंटिन्यू करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.

वेलकम वंस अगेन FM 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ और मेरी पहचान में आज हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल पहचान की, या यूं कहें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की. ये सिंपल सिंपल सी चीजें हैं जिसको हम अक्सर इग्नोर करते आते हैं और इसी बारे में आज बात करना बहुत जरूरी है. सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज इज अवेयरनेस, जिसका अगर हमने ख्याल रख लिया तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम हमें धीरे धीरे मिल ही जाएगा. पहल शो की शुरुआत में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि आप में से कितने लोग हैं जिन्हें पता होता है कि उनके एंटायर फैमिली की हर मंथ की कितनी सेविंग है. ठीक है, चलिए यहाँ पर मुझे जोया का मैसेज आया है और अस्सलाम वालेकुम कह रही है. वालेकुम अस्सलाम. कहती है कि अमिता, सच कहूँ तो पहले मुझे कुछ भी पता नहीं होता था, पर पिछले साल जब मेरे शौहर की तबीयत खराब हुई तब मुझे एहसास हुआ कि फाइनेंशियल नॉलेज कितनी जरूरी है. अब हम हर महीने साथ बैठकर बजट बनाते हैं. दैट इज सो कूल एंड दैट इज सो नाइस. मतलब सोचिए, एक इंसिडेंट की वजह से आपने ये कदम उठाया. वैसे मैं कहूंगी कदम उठाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऐसे इंसिडेंसेस का इंतजार हमें नहीं करना चाहिए, है कि नहीं. बलफरा का मैसेज है, वो कहती है कि मैं तो आज भी बड़े फैसले अपने पार्टनर पर ही छोड़ देती हूँ. मुझे लगता है बैंक और इन्वेस्टमेंट के मामले थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसलिए मैं सिर्फ घर के खर्च तक महदूद रहती हूँ. शायद मुझे बदलना चाहिए. यस फरा, आई रियली इंसिस्ट कि आपको थोड़ा बदलना चाहिए. एंड यू शुड ऑल्सो आस्क अपने पार्टनर से कि यू नो कैसे खर्चे होते हैं, क्या होता है. मैंने पहले ही कहा था कि नंबर से हमें डरना नहीं है, उन्हें समझिए. और ये बस थोड़ी सी समझ का ही खेल है, एटलीस्ट आप अवेयर हो जाइए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, सायरा का मैसेज है कि मेरी पहचान टीम को सलाम. सो यस, थैंक यू सो मच सायरा. एक वर्किंग वुमन हूँ मैं, और तो जाहिर है मुझे एक एक रुपए का हिसाब पता होता है. और मैं और मेरे पार्टनर हम दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि कितना सेव करना है और कहाँ इन्वेस्ट करना है. बराबरी का रिश्ता तभी होता है कि जब फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में दोनों को ही समझ आता हो. देखिए सायरा, आपने बिल्कुल सही बात कही है और मुझे लगता है कि जितनी भी वर्किंग लेडीज़ हैं वो इस चीज़ का ख्याल रख रही हैं. बट बात सिर्फ वर्किंग लेडीज़ और होम मेकर्स की नहीं है, बात कई बार ऐसी होती है जैसा कि थोड़ी देर पहले हमें फरा ने कहा कि मैं सारे अपने फैसले पार्टनर पर ही छोड़ दिया करती थी. अक्सर छोड़ती हूँ. तो ये इवन वर्किंग लेडीज़ के साथ भी कभी कभी हो जाता है. सो वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप कुछ भी करें, देखिए घर, जैसे हमने कहा था कि घर की जिम्मेदारी दोनों की होनी चाहिए, उसी तरह जब हम पैसों की बात करते हैं तो वो जिम्मेदारी भी दोनों की ही होनी चाहिए. उसके बाद रुखसार का मैसेज है, वो कहती है कि मेरे पास अपनी एक अलग सीक्रेट सेविंग होती है जो मैं घर के खर्च से बचाती हूँ, पर असली सेविंग्स कितनी है वो मुझे नहीं पता. ओहो रुखसार, देखो यहाँ पर आप ना मात खा गए. मैं आपसे कहूंगी जितनी आप अलर्ट हैं अपनी सीक्रेट सेविंग के लिए, उतनी आपको अलर्ट होना होगा अपने घर की सेविंग के लिए, तब हर चीज इजी होगी और स्मूथ होगी, है कि नहीं. वेल, हमारे सारे लिसनर्स जिन्होंने हमें मैसेजेस किए, बहुत बहुत शुक्रिया. कई बार हमारे शो के बाद भी मैसेजेस आते हैं, डेफिनेटली मैं उन्हें पढ़ती हूँ. और आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने मैसेजेस हम तक जरूर पहुंचाएं और हमें बताएं कि आपको हमारा शो कैसा लगता है, या कोई ऐसी बात जो आप चाहते हैं कि हमारे शो के जरिए लिसनर्स तक पहुंचे और लोगों तक पहुंचे, तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं 6622107 पर, 6622107 पर. चलिए आइए अपनी बातों को अब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं. हम अक्सर शीशे में खुद को देखते हैं, एक माँ, एक बीवी, एक बेटी, एक एम्प्लॉय. लेकिन आज मैं बात करना चाहती हूँ उस शख्सियत की जो हमारे अंदर कहीं दबी हुई है, कहीं खामोश है, जिसे हम कहते हैं छुपी हुई मैं. ये छुपी हुई मैं कौन है? ये वो औरत है जिसे पता है कि उसकी असली कीमत उसके शौहर की बैंक बैलेंस या उसके पिता की जायदाद से तय नहीं होगी. ये वो है जो अपनी एक अलग फाइनेंशियल पहचान चाहती है. ठीक है, तो मेरी ब्यूटीफुल लेडीज, हमने सदियों से सुना है कि सोना ही औरत का असली साथी है, और ये सच भी है. सोना यानी कि गोल्ड एक पुरानी और बहुत अच्छी सिक्योरिटी है. मुश्किल वक्त में इसी ने हमारा साथ दिया है. लेकिन आज के दौर में सिर्फ सोना काफी नहीं है. ठीक है, आपकी छुपी हुई मैं अब थोड़ा और आगे देखना चाहती है. यस, उसे समझना होगा कि गोल्ड अगर एक सेफ्टी नेट है
तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स यानी SIP, म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स वो इंजन है जो आपके पैसे को सच में ग्रो करते हैं और उसे बढ़ाते हैं। सोना आपको बचाता है लेकिन इन्वेस्टमेंट्स आपको आजाद करते हैं। आपकी वो छुपी हुई मैं चाहती है कि आप सिर्फ खर्च करने वाली ना रहे बल्कि एक इन्वेस्टर भी बने। वो चाहती है कि आपके पास इतनी समझ हो कि जब लोग इन्फ्लेशन और मार्केट की बात करें तो आप सिर्फ सर ना हिलाएं बल्कि उसका मतलब भी समझें। अब एक बहुत जरूरी बात है कि जब मैं कहती हूँ ना कि हर औरत को अपने पैसे का पता होना चाहिए तो कुछ लोग सोचते हैं कि अमिता क्या तुम हमें अपने पार्टनर पर शक करने के लिए कह रही हो? नहीं, हरगिज नहीं। खुदा ना करे कि आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल आए, लेकिन हकीकत से आंखें फेरना समझदारी नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऊपर वाला ना करे कि अगर कल को आपको अकेले दुनिया का सामना करना पड़े या कोई भी सिचुएशन आए, फिर वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो क्या आप रास्ता ढूंढ पाएंगी? ये अपने पार्टनर पर शक करना नहीं है, ये खुद की इज्जत करना है, ये जिम्मेदारी है एक पूरे कॉन्फिडेंट की। यस, और एक जो कॉन्फिडेंट लेडी होती है, विमेन होती है, या यूं कहें औरत होती है, वही होती है जो हर मौसम के लिए तैयार हो। इसीलिए हर औरत को, चाहे वो हाउसवाइफ हो या वर्किंग विमेन हो, कुछ बातों का उसे ख्याल रखना ही होगा। जैसे पैसे कहाँ हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमारी फैमिली की सेविंग्स कौन से बैंक में है और किसके नाम पर है, वो कैसे प्रोटेक्टेड है, क्या हमारा इंश्योरेंस है, क्या हमने नॉमिनी फाइल किए हैं, और जरूरत पड़ने पर आप उसे एक्सेस कैसे कर सकती हैं, क्या आपके पास पासवर्ड्स हैं, क्या आपको पता है कि इमरजेंसी में पैसे कैसे निकालने हैं। ये सवाल पूछना आपका हक है और ये आपकी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो फिर जनाब, बातें बहुत हुई, अब थोड़ा सा काम की बात कर लेते हैं और आज से हम अपना मनी मैप कैसे शुरू करें इस पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो इन पॉइंट्स का थोड़ा सा ख्याल रखना है। सबसे पहला है द फाइनेंशियल डेट नाइट। सुनने में थोड़ा सा फिल्मी लग रहा है लेकिन ये बहुत जरूरी है। महीने में एक बार, सिर्फ एक बार, बच्चों को सुलाकर, फोन साइड में रखकर और टीवी बंद करके अपने पार्टनर के साथ बैठिए, एक कप चाय लीजिए और बैंक स्टेटमेंट्स देखिए, पासवर्ड्स शेयर कीजिए, खुलकर बात कीजिए कि सर पर कितना कर्ज है या हाथ में कितनी कैपिटल है, कितनी पूंजी है। जब दोनों को पता होगा कि हम कहाँ खड़े हैं तो रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी और मोहब्बत दोनों बढ़ेगी। नंबर टू, आप 10% रूल का ख्याल रखें। ये रूल आपकी जिंदगी बदल सकता है। घर के खर्च के लिए जो पैसे मिलते हैं या जो आपकी अपनी कमाई है, उसमें से सबसे पहले 10% निकाल कर एक अलग अकाउंट में डालिए जो सिर्फ आपके नाम पर हो। इसे भूल जाइए, ये आपका फ्रीडम फंड है, ये वो पैसा है जो आपकी सेल्फ वर्थ को बढ़ाएगा। नंबर तीन, एजुकेट योरसेल्फ। यस, अगर आप कतर में हैं और ये ब्यूटीफुल लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं तो कतर फाइनेंशियल सेंटर की वेबसाइट देखिए या वो जो कहते हैं ना इन्वेस्टोपीडिया जैसे फ्री रिसोर्सेज का इस्तेमाल कीजिए। हर हफ्ते एक नया शब्द देखिए, इन्फ्लेशन क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, डिविडेंड्स किसे कहते हैं। याद रखिए, जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी शील्ड होगी। जितना आप सीखेंगे उतना ही आपका डर कम होगा। तो आज की मेरी टॉप टिप बस इतनी ही है और इसे अपने किचन के दरवाजे पर लिख लीजिए। यस, वो मत बचाइए जो खर्च करने के बाद बच गया है, बल्कि पहले बचाइए और फिर जो बच जाए उसे खर्च कीजिए। आया समझ में? चलिए, इसी बात के साथ मैं कहूंगी कि फाइनेंशियल पहचान सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये उस भरोसे के बारे में है जो आपको अपने आप पर होता है। जब आप अपने कॉइन्स की मालिक बनती है ना, तो आप अपनी जिंदगी की मालिक बन जाती है। अगले हफ्ते मेरी पहचान में हम एक और खूबसूरत से टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। यस, और वो क्या होगा वो जानने के लिए आपको सेम टाइम सेम प्लेस मेरी पहचान पर अपनी अमिता से मिलना होगा। फिलहाल के लिए अब आप मुझे दीजिए इजाजत। मुझसे कुछ कहना है तो हमारे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं FM 107 के, या फिर हमारा जो नंबर है 666-22-107, इसके जरिए भी आप मुझसे रابطہ कायम कर सकते हैं और सोशल मीडिया पे अपनी आरजे अमिता से अपने दिल की बात कह सकते हैं। चलिए, अब आप मुझे दीजिए इजाजत। आपकी मेरी मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। Stay tuned to FM 107, दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, दी अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
2: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi.
3: दोस्तों, लिमोजीन चलाने वाले ड्राइवर्स के लिए एक अहम पैगाम ये है कि सेफ ड्राइविंग सिर्फ आपकी नहीं बल्कि सबकी सेफ्टी की गारंटी होती है। याद रखिए, फार लेफ्ट फास्ट लेन का इस्तेमाल आपके लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है या मना है। रोड पर रैंडम स्टॉपिंग मत कीजिए, यानी गाड़ी कहीं भी मत रोक दीजिए। रुकना सिर्फ तब अलाउड है जब एप्लीकेशन के जरिए रिक्वेस्ट मिलती है, और हमेशा स्पेसिफाइड स्पीड लिमिट का ख्याल रखिए, क्योंकि स्लो ड्राइविंग भी मेन रोड्स पर ट्रैफिक के लिए खतरा बन सकती है। सेफ्टी के इन सिंपल रूल्स पर अमल करके आप अपनी हिफाजत करते हैं और दूसरों के सफर

0: तैयार हो जाइए एक बेमिसाल सफर के लिए, एक रेडियो शो जो आपको ले जाता है वक्त और स्पेस के हैरतअंगेज सफर पर। इस शो में आप डिस्कवर करेंगे तारीख और साइंस के सबसे बड़े राज, भूले हुए सिविलाइजेशंस, पुरानी टेक्नोलॉजीज जो वक्त के साथ खो गई, और कॉस्मिक मिस्ट्रीज जो आज भी साइंटिस्ट्स को हैरान कर रही हैं। हर एपिसोड एक दिलचस्प ऑडियो एडवेंचर है जो फैक्ट्स को रियलिस्टिक साइंस फिक्शन के टच के साथ प्रेजेंट करता है। अपनी क्यूरियोसिटी को जगाइए, इमेजिनेशन को बढ़ाइए और हमारे साथ एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मजा लीजिए। आरजे सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: साथियों जरा सोचिए, अगर आप सुबह उठें और आपके आसपास के लेक्स यानी झीलों का रंग एक दिन से दूसरे दिन बिल्कुल बदल गया हो, कैसा लगेगा आपको? लगेगा ना मैजिकल सीन। ये फिनोमिना किसी कहानी या मिथ का हिस्सा

ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली में साइंस का एक रियल और फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है जो नेचर की क्रिएटिविटी और बायोलॉजिकल प्रोसेस को प्रूव करता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं शो एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑन एफएम 107। साथियों, लेक्स का रेड, पिंक या ऑरेंज होना अक्सर वर्ल्ड वाइड ऑब्जर्व किया गया है और साइंटिस्ट के लिए ये एक नेचुरल लेबोरेटरी का काम करता है। अक्सर ये फिनोमेना ऐसे रीजन्स में होता है जहां सॉल्ट कंसंट्रेशन हाई हो, सनलाइट इंटेंस हो और टेम्परेचर और पीएच कंडीशंस स्पेसिफिक हो। ये लेक्स ये शो करते हैं कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स इंटरैक्ट करके विजुअल मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि रेड लेक्स का कलर कैसे बनता है। ये कलर बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल प्रोसेस का नतीजा होता है। माइक्रोब्स जैसे एल्जाई और बैक्टीरिया पिगमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। मिनरल्स और सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन वाटर का कलर एम्पलीफाई करता है और एनवायरमेंटल ट्रिगर्स जैसे सनलाइट और इवेपोरेशन प्रोसेस को एक्सेलरेट करते हैं। लेक्स का रंग बदलना सिर्फ एक विजुअल स्पेक्टिकल नहीं है, बल्कि ये इकोसिस्टम की हेल्थ और वाटर केमिस्ट्री के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स फील्ड ऑब्जर्वेशंस, वाटर सैंपलिंग और सैटेलाइट इमेजेस के जरिए ये फिनोमेना स्टडी करते हैं और पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं। कुछ लेक्स तो परमानेंटली रेड ही रहते हैं, कुछ सीजनल या टेम्पररी रेड होते हैं और हर लेक के कलर चेंज का रीजन स्लाइटली डिफरेंट होता है। जैसे दुनिया के फेमस एग्जाम्पल्स में लेक हिलर जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, लेक रेटबा जो कि सेनेगल में है और भाई स्पेन में भी तो एक ऐसा दरिया मौजूद है जिसका नाम है सेलिना दी तोरे बिखा। साथियों, पाकिस्तान के रेयर केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं जहां लोकल कम्युनिटीज ने नेचुरली रेड हो जाने वाले लेक्स ऑब्जर्व किए हैं। ये लेक्स सिर्फ विजुअली स्टनिंग नहीं होते, ये साइंस और क्यूरियोसिटी का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। ये हमें सिखाते हैं कि नेचर कितनी कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड है। माइक्रोस्कोपिक लाइफ, मिनरल्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के इंटरैक्शन एक कलरफुल और डायनेमिक स्पेक्टिकल क्रिएट करते हैं। आज के इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे रेड लेक्स के बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेसेस काम करते हैं, लिमनोलॉजी और हाइड्रोकेमिस्ट्री का रोल, ग्लोबल केस स्टडीज और लैब बेसिस ऑब्जर्वेशंस, एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल इम्पैक्ट और वे आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं अपनी इस जर्नी को और समझते हैं ये ओवरनाइट वाटर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे और क्यों होते हैं। आप सुन रहे हैं शो एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी विद सफा, ओनली ऑन एफएम 107। साथियों, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये लेक्स इतने अचानक रेड या पिंक कलर के कैसे हो जाते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि कलर का सोर्स क्या है भाई। अक्सर ये फिनोमिना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एल्जाई और बैक्टीरिया की वजह से ही होता है जो वाटर में स्पेसिफिक पिगमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। ये पिगमेंट्स यूजली कैरोटीनाइड्स जैसे बीटा कैरोटीन या एस्टेक्स एंथिन होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करके रेड, पिंक या ऑरेंज हुए रिफ्लेक्ट करते हैं। लेक्स में कलर की इंटेंसिटी डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पर जिसमें सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन भी मौजूद है, यानी हाई सॉल्ट लेवल स्ट्रेस क्रिएट करते हैं माइक्रोब के लिए जो अपने सर्वाइवल के लिए पिगमेंट्स ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। फिर भाई वहीं पर सनलाइट इंटेंसिटी भी अपना रोल प्ले करती है, यानी स्ट्रॉन्ग सनलाइट पिगमेंट्स को एक्टिवेट करती है और फोटोसिंथेसिस के साथ केमिकल रिएक्शन एक्सेलरेट होता है। हाँ, हम टेम्परेचर और पीएच को भी नहीं भूल सकते, यानी वार्म और स्लाइटली एल्कलाइन या एसिडिक कंडीशंस पिगमेंट प्रोड्यूस इनहेंस करते हैं। अच्छा साथियों, इसके अंदर माइक्रोबल रोल भी मौजूद है भाई। एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है दुना लीला सेलिना, एक टाइप की ग्रीन एल्जाई जो एक्सट्रीम सॉल्टी लेक्स में ग्रो करती है। जब स्ट्रेस कंडीशंस होती हैं, ये एल्जाई रेड कैरोटीनाइड पिगमेंट्स प्रोड्यूस करती है और लेक का पूरा सरफेस एक पिंक रेड शेड में दिखाई देने लगता है। ये पिगमेंट उनके यूवी प्रोटेक्शन और स्ट्रेस रेजिस्टेंस का काम करता है। और तो और, रेड कलर सिर्फ माइक्रोब्स की वजह से नहीं होता, कभी कभी वाटर के अंदर डिजॉल्व्ड आयरन कंपाउंड्स और हाइलाइट क्रिस्टल्स भी लाइट को रिफ्लेक्ट

ब्लैक करते हैं और कलर एम्पलीफाई करते हैं। लेक का शेलो नेचर और काम वाटर सरफेस भी रिफ्लेक्शन और पिगमेंट कॉन्सेंट्रेशन को हाई करता है। साथ ही बहुत सी रेड लेक्स सीजनल फिलोमिना होती हैं। समर या ड्राई सीजन में वाटर इवेपोरेट होता है, सॉल्ट और मिनरल्स कॉन्सेंट्रेट होते हैं और माइक्रोब्स को हाई सॉल्टी और सनलाइट एक्सपोजर मिलता है, जिसकी वजह से वो पिगमेंट्स ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। रेनी सीजन या कूलर मंथ्स में डाइल्यूटेड वाटर और रिड्यूस्ड स्ट्रेस की वजह से कलर फेड हो जाता है। अच्छा भाई, सिर्फ यही नहीं, विंड्स और करंट्स भी पिगमेंट्स और सस्पेंडेड पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट करते हैं। लेक के एजेस और सेंटर का कलर स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है ड्यू टू माइक्रोबल डेंसिटी एंड सॉल्ट ग्रेडियंट्स। साथियों, सैटेलाइट इमेजेस और ड्रोन फोटोग्राफी से ये पैटर्न्स बहुत ही इजीली ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। ये पिगमेंट्स और माइक्रोबल एक्टिविटीज लेक के इकोसिस्टम के लिए क्रूशियल हैं। ये माइक्रोब्स हाई सॉल्ट और एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं और फूड चेन का बेस प्रोवाइड करते हैं, जैसे ब्राइन श्रिम और स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स। साथियों, लेक्स का रेड होना एक विजुअल इंडिकेटर होता है कि इकोसिस्टम हेल्दी और एक्टिव है। और एक और मजे की बात तो ये है कि कुछ लेक्स का कलर इतना वाइब्रेंट होता है कि उनके इमेजेस स्पेस से भी देखी जा सकती हैं, जैसे लेक रेदबा जो कि सेनेगल में मौजूद है और लेक हिलर जो कि ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। भाई, ये नेचुरल स्पेक्टिकल्स सिर्फ एस्थेटिक के लिए नहीं बल्कि साइंटिफिक स्टडी और एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए भी वैल्यूएबल हैं। चलिए साथियों, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब हम थोड़ा अंदर की तरफ नजर डालते हैं, मतलब लेक के इंटरनल स्ट्रक्चर और डायनेमिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, लिम्नोलॉजी का काम ये है कि लेक्स और पॉन्ड्स के फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस को स्टडी करें। रेड लेक्स सिर्फ सरफेस का फिनोमेना नहीं है बल्कि उनके अंदर भी फैसिनेटिंग इंट्रैक्शंस चल रही होती हैं। अगर बात करें थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन की, तो भाई शेलो लेक्स में सनलाइट पूरी डेप्थ तक पेनिट्रेट कर रही होती है, लेकिन डीप लेक्स में थर्मोक्लाइन क्रिएट होता है, एक लेयर जहां टेम्परेचर रैपिडली चेंज होता है। ये लेयर माइक्रोबिकल डिस्ट्रीब्यूशन और केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करती है। फॉर एग्जांपल, एल्जाई और बैक्टीरिया ज्यादातर एप्लिमिनॉन यानी अपर वार्मर लेयर में ग्रो करते हैं, जहां सनलाइट और ऑक्सीजन ज्यादा होती है। अच्छा, अगर बात करें ऑक्सीजन ग्रेडियंट्स की, तो लेक की डेप्थ के साथ ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाता है। सरफेस के पास फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन ज्यादा होता है और बॉटम लेयर्स में ऑक्सीजन कम या जीरो भी हो सकता है। ये माइक्रोबिकल कम्युनिटीज को शेप देता है, यानी एरोबिक बैक्टीरिया टॉप लेयर में और एनएरोबिक बैक्टीरिया डीपर लेयर्स में। अच्छा साथियों, रेड लेक्स अक्सर हाइपर सेलाइन होते हैं। सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ सरफेस पे नहीं बल्कि डेप्थ के साथ भी वेरी करता है। सॉल्ट ग्रेडियंट्स वाटर डेंसिटी क्रिएट करते हैं, जो मिक्सिंग और कन्वेक्शन को कंट्रोल करता है। माइक्रोब्स इन डेंस लेयर्स में कॉन्सेंट्रेट होते हैं और पिगमेंट प्रोड्यूस इंक्रीज करते हैं। इसी के साथ साथ पीएच और केमिकल कॉम्पोजिशन भी जरूरी होती है। अल्जाई और बैक्टीरिया स्पेसिफिक पीएच रेंज में ज्यादा एक्टिव होते हैं। बहुत से रेड लेक्स एल्कलाइन या स्लाइटली एसिडिक होते हैं। साथियों, डिसॉल्व्ड मिनरल्स और आयरन्स जैसे सोडियम, मैग्नीशियम और आयरन भी कलर इंटेंसिटी को इन्हेंस करते हैं। ये केमिकल मेकअप स्पीशीज सिलेक्शन और इकोसिस्टम हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। और अगर बात की जाए माइक्रोबल मैट्स और बायोफिल्म्स की, तो शेलो और काम एरियाज में माइक्रोब्स एक मैट या बायोफिल्म फॉर्म करते हैं। ये मैट्स सरफेस के कलर और टेक्सचर को डायनेमिक बना देते हैं। माइक्रोबल मैट्स सनलाइट को ट्रैप करते हैं और पिगमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, जो लेक के रेड या पिंक कलर को क्रिएट करते हैं। अच्छा साथियों, सीजनल डायनेमिक्स भी इस मामले में हिस्सा लेती हैं। यानी लेक का रेड कलर अक्सर सीजनल होता है भाई। समर या ड्राई सीजन में सनलाइट और इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाती है, जो सेलिनिटी और पिगमेंट प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। रेनी या कूलर सीजन में वाटर डाइल्यूट हो जाता है भाई और कलर फेड हो जाते हैं।
ल्यूमिनोलॉजिस्ट्स

ये पैटर्न्स मॉनिटर करते हैं ताकि इकोसिस्टम और क्लाइमेट के इंटरैक्शन समझ पाए। साथ ही मॉनिटरिंग और रिसर्च टेक्निक्स भी इसमें बहुत हैंडी आती हैं। मतलब मॉडर्न ल्यूमिनोलॉजी में सैटेलाइट इमेजेस, ड्रोन्स, वाटर सैंपलिंग और स्पेक्ट्रल एनालिसिस यूज की जाती हैं। इससे साइंटिस्ट्स एलजे की ग्रोथ पैटर्न्स, पिगमेंट कंसंट्रेशन और सीजनल चेंजेस ट्रैक करते रहते हैं। रेड लेक्स के स्टडी से क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल हेल्थ के इम्पोर्टेंट इंसाइट्स मिलते हैं भाई। और एक और मजे की बात बताऊं, लेक रेडपा जो कि सेनेगल में मौजूद है, उसका कलर एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस से भी ऑब्जर्व किया है भाई। ये रेड लेक सिर्फ एक विजुअल स्पेक्टिकल नहीं बल्कि माइक्रोबिकल एडेप्शन और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का लाइव एग्जाम्पल है। साथियों, अब हम अपनी जर्नी को थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं और समझते हैं कि कैसे ओशनोग्राफी और सॉल्ट वाटर डायनेमिक्स रेड लेक्स के फॉर्मेशन और उनके यूनिक कलर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो भाई, जब हम रेड लेक्स की बात करते हैं, अक्सर ये हाइपरसिलाइन या सॉल्ट रिच लेक्स होते हैं जो ओशन के केमिकल प्रोसेसेस से सिमिलरली बिहेव करते हैं। बहुत से रेड लेक्स एरिड रीजंस में होते हैं जहां हाई इवेपोरेशंस और लिमिटेड फ्रेश वाटर इनफ्लो से सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। ये हाइपरसैलिनिटी डेंसिटी और ब्योयंसी ग्रेडियंट क्रिएट करता है जो माइक्रोबिकल ग्रोथ और पिगमेंट प्रोडक्शन के लिए आइडियल एनवायरमेंट बना देता है। साथियों, ये लेक्स अक्सर हेलोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बड़े होते हैं। ये ऐसे बैक्टीरिया और एल्जाए हैं जो हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में सर्वाइव करते हैं। इसकी एक फेमस एग्जाम्पल है दुनालीला सिलाना जो बीटा कैरोटीन प्रोड्यूस करता है और लेक का रेड या पिंक कलर प्रोड्यूस करता है। इसका फंक्शन सिर्फ कलर क्रिएशन नहीं बल्कि ऑर्गेनिज्म को यूवी रेडिएशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करना भी है। साथियों, अगर हम कंपैरेटिव ग्लोबल लेक्स के बारे में बात करें तो लेक रेडपा जो कि सेनेगल में मौजूद है, ड्राई सीजन में सनलाइट और हाई सैलिनिटी की वजह से ब्राइट रेड हो जाता है। लेक हेलर जो कि ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, माइक्रोबिकल पिगमेंट्स और सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन के कॉम्बिनेशन की वजह से परमानेंट पिंक कलर का रहता है। और वहीं अगर बात करें लेक्यूना कोरोआडा की जो कि बोलिविया में मौजूद है, रेड हुए सेडिमेंट और हेलोफिनिक एल्जाई दोनों से बनता है।

0: Follow us on Facebook and Instagram at FM 107 Qatar. Dil se Desi.
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है यहां तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुंच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं तिलावत तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर दोस्तों हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ई गेट सर्विस सफर करने वालों के लिए एक मॉडर्न और फास्ट फैसिलिटी फराहम करती है इस सिस्टम के जरिए आपको लंबी लाइंस में वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती बल्कि आप अपने पासपोर्ट आईडी कार्ड या कतर डिजिटल आईडी एप्लीकेशन से यूज करके ट्रेवल प्रोसीजर्स कुछ ही सेकंड्स में कंप्लीट कर सकते हैं ये फैसिलिटी सिर्फ सिटीजन्स और रेसिडेंट्स ही नहीं बल्कि उन बच्चों के लिए भी अवेलेबल है जिनकी हाइट 130 सेंटीमीटर से ज्यादा है साथ ही व्हीलचेयर यूजर्स सीनियर सिटीजन्स और पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी इस सर्विस का आसानी से फायदा उठा सकते हैं इस सर्विस का मकसद सफर करने वालों के लिए प्रोसेस को ज्यादा कन्वीनियंट क्विक और यूजर फ्रेंडली बनाना है वजारत दाखिला का कहना है कि ई गेट सर्विस की वजह से एयरपोर्ट पर भीड़ कम होती है क्यूज छोटी होती हैं और हर एक मुसाफिर का एक्सपीरियंस स्मूथ और स्ट्रेस फ्री बन जाता है FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है सेफ रहें और खुश रहें
2: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
1: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं
2: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360 जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में
1: हर मंडे सुबह 10 बजे से आरजे नाज़िया के साथ ओनली ऑन FM 107
2: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ
3: आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आरजे सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
4: वेलकम बैक साथियों आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अब वक्त है शो के बाकी हिस्से का जहां मजीद इंटरेस्टिंग बातें आपका इंतजार कर रही हैं साथियों अब हम रेड लेक्स की सबसे इंटरेस्टिंग और वाइब्रेंट वजह को एक्सप्लोर करेंगे उनके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पिगमेंट्स ये लेक्स अपनी ब्यूटी और यूनिकनेस काफी हद तक इन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की वजह से पाते हैं जो हाई सेलेनिटी और एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सरवाइव करते हैं रेड लेक्स में अक्सर हेलोफिलिक यानी सॉल्ट लविंग माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें से सबसे कॉमन है दुनालीला सलीना एक ग्रीन माइक्रो एल्जाई जो हाई सॉल्ट और सनलाइट से स्ट्रेस होने पर बीटा कैरोटाइन प्रोड्यूस करता है ये पिगमेंट एल्जाई को यूवी प्रोटेक्शन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है और साथ ही लेक को वो पिंक या रेड कलर देता है अपार्ट फ्रॉम एल्जाई लेक्स में हेलो बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं ये बैक्टीरिया रेडिश पिगमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं जैसे बैक्टीरियो रूबेरिन जो उनके सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है और लेक के कलर को और एनहेंस करता है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और सेलेनिटी में ज्यादा रहने की कैपेबिलिटी रखते हैं साथियों ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैरोटीनॉइड्स और रोडोफिन्स प्रोड्यूस करते हैं बीटा कैरोटाइन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो सेल के फ्री रेडिकल्स को प्रोटेक्ट करता है हेलो बैक्टीरिया के पिगमेंट्स फोटोसिंथेटिक नहीं होते लेकिन उनका रोल एनर्जी कन्वर्जन और मेम्ब्रेन स्टेबलाइजेशन में क्रूशियल होता है साथियों साइंटिस्ट्स इन पिगमेंट्स को स्टडी करते हैं क्योंकि ये बायोटेक्नोलॉजी और कॉस्मेटिक्स के लिए प्रॉमिसिंग है बीटा कैरोटाइन और बैक्टीरियो रूबरिन को एंटीऑक्सीडेंट्स और नेचुरल डाइज के लिए एक्सप्लोर किया जा रहा है ये रेड लेक्स सिर्फ नेचुरल वंडर नहीं बल्कि साइंटिफिक,

0: और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के सेंटर्स भी बन गए हैं। साथियों, अक्सर टूरिस्ट सोचते हैं कि ये लेक कलर चेंज करते हैं ओवरनाइट, लेकिन असल में तो ये पिगमेंट प्रोडक्शन और वाटर केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन होता है जो रैपिड विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करता है, यानी एक डायनेमिक और लिविंग इकोसिस्टम की निशानी। साथियों, चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे क्लाइमेट और ह्यूमन एक्टिविटीज रेड लेक को इन्फ्लुएंस करते हैं और किस तरह साइंटिस्ट उनके फ्यूचर और प्रिजर्वेशन को स्टडी कर रहे हैं। रेड लेक्स का कलर वाटर केमिस्ट्री क्लाइमेट कंडीशन से डायरेक्टली लिंक्ड होता है। हाई टेम्परेचर एल्जाई और हेलोफिक बैक्टीरिया के पिगमेंट प्रोडक्शन को स्टिम्युलेट करते हैं। लो टेम्परेचर में पिगमेंट लेवल्स कम हो जाते हैं और लेक का कलर डल या पेल हो जाता है। मॉनसून या हैवी रेनफॉल से लेक का सेलिनिटी ड्रॉप होता है, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं और रेड कलर टेम्परेली फेड हो जाता है। गर्म और ड्राई सीजन में इवेपोरेशन से सेलिनिटी इंक्रीज होती है, पिगमेंट प्रोडक्शन पीक पर हो जाता है और लेक का कलर इंटेंस रेड या पिंक दिखाई देता है। साथियों, रेड लेक्स एनवायरमेंटल सेंसिटिव हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज का इम्पैक्ट काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है, यानी ज्यादा टूरिस्ट से लेक के शोरलाइंस डिस्टर्ब होते हैं और माइक्रोब का हैबिटेट स्ट्रेस में आता है। केमिकल और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के फ्लो से वाटर केमिस्ट्री चेंज हो जाती है और एल्जाई और बैक्टीरिया का बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है। और तो और, इरिगेशन और इंडस्ट्रियल यूज के लिए वाटर एक्सट्रैक्ट करना लेक के सेलिनिटी और डेप्थ को अल्टर करता है, जिससे पिगमेंट प्रोडक्शन और कलर इंटेंसिटी अफेक्ट होती है। साथियों, साइंटिस्ट ये डिस्टिंग्विश करते हैं कि कलर चेंज नेचुरल पिगमेंट्स की वजह से हो रहा है या फिर कॉन्टेमिनेंट्स या केमिकल्स की वजह से। ऑथेंटिक रेड लेक्स का कलर हमेशा नेचुरल माइक्रोबल पिगमेंट्स और हाई सेलिनिटी का रिजल्ट होता है, ना के पॉल्यूटेंट्स का। साथियों, कई रेड लेक्स को प्रोटेक्टेड इकोलॉजिकल जोन डिक्लेयर किया गया है जहां ह्यूमन एक्टिविटीज लिमिटेड हैं। साइंटिस्ट्स रेगुलर वाटर सैंपलिंग और माइक्रोबल एनालिसिस करते रहते हैं ताकि इकोसिस्टम हेल्थ मेंटेन कर सकें। लोकल कम्युनिटीज और टूरिस्ट को गाइड किया जाता है कि लेक्स को डिस्टर्ब ना करें और वेस्ट ना डिस्कार्ड करें। फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स को प्रेडिक्ट करना क्रूशियल है। साथियों, अगर इवेपोरेशन रेट और टेम्परेचर एक्सट्रीम हो जाए तो लेक्स का कलर और माइक्रोबिकल बैलेंस परमानेंटली शिफ्ट हो सकता है। रेड लेक्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बायोएक्टिव कंपाउंड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और नेचुरल डाइज एक्सट्रैक्ट करने की रिसर्च ऑनगोइंग है अभी तक। और तो और, सैटेलाइट इमेजेस और ड्रोन्स का यूज करके लेक्स के कलर और सेलिनिटी चेंज को कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जा रहा है। और एक और मजे की बात यह है साथियों कि रेड लेक्स देखने में सिंपल लगते हैं, लेकिन उनका इकोसिस्टम डायनेमिक और हाईली एडेप्टिव है। एक लेक का रेड कलर जो आप कल देखें शायद आज के माइक्रोबिकल एक्टिविटी और क्लाइमेट कंडीशन की वजह से बन गया हो। ये एक लिविंग ब्रीदिंग लेबोरेटरी है जो हर ऑब्जर्वर को क्यूरियोसिटी से भर देती है। साथियों, जिंदगी के इस रंगीन सफर में कुछ मनाजिर ऐसे होते हैं जो हमारी आंखों को हैरान कर देते हैं और उन्हीं मनाजिर में से एक है रेड लेक्स। सोचिए, जब एक सुबह आप झील के किनारे जाते हैं जहाँ कल तक पानी नीला था, आज वही पानी खूबसूरत लाल रंग में चमक रहा है। ये कोई जादू नहीं बल्कि साइंस का एक अनोखा करिश्मा है। साइंटिस्ट्स के मुताबिक ये लाल रंग ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एल्जाई की वजह से ही होता है जो पानी में केमिकल रिएक्शन करते हैं जब टेम्परेचर, सनलाइट और मिनरल्स एक परफेक्ट बैलेंस में मिलते हैं। जैसे ही ये टाइनी लिविंग क्रीचर्स पानी में बढ़ते हैं, पानी का रंग बदल जाता है, कभी लाल, कभी नारंगी और कभी गुलाबी। ये प्रोसेस एक रिमाइंडर है कि हमारी नेचर कितनी ज्यादा एक्टिव है। मगर साथियों, ये सिर्फ एक खूबसूरत नजारा नहीं बल्कि एक वार्निंग भी है। कभी कभी पानी का लाल होना पोल्यूशन और इम्बैलेंस का साइन भी होता है, जब एक्सेस न्यूट्रिएंट्स और केमिकल्स पानी के सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं। मतलब जहाँ ये मंजर एक तरफ से हसीन लगता है, वहाँ ये हमें याद दिलाता है कि नेचर के सिस्टम के साथ हम कितने ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो साथियों अगली बार जब आप किसी झील के पास जाएं और उसका रंग बदला हुआ देखें तो डरिएगा मत, बस नेचर का सलाम कबूल कीजिएगा। ये झीलें हमें ये सबक देती हैं कि तब्दीली हमेशा बुरी नहीं होती, कभी कभी वो खूबसूरती का नया रूप होती है। और यही तो हमारी दुनिया का हुसन है, हर रंग, हर झील और हर लम्हा एक कहानी कहता है। उम्मीद करती हूँ आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से सफा को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एस प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
2: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se desi.

0: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आज एक और मोटर स्पोर्ट रैली ड्राइवर्स के बारे में मैं बात करूंगा। उनका नाम है आदिल हुसैन अब्दुल्ला। आदिल हुसैन अब्दुल्ला कतर के सबसे कामयाब और मशहूर क्रॉस कंट्री रैली ड्राइवर्स में शुमार किए जाते हैं। उन्होंने अपनी मेहनत, हिम्मत और लगन के जरिए मोटर स्पोर्ट की दुनिया में एक ऐसा मकाम हासिल किया है जो हर कतरी एथलीट के लिए फख्र का सबब है। ऑफ रोड रैलिंग दोस्तों एक इंतहाई मुश्किल खेल है जहां ड्राइवर्स को रेगिस्तान, पथरीले रास्तों और सख्त मौसमी हालात का सामना करना पड़ता है। आदिल हुसैन अब्दुल्ला ने इन तमाम चैलेंजेस को कबूल करते हुए अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। या उनकी सबसे बड़ी कामयाबी 2016 में आई जब उन्होंने FIA वर्ल्ड क्रॉस कंट्री रैली चैंपियनशिप के T2 कैटेगरी का वर्ल्ड टाइटल जीतकर तारीख रच दी और इस शानदार कामयाबी ने उन्हें दुनिया के बेहतरीन ऑफ रोड ड्राइवर्स की सफ में ला खड़ा किया और कतर का नाम बैन अक्वामी मोटर स्पोर्ट में रोशन कर दिया। दोस्तों वर्ल्ड चैंपियन बनना किसी भी ड्राइवर का ख्वाब होता है और आदिल ने इस ख्वाब को हकीकत में बदल कर अपनी काबिलियत साबित की। आदिल हुसैन अब्दुल्ला ने सिर्फ रीजनल और इंटरनेशनल रैलीज में मुसलसल बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं दी बल्कि उनका ये तजुर्बा और कामयाबियां कतर के नए रैली ड्राइवर्स के लिए रहनुमाई का जरिया बने। एंड दैट इज वॉट एवरीबडी लुक्स फॉरवर्ड टू, दीज काइंड ऑफ मोटर स्पोर्ट रैलीज। ना सिर्फ साले अलतिया हर कोई जानता है और ये जितने भी ड्राइवर्स हैं ये ऑफ रोड में ज़्यादातर ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ऑफ रोड ड्राइविंग काफ़ी डिफिकल्ट है दोस्तों, कोशिश मत करिएगा, यू नीड टेक्निकल गाइडेंस एंड सपोर्ट। आज आदिल हुसैन अब्दुल्ला कतर के मोटर स्पोर्ट के एक नुमाया हीरो के तौर पर पहचाने जाते हैं। उनकी कहानी मेहनत और जज्बा की मिसाल है जो दिखाती है कि कतरी एथलीट्स दुनिया के सबसे सख्त मुकाबलों में भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: दोस्तों, रोड मार्किंग्स यानी सड़क पे जो निशानात होते हैं वो सड़क की जुबान होते हैं। इन पर अमल करना ट्रैफिक की हिफाजत को बढ़ाता है और लोगों को महफूज रखने के लिए बहुत अहम है। ट्रैफिक साइंस और मार्किंग्स पर अमल कीजिए। याद रखिए कि एक दूसरे का ख्याल रखते हुए हम सब मिलकर इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर सकते हैं। और हाँ, ट्रैफिक के कानून की तामील करने से हम अपनी और रोड पर अपने इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगी को महफूज कर सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, एक बार फिर हम बेचैनी की वजूहात पर बात करेंगे कि वो क्या हैं। हमारे दिमाग में मौजूद बाज कीमियाई मादों का तवासुन जब बिगड़ने लगता है तो बेचैनी पैदा हो सकती है। अगर ख़ानदान में किसी को एनजाइटी रही हो तो उसके इम्कान ज़्यादा हो सकते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे थायराइड का मसला है, किसी को डायबिटीज़ है, दिल के मसाइल से कोई दो चार है, एस्टमा है या कोई भी क्रॉनिक जो है वो पेन है, तो उससे बेचैनी जो है वो ज़्यादा हो सकती है या वो बेचैनी का सबब बन सकते हैं। और जैसे कि रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है हमारी, उसमें बेशुमार वजूहात होती हैं एनजाइटी की या जी की बेचैनी की, जिसमें मुलाजमत का कुछ दबाव है, माली परेशानियां हैं, घर के मसाइल हैं और खुदा नखास्ता किसी अजीज़ की वफात भी हो सकती है, इम्तहानात का बहुत दबाव है, इस तरह अज़वाजी या ख़ानदानी कुछ मसाइल हैं, ये सब हमारी बेचैनी।

एनी को बढ़ा सकते हैं। और जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें यह है कि नींद का पूरा ना होना, बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी या एनर्जी ड्रिंक्स जो है उनका इस्तेमाल करना, एक्सरसाइज बिल्कुल

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Assalamu alaikum saathiyon and welcome back to Eco Switch with Safa, जहां हम बात करते हैं उन हिडन एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स की जो हमारी डेली लाइफ की हैबिट्स से जुड़ी हुई होती हैं। भाई आज का टॉपिक FM 107 पर ये है कि रिड्यूसिंग ऑनलाइन पैकेजिंग वेस्ट, यानी जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसके साथ जो कार्डबोर्ड बॉक्सेस, प्लास्टिक रैप्स, बबल रैप्स और फिलर्स आते हैं ना, उनको कैसे कम किया जाए। साथियों, ऑनलाइन शॉपिंग कन्वीनियंस का सिंबल तो बन चुका है, लेकिन इस कन्वीनियंस के पीछे एक ग्रोइंग एनवायरमेंटल चैलेंज छुपा हुआ है। अब जरा सोचिए, आपने ऑनलाइन शॉपिंग की है, सिर्फ एक फोन चार्जर ऑर्डर किया, डिलीवरी आती है और आपको एक मीडियम साइज बॉक्स मिलता है जिसमें चार्जर के साथ एक्स्ट्रा प्लास्टिक रैप, बबल रैप और फिलर्स होते हैं। आप सोचते हैं कि भाई सिर्फ एक छोटी सी चीज ही तो है, क्या ही जाएगा। या कभी कभी आप ये भी सोचते हैं कि भाई इतनी छोटी सी चीज के लिए इतनी सारी पैकेजिंग क्यों। देखें, इको स्विच यहाँ हमें बताता है कि लॉजिस्टिक्स कंपनीज कभी कभार आइटम्स को डैमेज से बचाने के लिए एक्स्ट्रा पैकेजिंग यूज करती हैं, लेकिन इसका रिजल्ट अननेसेसरी वेस्ट होता है। साथियों, एक एस्टिमेट के मुताबिक ऑनलाइन शॉपिंग पैकेजिंग ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट का 15% तक कॉन्ट्रीब्यूट करती है, और वो भी इन अर्बन एरियाज में। अच्छा चलिए, अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताती हूँ जो आपको शॉक कर देंगे। देखिए, हर साल ग्लोबली बिलियंस ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्सेस सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरीज के लिए यूज होते हैं। एक एवरेज ऑनलाइन ऑर्डर 3 लेयर्स ऑफ पैकेजिंग जनरेट कर सकता है, आउटर बॉक्स, इनर रैप और प्रोटेक्टिव फिलर्स। बबल रैप्स को डिग्रेड होने में 100 साल से भी ज्यादा लग सकते हैं साथियों। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीक सेल सीजन, जैसे कि लोग कहते हैं कि भाई व्हाइट फ्राइडे या कोई फेस्टिव सीजन हो गया, उसमें पैकेजिंग वेस्ट 30-40% तक स्पाइक कर जाता है। साथियों, यहाँ इको स्विच का आइडिया बड़ा सिंपल सा है, ऑनलाइन शॉपिंग को बंद नहीं करना बल्कि स्मार्टर बनाना है। जब हम पैकेजिंग अवेयर चॉइसेस लेते हैं तो हम वेस्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं। कुछ ई कॉमर्स कंपनीज अब मिनिमल पैकेजिंग ऑप्शन ऑफर करती हैं, जहां एक्स्ट्रा रैपिंग अवॉइड की जाती है। साथियों, एक स्टडी के मुताबिक अगर 1 मिलियन यूजर्स इको पैकेजिंग प्रेफरेंस सेलेक्ट करें तो थाउजेंड्स ऑफ टन्स प्लास्टिक और पेपर वेस्ट अवॉइड किया जा सकता है एनुअली। अच्छा जरा सोचिए, एक हाउस होल्ड में डेली 1-2 ऑनलाइन डिलीवरीज होती हैं, ग्रोसरीज, कपड़े या गैजेट्स। हर डिलीवरी के बाद बॉक्सेस क्या होते हैं, स्टोर रूम में जमा हो जाते हैं या आप कचरे में फेंक दिए जाते हैं। कुछ रिसाइकल होते हैं, लेकिन बहुत सारे डायरेक्ट वेस्ट बिन में चले जाते हैं। इको स्विच के पर्सपेक्टिव से ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हर ऑर्डर के साथ आप अपने घर में एक टेम्पररी लैंडफिल कॉर्नर बना रहे हो। चलिए साथियों, अब वक्त आ गया है कुछ प्रैक्टिकल टिप्स का। अब कुछ सिंपल इको स्विच टिप्स जो हर ऑनलाइन शॉपर फॉलो कर सकता है बहुत आसानी से। पहला, मिनिमल पैकेजिंग या इको पैकेजिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें जब भी अवेलेबल हो। दूसरा, मल्टीपल स्मॉल ऑर्डर्स के बजाय कंबाइंड ऑर्डर प्लेस करें। तीसरा, कार्डबोर्ड बॉक्सेस को रीयूज करें स्टोरेज या DIY पर्पसेस के लिए। चौथा, बबल रैप को प्लास्टिक फिलर्स को रिसाइकल करें जहां पॉसिबल हो।

0: लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लोकल सेलर से परचेज करें ताकि शिपिंग डिस्टेंस और पैकेजिंग दोनों रिड्यूस हो। साथियों, इको स्विच का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि ऑनलाइन शॉपिंग को स्लो और माइंडफुल बनाना। जब हम ऑर्डर प्लेस करते वक्त पैकेजिंग को कंसिडर करते हैं ना, तो हम अपने कंजम्पशन बिहेवियर को रिस्पॉन्सिबल बना देते हैं। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि जो लोग इको शिपिंग ऑप्शंस चूज करते हैं वो ओवरऑल लेस इम्पल्सिव शॉपिंग भी करते हैं। मतलब अवेयरनेस स्पेंडिंग हैबिट्स को भी कंट्रोल करती है। आखिर में भाई, इको स्विच का सिंपल सा मैसेज है और वो ये है कि ऑनलाइन शॉपिंग कन्वीनियंस जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। हर बॉक्स जो हम रिसाइकल या अवॉइड करते हैं वो एनवायरमेंट के लिए एक पॉजिटिव स्टेप होता है। तो भाई, अगली बार जब आप प्लेस ऑर्डर बटन दबाने लगे ना, तो एक छोटा सा इको स्विच जरूर ऑन कर लीजिएगा अपने दिमाग में। डू आई रियली नीड दिस मच ऑफ पैकेजिंग? इसी के साथ साथियों, मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107 कतर, जहाँ हर डिलीवरी सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक एनवायरमेंटल चॉइस भी होती है।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। One step to 2030.
2: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
3: One Step to 2030.
2: आज One Step 2030 यानी फ्यूचर में क्या क्या चीजें जो है वो डोमिनेट करेंगी, किस तरह से हमें अभी से खुद को जो है वो प्रिपेयर करना है 2030 और उसके आगे के लिए, तो बस उसी हवाले से हमारा ये सेगमेंट खास है जहां हम आपके साथ नए फ्यूचरिस्टिक टॉपिक्स को जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। और आज मैं बात करने वाली हूँ पर्टिकुलरली क्लाउड सीडिंग पे। क्लाउड सीडिंग है क्या, कैसे काम करता है और कैसे आपको और हमें इसके बारे में जानना इम्पोर्टेंट है।

क्लाउड सीडिंग एक साइंटिफिक टेक्निक है जिसका यूज बारिश को बढ़ाने या फिर कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ये टेक्नोलॉजी उन एरियाज में बड़ी यूजफुल होती है जहाँ पानी की कमी होती है या जहाँ ज्यादा बारिश की जरूरत होती है, जैसे एग्रीकल्चर के लिए। तो आइए हम इसे समझते हैं कि ये है क्या। क्लाउड सीडिंग का मतलब है बादलों में कुछ स्पेशल पार्टिकल्स या फिर केमिकल्स डालकर बारिश को ट्रिगर करना या इंक्रीज करना। और आसान लफ्जों में अगर मैं आपको समझाऊं तो क्लाउड्स में ऑलरेडी पानी के छोटे छोटे कतरे, ड्रॉपलेट्स या फिर आइस पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन कभी कभी ये इतने छोटे छोटे होते हैं कि बारिश की फॉर्म में जमीन तक नहीं गिरते। अब क्लाउड सीडिंग का काम इन ड्रॉपलेट्स को बड़ा बनाना होता है ताकि वो हैवी होकर बारिश की शक्ल में गिर सके। क्लाउड्स का एक नेचुरल प्रोसेस है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि नॉर्मल बारिश कैसे होती है। वैसे हमने और आपने ये तो पढ़ रखा है, फिर भी चलिए क्विक रिमाइंडर के तौर पे आपको बताती हूँ कि सन की गर्मी से, तपिश से पानी समंदर हो, दरिया हो, लेक से इवेपोरेट होता है और ये पानी हवा में जाकर वाटर वेपर बन जाता है। ठंडी हवा में ये वेपर कंडेंस होकर क्लाउड्स बनते हैं और क्लाउड्स में छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनते हैं और जब ये ड्रॉपलेट्स मिलकर बड़े हो जाते हैं तो ग्रेविटी की वजह से खिंचते हैं और नीचे गिरते हैं बारिश की फॉर्म में। कभी कभी ड्रॉपलेट्स इतने छोटे रहते हैं कि वो गिर ही नहीं पाते। यहाँ क्लाउड सीडिंग का जो रोल है वो स्टार्ट हो जाता है। क्लाउड सीडिंग का प्रोसेस तीन मेन स्टेप्स पर होता है। सबसे पहले सूटेबल क्लाउड्स का इंतखाब करना। जी हाँ, सूटेबल क्लाउड्स का इंतखाब करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट और जितने भी मेट्रोलॉजिस्ट हैं चेक करते हैं कि कौन सा क्लाउड सीडिंग के लिए सूटेबल है। हर क्लाउड पर सीडिंग काम नहीं करती। वो क्लाउड्स चाहिए होते हैं जहाँ मॉइस्चर यानी पानी की क्वांटिटी मौजूद हो, टेम्परेचर सूटेबल हो। अगर क्लाउड बिल्कुल ड्राई हो तो वहाँ सीडिंग का कोई फायदा नहीं होता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है केमिकल्स या फिर पार्टिकल्स डालना। इस स्टेप में देखा जाए तो खास केमिकल्स या फिर पार्टिकल्स क्लाउड के अंदर डाले जाते हैं। ये काम यूजुअली प्लेन्स, ड्रोन्स या फिर ग्राउंड बेस्ड मशीन के जरिए होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है ड्रॉपलेट्स को बड़ा करना। जब ये पार्टिकल्स क्लाउड के अंदर एंटर करते हैं तो पानी के छोटे ड्रॉपलेट्स इनके इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन या फिर फ्रीजिंग, यानी पानी के कतरे इन पार्टिकल्स से चिपक जाते हैं। धीरे धीरे ये ड्रॉपलेट्स बड़े हो जाते हैं, फिर हैवी होकर जमीन पर गिरते हैं। यही बारिश होती है। वैसे क्लाउड सीडिंग के कुछ टाइप्स भी हैं। स्टैटिक क्लाउड सीडिंग, इसमें सिल्वर क्रिस्टल एक तरह का यूज किया जाता है जो कि आइस क्रिस्टल बन जाता है। कूल क्लाउड्स में पार्टिकल्स जो है वो डाले जाते हैं, आइस क्रिस्टल्स बनते हैं और क्रिस्टल ग्रो करते हैं और फिर बारिश या फिर स्नो बन जाते हैं। वहीं दूसरा एक तो मैंने आपको बताया स्टैटिक क्लाउड सीडिंग है, दूसरा है डायनेमिक क्लाउड सीडिंग। इस मेथड में पूरे क्लाउड के सिस्टम को चेंज करने की कोशिश की जाती है। एयर मूवमेंट क्रिएट किया जाता है, ज्यादा क्लाउड ग्रोथ होती है, ज्यादा बारिश जनरेट होती है। तो बस हमने और आपने समझा कि क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। देखिए क्लाउड सीडिंग का यूज कहाँ होता है। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो क्लाउड सीडिंग दुनिया के कई कंट्रीज में यूज किया जाता है। किया भी क्या है, उनके नाम तो क्या ही मैं मेंशन करूँ, लेकिन इन कंट्रीज में उसका फायदा भी हुआ है, कुछ नुकसान भी हुए हैं। बारिश को बढ़ाना जरूरी है क्योंकि कुछ कंट्रीज में सूखा, इसे कंट्रोल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्नोफॉल इंक्रीज करने के लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन हर चीज के फायदे और नुकसान तो होते ही होते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी हम समझते हैं। क्लाउड सीडिंग एक परफेक्ट सोल्यूशन है नहीं। अल्लाह ताला का जो निज़ाम है उसमें अगर हम अपनी अकल लगा के अपनी चीजें डालेंगे तो कुछ ना कुछ इसका नुकसान तो होगा। हर जगह काम नहीं कर पाता। अगर क्लाउड में मॉइस्चर ही ना हो तो सीडिंग बेकार है। वहीं कभी बारिश होती है, कभी नहीं। यहाँ पे रिजल्ट्स जो है वो 100% रिलायबल नहीं होते। और एक और बड़ा ड्रॉबैक जो है वो है ये प्रोसेस अपने आप में बहुत महंगा है। क्लीन्स, केमिकल्स, मॉनिटरिंग, सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव। और एनवायरमेंटल कंसर्न ये तो बढ़ ही रहे। कुछ लोग कहते हैं कि इससे एनवायरमेंट को खतरा बढ़ता चला जा रहा है। और एथिकल और सोशल कंसर्न्स,

0: अपने आप में एक अलग ही टॉपिक है. देखिए फ्यूचर में क्लाउड सीडिंग जो है एडवांस हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है. इस पे काम भी जारी है. बेटर टेक्नोलॉजी यूज होगी. AI सैटेलाइट से एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करवाई जाएंगी. एनवायरमेंट के इम्पैक्ट को भी कम किया जाएगा. लेकिन सवाल बड़ा ये है कि इसको किस तरह से सेफली और इफेक्टिव इसका इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि क्लाउड सीडिंग एक इंटरेस्टिंग और पावरफुल टेक्निक तो है जिसमें इंसान क्लाउड्स को यूज करके बारिश को बढ़ाने की कोशिश करता है. ये प्रोसेस नेचुरल सिस्टम को सपोर्ट भी करता है, लेकिन इसको कम्प्लीटली कंट्रोल नहीं किया जा सकता. इसको अगर हम समझें तो क्लाउड्स जो है या जो अल्लाह ताला ने टेक्निक और टेक्नोलॉजी हमारे लिए रखी है, उसके खिलाफ जाके कुछ हम अलग से करने की कोशिश करें तो पता नहीं उसका किस हद तक फायदा होगा. अगर सही प्लानिंग और रिसर्च के साथ किया जाए तो शायद क्लाउड सीडिंग दुनिया की वाटर प्रॉब्लम जो आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ेगी उसे सॉल्व करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है ना. बस यही लाइन जो है वो मुझे थोड़ी सी तसल्ली देती है. फिलहाल इस टॉपिक को यहीं पर क्लोज करते हैं. वापस आएंगे कल तो एक और नए फ्यूचरिस्टिक टॉपिक पे बात करेंगे. आप सुन रहे थे सेगमेंट वन स्टेप टू 2030. यहाँ पर 2030 से आगे की भी तैयारी जारी है. कोशिश ये है कि आप और हम मिलकर फ्यूचर को जो है वो समझ तो नहीं सकते, प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ खुद को फ्यूचर के लिए तैयार जरूर कर सकते हैं. तो बस ये तैयारी अभी वर्बली है, फिर आने वाले टाइम में थोड़ा सा और डिटेल में, और फिर आने वाले टाइम में इसे अडॉप्ट कैसे करना है इस पर भी बात होगी. फिलहाल मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखिए सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी. One step to 2030.
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी.
3: करदा है ये निया मेनिया गल्ला ते तू लड़दा.

0: Midnight Melodies, only on FM 107, Dil Se Desi.
1: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत. सुनिए हदीत टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे, ओनली ऑन FM 107. एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी, बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी.

0: टोटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम. हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट. दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए.
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है. मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता. इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं. तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ. प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर. गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
2: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट.
1: गेम ऑन,
2: वॉल्यूम अप.
1: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
2: समर स्पोर्ट्स विद आरजे फजील,
1: ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी, दिल से देसी.
3: Anytime, anywhere.
4: Yes, anytime, anywhere.
3: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
5: FM 107.
3: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

तुम लोग हमसे हसद कर रहे हो, हालांकि बात हसद की नहीं है बल्कि ये लोग सही बात को कम ही समझते हैं। इन पीछे छोड़े जाने वाले बदवी अरबों से कहना कि अनकरीब तुम्हें ऐसे लोगों से लड़ने के लिए बुलाया जाएगा जो बड़े जोरावर हैं, तुमको उनसे जंग करनी होगी या वो मुती हो जाएंगे। उस वक्त अगर तुमने हुक्म जिहाद की इताअत की तो अल्लाह तुम्हें अच्छा अजर देगा, और अगर तुम फिर उसी तरह मुंह मोड़ गए जिस तरह पहले मोड़ चुके हो तो अल्लाह तुमको दर्दनाक सजा देगा। हाँ, अगर अंधा और लंगड़ा और मरीज जिहाद के लिए ना आए तो कोई हर्ज नहीं। जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा अल्लाह उसे उन जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, और जो मुंह फेरेगा उसे वो दर्दनाक आजाब देगा।

ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم.

लोगो, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और फिर तुम्हारी कौमें और बिरादरियां बना दी ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। दर हकीकत अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा परहेजगार है। यकीनन अल्लाह सब कुछ जानने वाला और बाखबर है। ये बदवी कहते हैं कि हम ईमान लाए, इनसे कहो तुम ईमान नहीं लाए, बल्कि यूं कहो कि हम मुती हो गए। ईमान अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ है। अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी इख्तियार कर लो तो वो तुम्हारे आमाल के अजर में कोई कमी न करेगा। यकीनन अल्लाह बड़ा दरगुजर करने वाला और रहीम है। हकीकत में तो मोमिन वो है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, फिर उन्होंने कोई शक न किया और अपनी जानों और मालों से अल्लाह की राह में जिहाद किया, वही सच्चे लोग हैं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन मुद्दईयान ईमान से कहो, क्या तुम अल्लाह को अपने दीन की इत्तला दे रहे हो? हालांकि अल्लाह जमीन और आसमानों की हर चीज को जानता है और हर चीज का इल्म रखता है। ये लोग तुम पर एहसान जताते हैं कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इनसे कहो, अपने इस्लाम का एहसान मुझ पर न रखो, बल्कि अल्लाह तुम पर अपना एहसान रखता है कि उसने तुम्हें ईमान की हिदायत दी, अगर तुम वाकई अपने दावाए ईमान में सच्चे हो। अल्लाह जमीन और आसमानों की हर पोशीदा चीज का इल्म रखता है और जो कुछ तुम करते हो वो सब उसकी निगाह में है।